मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलो हर्ट्स पर और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। आज गुरुवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 21वीं तिथि तदनुसार 11 जून 2026 ईस्वी। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:52 होने वाले हैं। आरंभ होती है हमारी आज की सभा।

0: किसान भाइयों और बहनों को संबोधित कार्यक्रम खेत खलिहान। श्रोताओं, कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे एक पूर्व प्रसारित वार्ता। विषय है अनाज भंडारण कैसे करें। वार्ताकार है अनीता कुमारी।
1: भंडारण कैसे करें। हरित क्रांति के बाद भारतीय कृषि के उत्पादन एवं उत्पादकता में काफी वृद्धि हुई है। हालांकि हमारे कृषक समुदाय ने कठिन परिश्रम किया, लेकिन उन्हें वास्तविक लाभ नहीं मिल पाया, क्योंकि हमारे पास भंडारण की अभी भी उतनी अच्छी सुविधाएं नहीं हैं कि किसान अपने उत्पाद का उचित भंडारण कर सके। भारत में अनाज और तिलहन की फसलों में 10-20% तक का नुकसान अनुमानित है। इसके अलावा खाद्यान्नों का एक बड़ा हिस्सा घरेलू स्तर पर भंडारण प्रक्रिया के दौरान लगभग 40-50% नष्ट हो जाता है। घरेलू स्तर पर सुरक्षित भंडारण एक आवश्यक प्रक्रिया है, क्योंकि कीट एवं सूक्ष्म जैविक कारक खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता एवं पौष्टिकता में भारी कमी का मुख्य कारण है। इसके साथ साथ ये कारक अनाजों की मात्रा में भी भारी कमी लाते हैं। कीटों और जैविक कारक अपने विषाक्त पदार्थों को उत्पादित कर और अपने मलमूत्र से लोगों के स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव डालते हैं। अतः यह वैज्ञानिक तौर पर आवश्यक है कि किसान की कड़ी मेहनत की कमाई अनुचित रखरखाव से खराब ना हो तथा उचित रखरखाव, सावधानी एवं भंडारण में ध्यान देने की बातों की जानकारी आवश्यक है। आइए इस वार्ता के माध्यम से हम अन्न भंडारण से संबंधित कुछ आवश्यक बातें जानें। फसल कटने से भंडारण तक अनेक समस्याएं आती है और बहुत से जैविक एवं अजैविक तत्व अनाज पर हमला करते हैं। जैविक तत्वों में प्रमुख कीट, फफूंद, सूक्ष्म जीव, पक्षी, चूहे इत्यादि हैं तथा अजैविक तत्वों में प्रमुख नमी एवं तापमान है। यदि खाद्यान्न को इन तत्वों के नुकसान से बचा लें तो देश की बढ़ती हुई आबादी को भोजन देना आसान हो जाएगा। भंडारण में कीटों का प्रकोप 3 प्रमुख वातावरणीय कारकों पर निर्भर करता है: नमी की मात्रा, भंडारण संरचना में ऑक्सीजन की उपस्थिति तथा भंडारण में तापक्रम का उतार चढ़ाव। नमी की मात्रा, भंडारित अनाज में कीटों का प्रकोप नमी की एक निश्चित मात्रा से अधिक होने पर ही होता है। अतः भंडारण से पूर्व अनाज को धूप में अच्छी तरह से सुखाकर उसमें नमी की मात्रा को 8-10% तक कर दें, अर्थात जब दांत से काटने पर कट की आवाज़ के साथ कट जाए तो समझना चाहिए कि अनाज भंडारण के लिए उपयुक्त है। भंडारण संरचना में ऑक्सीजन की उपस्थिति, यदि भंडारण पात्र में ऑक्सीजन की मात्रा एक निश्चित सीमा से कम कर दिया जाए तो ये कीट स्वतः ही मर जाते हैं, क्योंकि इन्हें भी सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। अतः अनाज का भंडारण वायु अवरोधी भंडारण गृहों अथवा GI सीट से बनी बीनों में किया जाना चाहिए। भंडारण में तापक्रम का उतार चढ़ाव, तापक्रम कीटों के जीवन चक्र को प्रभावित करने वाले तीसरा प्रमुख कारक है। साधारणतया 25-30°C तापक्रम कीटों के प्रजनन, संख्या वृद्धि एवं सक्रियता के लिए उपयुक्त पाया गया है। इसी कारण जाड़े के दिनों में इनकी सक्रियता काफ़ी कम हो जाती है। भंडारण में विभिन्न स्रोतों से कीट की पहुंच, कुछ कीट खेत में पकती फसल के दानों पर अंडे देते हैं तो कुछ खलिहानों में पड़े अनाजों में अंडे देते हैं और अनाज के बीज साथ भंडार में पहुंच जाते हैं। अनाज ढोने वाले पात्रों, बोरों, भंडारण हेतु प्रयोग किए जाने वाले बीनों आदि में कीट की विभिन्न अवस्थाएं सुसुप्ता अवस्था में छिपी रहती है तथा अनाज के साथ भंडार गृह में चले जाते हैं एवं उपयुक्त वातावरण मिलने पर बढ़ जाते हैं। रोकथाम, कटाई के बाद फसल को खलिहान में रखने के पूर्व खलिहान की सफाई कर गोबर से निपाई करके सुखा लेना चाहिए। कटाई व पिटाई की मशीनों व अनाज की ढुलाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले बैलगाड़ियों, ट्रकों, ट्रॉलियों, भंडारण पात्रों इत्यादि को भी अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए। अनाज को खलिहान में अच्छी प्रकार धूप में सुखा लें ताकि उसमें नमी 8-10% से ज़्यादा ना हो।
0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेत खलियान में एक पूर्व प्रसारित वार्ता।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की शासी परिषद की 11वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विकसित भारत 2047 के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष की बैठक का विषय है विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास। इस बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भाग लेंगे। वे समावेशी मानव विकास ढांचे पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने देश के भरोसे को सदैव मजबूत किया है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एनडीए सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना सरकार की सही नीतियों और सही दिशा का प्रमाण है।
1: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का सपना अब देश के हर नागरिक का संकल्प बन चुका है। उन्होंने कहा कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारत ने वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर हासिल की है और अब देश दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एनडीए सम्मेलन में 35 राजनीतिक दलों के 75 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। श्री नवीन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि एनडीए नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया और उनके ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करने पर उन्हें बधाई दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया है।
2: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
0: मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल संदेश में कहा कि श्री मोदी एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं। रूस ने श्री मोदी को सभी भारतीय प्रधानमंत्रियों में सर्वश्रेष्ठ करार दिया है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री को बधाई दी है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने श्री मोदी को शुभकामनाएं दी हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोफिया में बुल्गारिया के प्रधानमंत्री रूमेन रादेव से मुलाकात की। इस दौरान डॉक्टर जयशंकर ने भारत और बुल्गारिया के बीच मजबूत द्विपक्षीय संबंधों तथा बदलती वैश्विक परिस्थितियों में आपसी सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। डॉक्टर जयशंकर आज फिनलैंड जाएंगे। इस दौरान वे कुलतारांता वार्ता के 14वें संस्करण में भाग लेंगे। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया कि इसमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है और इसका अनुमानित कारोबार 58,000 करोड़ रुपए से अधिक है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर पश्चिम भारत में 13 जून तक बारिश होने की संभावना है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आज ओलावृष्टि के साथ वर्षा हो सकती है। पश्चिमी राजस्थान में लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। अब पेश है आज का चिंतन मनन।
1: पंडित राम प्रसाद बिस्मिल। आज महान स्वतंत्रता सेनानी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म दिवस है। ये भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की क्रांतिकारी धारा के प्रमुख सेनानी थे। जब जब भारत के स्वाधीनता इतिहास में महान क्रांतिकारियों की चर्चा होगी, तब तब माँ भारती के इस सपूत का जिक्र होगा। ये केवल एक क्रांतिकारी ही नहीं, बल्कि कवि, शायर व साहित्यकार भी थे। क्रांति के कार्य हेतु धन की आवश्यकता के लिए प्रारंभ में ये अमीरों को लूटते थे, मगर उनकी आत्मा उन्हें इस बात की गवाही नहीं देती थी। तब उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस कार्य के लिए सरकारी खजाने को लूटा जाए। उस समय रेल टिकट की बिक्री के रुपए गार्ड के डिब्बे में रखी तिजोरी में हर स्टेशन पर जमा किया जाता था। उनके नेतृत्व में कुल 10 लोग, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लाहिरी, चंद्रशेखर आज़ाद, सचिंद्रनाथ बख्शी, मनमंथनाथ गुप्त, मुकुंदी लाल, केशव चक्रवर्ती, मुरारी शर्मा और बनवारी लाल आदि ने काकोरी नाम के स्टेशन के पास सरकारी खजाने को लूटा। बिस्मिल गरीब परिवार से आते थे। उन्हें लगता था कि क्रांति के लिए शिक्षा का होना आवश्यक है। अपने दल में क्रांतिकारियों की भर्ती हेतु उनके मन में विचार आया कि क्यों ना स्कूल कॉलेजों में जाकर युवाओं को वे क्रांति का अर्थ समझाएं। जब शिक्षा का अलख जागेगा तो क्रांति में धार आएगी। इस दिशा में उन्होंने कई पुस्तकें लिखी और स्वयं घूम घूम कर उन्हें बांटा। उन दिनों कलम स्वतंत्र नहीं थी, अतः वे या तो बिस्मिल या फिर अज्ञात के नाम से लिखा करते थे। उनकी प्रसिद्ध रचना मेरा रंग दे बसंती चोला गाते ही ना जाने कितने क्रांतिकारी देश की आज़ादी के लिए हंसते हंसते फांसी के तख्ते पर झूल गए। इन्होंने मैनपुरी कांड और काकोरी कांड को अंजाम देकर अंग्रेजी साम्राज्य को हिलाकर रख दिया था। कहते हैं सरकारी खजाना लूटते हुए जब वे पकड़े गए तो उन्हें जेल ले जाते हुए सिपाही उन्हें हथकड़ी लगाना भूल गए थे। वे नींद में थे। रामप्रसाद चाहते तो भाग भी सकते थे, मगर वे नहीं भागे। सिपाही के साथ मुंशी जाग रहा था। मुंशी ने उनसे आग्रह किया, वे बाल बच्चे वाले हैं, उनकी नौकरी चली जाएगी, बच्चे भूखों मर जाएंगे, और उन्होंने भागने का निर्णय त्याग दिया। बिस्मिल की दिलेरी की एक कहानी तो और भी जोश भरी है। जिस दिन रामप्रसाद को फांसी होने वाली थी, उसके एक दिन पूर्व वो कसरत कर रहे थे। कसरत करना उनकी दिनचर्या में शामिल था। जब जेलर ने उन्हें ऐसा करते देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उन्होंने पूछा भी, अब कसरत करने का क्या औचित्य, कल तो तुम्हें फांसी होने वाली है। इस पर पंडित रामप्रसाद बिस्मिल ने कहा, भारत माँ के चरणों पर बांसी नहीं ताजे फूल चढ़ाए जाते हैं। अगर मैं आज व्यायाम नहीं करता हूँ तो कल मुरझा नहीं जाऊंगा। जेलर देखता रह गया। मुस्कुराते चेहरे की चमक में रंच मात्र भी भय नहीं था। स्वतंत्रता की अलख जगाने वाले ये मस्त मौला, सहृदय कवि, शायर, क्रांतिकारी आखिर किस मिट्टी का बना है। बिस्मिल उनका उपनाम था, जिसका अर्थ होता है आत्मिक रूप से आहत। 1897 को जन्मे रामप्रसाद 30 वर्ष की आयु में पौष कृष्ण एकादशी को हंसते हंसते फांसी के फंदे को गले से लगा लिया। मरने से पूर्व उन्होंने जो रचना लिखी थी वो था, बला से हमको लटकाए अगर सरकार फांसी से, लटकते जाए अक्सर पैकारे इसार फांसी से, लवे दम भी न खोली जालिमों ने हथकड़ी मेरी, तमन्ना थी कि करता मैं लिपटकर प्यार फांसी से। हमारा नमन उन बलिदानियों को जिनके बलिदान से आज हमारा चमन गुलजार है।
0: ये था आज का चिंतन मनन। यह आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। अब पेश है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। श्रोताओं आरंभ में सुनिए समूह स्वर में देश वंदना।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे समूह स्वर में देश वंदना, भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना में है। कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं जगजीत सिंह की आवाज़ में एक प्यारा सा कृष्ण भजन।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। यह आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं हरिओम शरण और नंदिनी शरण की आवाज में ये प्यारा सा भजन।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। यह आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे एक पूर्व प्रसारित भेंटवार्ता। विषय है बच्चों में डायरिया। भेंटवार्ताकार है डॉक्टर नवीन जय और भेंट करता है श्रीनिवास सहाय।

0: डॉक्टर साहब बच्चों में डायरिया जो होता है वो किस तरह से होता है, लक्षण उसके किस प्रकार के होते हैं?
1: डायरिया में कहते हैं कि अगर एक पखाना डेली हो रहा हो तो उससे ज़्यादा होने लगे, गिनती बढ़ जाए या उसका कंसिस्टेंसी चेंज हो जाए, जैसे पतला होने लगे, इसको डायरिया कहते हैं।
0: इसमें लक्षण किस तरह के होते हैं और लक्षण?
1: और लक्षण जैसे हाँ, जैसे तुरंत कमजोरी होती है, प्यास लगती है, और ज़्यादा अगर पखाना हो गया तो बच्चा बेचैन हो जाता है क्योंकि पानी की कमी हो जाती है,
0: बॉडी में
1: डिहाइड्रेशन हो जाता है।
0: और इसका परिणाम क्या, बच्चा
1: डिहाइड्रेशन होने पर जो है हो सकता है कि किडनी फेल कर जाए, किडनी पेशाब बंद हो जाए, किडनी फेल कर जाए, या टैकीकार्डिया हार्ट रेट बहुत बढ़ जाए, या मेंटल स्टेट जो है वो चेंज कर जाए, कहीं ब्लड क्लॉट भी हो सकता है,
0: तो इससे बच्चा मर भी सकता है।
1: इससे बच्चा मर भी सकता है,
0: तो इसलिए इससे बचाव के लिए काफ़ी उपाय करना।
1: हाँ, इसके बचाव के लिए हर घर में लोगों को ORS के पैकेट्स रखने चाहिए। ORS जो है वो एक्चुअली जीवन दान देता है इस केसेस में, और ज़्यादा इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है या पैनिक परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ORS के पैकेट को जो है 4 ग्राम का पैकेट है वो 200 ml पानी में घोल लें, और एक एक चम्मच दो दो चम्मच करके 5-5 मिनट में पिलाते रहें। ये नहीं सोचना है कि हम पिला रहे हैं तो और इधर पखाना हो रहा है, इसीलिए पिलाना बंद कर देते हैं।
0: डॉक्टर, घर में ORS नहीं है तो चीनी पानी?
1: हाँ, चीनी पानी बिल्कुल, हाँ, एक गिलास पानी में जैसे हम लोग बोलते हैं 1.5 चम्मच चीनी और 1 चुटकी नमक डाल के उसको भी पिलाया जा सकता है,
0: तो इससे भी डिहाइड्रेशन
1: कम हो जाएगा।
0: अच्छा, ये डायरिया हो ही नहीं, उसके लिए क्या?
1: इसके लिए है कि पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना, जैसे स्वच्छता, क्लीनलीनेस, हाथ हमेशा धोएं बाहर से आने के पहले, खाने के पहले बिल्कुल हाथ धोएं, और सब्जियां वगैरह जब आए उसको जो है ऐसे नहीं खाएं बिना धोए, मैंने सलाद के जो चीज़ होते हैं
0: फल
1: वगैरह जो
0: सभी चीज़ें धो करके
1: हाँ।
0: और बच्चा यदि छोटा है तो माँ को चाहिए कि उसकी साफ सफाई करें।
1: और छोटे बच्चे में अगर डायरिया हो तो माँ को दूध पिलाते रहना चाहिए। बहुत बार लोग दूध बंद कर देते हैं, ऐसा नहीं, माँ का दूध पिलाते रहना चाहिए।
0: और डायरिया हो जाए तब किस तरह से चिकित्सा करनी चाहिए? ये तो आपने कहा कि ORS पिलाते रहें।
1: हाँ, ORS पिलाते रहें, लेकिन उसके बाद भी अगर ज़्यादा हो रहा है और मुँह से उसका मेकअप नहीं हो रहा है, बैलेंस नहीं हो रहा है बॉडी में वाटर का, तो उसमें सलाइन की ज़रूरत होती है, उसमें तुरंत पास के किसी चिकित्सक के यहाँ ले जाना चाहिए। वहाँ सलाइन कर देने से हो सकता है कि बार बार करना पड़े जब तक पखाना नहीं रुके, और तो उस बच्चे को बचाया जा सकता है।
0: तो इससे घबराना नहीं चाहिए कि हमको ज़्यादा पानी चढ़वाना पड़ रहा है या ज़्यादा?
1: कुछ नहीं घबराना चाहिए, डायरिया जो है वो सेल्फ लिमिटिंग चीज होता है, 2-4 दिन 1 सप्ताह में ठीक हो जाता है। सिर्फ शरीर में पानी का लेवल मेंटेन किया जाए
0: जी,
1: तो कोई रिस्क नहीं।
0: और उसमें ये भी नहीं सोचना है कि हम ज़्यादा पानी पिलाएंगे तो ज़्यादा बच्चे को पखाना होगा?
1: हाँ, नहीं, बिल्कुल नहीं।
0: और पानी जो पिलाएं वो भी शुद्ध और साफ?
1: शुद्ध और साफ होना चाहिए,
0: तो इससे जो है उसका सब उसके शरीर में इन्फेक्शन होने की
1: संभावना
0: और बच्चा आपका जो है वो स्वस्थ रहेगा। डॉक्टर साहब, हमारे स्टूडियो में इतनी अच्छी जानकारी दी थी आपको,
1: थैंक यू। थैंक यू।
2: श्रोताओं, आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा में एक पूर्व प्रसारित भेंटवार्ता, विषय था बच्चों में डायरिया। भेंटवार्ताकार थे डॉक्टर नवजीवन, भेंटकर्ता थे श्रीनिवास सहाय। यह आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। अब आइए सुनते हैं रामचरितमानस गान की 248वीं कड़ी। मुख्य स्वर है श्रीकांत पारगांवकर की।
3: एपिसोड नंबर 248, 248।

आराध्य से मनचाहा वरदान प्राप्त कर मुनि सुतीक्ष्ण की साध पूरी हुई। प्रभु की इच्छा के अनुसार तब वो उन्हें अपने गुरु अगस्त्य मुनि के आश्रम ले चले। श्री राम लक्ष्मण सीता का आगमन सुन अगस्त्य मुनि उनके दर्शनों को दौड़े। नाना प्रकार से श्री राम की पूजा वंदना करने हेतु जब उन्हें आसन पर बिठाया तो मुनियों का समूह प्रभु दर्शन के लिए एकत्र हो गया। पूरी ऋषि मंडली में श्री राम इस मुद्रा में बैठे हैं कि प्रत्येक उपस्थित जन को वो अपनी ही ओर देखते दिखाई देते हैं। श्री राम ने अगस्त्य मुनि को वहां अपने आगमन का उद्देश्य बताया। उन्होंने कहा, हे मुनिवर, मुझे ऋषि मुनि द्रोही राक्षसों के विनाश का उपाय बताएं। अगस्त्य मुनि ने श्री राम से दंडक वन में पंचवटी जाकर गौतम मुनि के कठोर शाप का दमन करने की प्रार्थना की।

आप सुन रहे थे रामचरितमानस गान की 248वीं कड़ी। मुख्य स्वर थी श्रीकांत पारगांवकर की। यह आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। कार्यक्रम विवरण में अब आइए जान लें आज के शेष और मुख्य कार्यक्रमों की प्रस्तुति और उनके प्रसारण समय के बारे में।

श्रोताओं, अब से कुछ ही देर बाद सन प्रातः 7 बजे से 7:55 तक आप सुनेंगे मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। इसके अंतर्गत सबसे पहले आप सुनेंगे सुगम संगीत के कार्यक्रम रसरंग में गायक कलाकार शंकर मिश्र नाहर की प्रस्तुति। तत्पश्चात 7:20 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम कथा सागर में एक कहानी, शीर्षक है आधी रोटी पूरा आसमान, कहानीकार हैं कुमारी शालिनी। 7:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत। इस दौरान आप जानेंगे कुछ ज़रूरी सूचनाएं जैसे रेल सूचना, मौसम सूचना, कल का इतिहास और कल के समाचार पत्रों की सुर्खियां। प्रातः 9:06 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम नगमे नए पुराने। 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुगम संगीत में गायक कलाकार श्यामरन झा की प्रस्तुति। 10 बजे आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से। 10:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम नाटक में एक पूर्व प्रसारित नाटक, शीर्षक है बदलता गांव, लेखक है धनंजय मिश्र, प्रस्तुत करता है अमित कुमार। दिन में 11 बजे आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम नई फिल्मों से। 11:30 पर फिल्म संगीत की खास पेशकश गुलदस्ता लेकर आएंगे हम।

आज दोपहर 12 बजे आप सुनेंगे शहरी महिलाओं को संबोधित कार्यक्रम नारी लोक। 12:30 पर आप सुनेंगे एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। 1 बजे आप सुनेंगे लोकगीतों के कार्यक्रम लोक रंग में गायक कलाकार वीरेंद्र कुमार ठाकुर की प्रस्तुति। 1:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम रेडियो धारावाहिक, शीर्षक है गंगा के सुरताल, लेखक है रमेश रमन। 2:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम चित्रपट से। 3 बजे आप सुनेंगे सुगम संगीत के कार्यक्रम तरंग में गायक कलाकार जगजीत सिंह की प्रस्तुति।

आज संध्या 5 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम युववाणी, 5:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत, संध्या 6 बजे आप सुनेंगे दैनिक कार्यक्रम ग्राम जगत खेती गृहस्थी, 7:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम लोकगीत में गायक कलाकार बासुकी प्रसाद यादव की प्रस्तुति, 7:52 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुरलहरी, रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा, 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत, 10 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत में कलाकार उस्ताद विलायत हुसैन खान से सितार वादन राग गौर मल्हार में, और 10:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुहाना सफ़र।

कार्यक्रम विवरण में अभी आपने जाना आज के शेष मुख्य कार्यक्रमों की प्रस्तुति और उनके प्रसारण समय के बारे में। यह आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। अब आप कुछ ही पलों में सुनेंगे संस्कृत में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: संकल्प बन चुका है और इस सपने की पूर्ति के लिए हमें अपना हर पल समर्पित करना है। एनडीए के 12 वर्षों की एक बड़ी सफलता ये भी है कि देश कांग्रेस के कुचक्र से आजाद हुआ है।
1: अस्मिन् अवसरे एनडीए घटक दलैः प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः ऐतिहासिक उपलब्धेः श्लाघनाय एकः संकल्प प्रस्तावः स्वीकृतः। एतदन्तरं सम्पूर्ण विश्वतः प्रधानमन्त्रिणे अभिनन्दन सन्देशाः आगतः। डोनाल्ड ट्रम्पः यूरोपीय आयोगस्य अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेर लेयेन, इटली देशस्य प्रधानमन्त्री जॉर्जिया मेलोनी, जर्मनी देशस्य चांसलर फेडरिक मोर्स, इजराइल देशस्य प्रधानमन्त्री बेंजामिन नेतन्याहू, कनाडा देशस्य प्रधानमन्त्री मार्क कॉर्नी सहैव दक्षिण कोरिया देशस्य राष्ट्रपतिः ली जे म्यूंग इत्यादयः प्रमुख वैश्विक नेतारः श्रीमोदिनं प्रति वर्धापनं प्रेषितवन्तः। संस्कृति मन्त्रालयेन गतवर्षस्य कृते संगीत नाटक अकादमी पुरस्काराः अथ च उस्ताद बिस्मिल्ला खान युवा पुरस्काराः घोषिताः। अकादमी संघस्य सामान्य परिषदा संगीत नृत्य रंगमंच पारंपरिक लोक जनजातीय कला वैविध्येभ्यः कलामंचं यावत् विविध क्षेत्रेभ्यः 88 प्रसिद्धाः कलाकाराः 24-2000 अथ च 25-2000 अकादमी पुरस्कारार्थं चिताः। एते चिताः पुरस्कार विजेतारः अशेषस्य हि देशस्य प्रतिनिधित्वं कुर्वन्ति। ये विभिन्न राज्येभ्यः केन्द्रशासित प्रदेशेभ्यः च सम्बद्धाः सन्ति। बैडमिंटन प्रतिस्पर्धायां सिडनी नगरे प्रचल्यमानायाः ऑस्ट्रेलियन ओपन स्पर्धायाः महिलानां वर्गे पीवी सिंधु तन्वी शर्मा च सफलताम् अवाप्य द्वितीय चक्रं प्रति प्रविष्टवत्यौ। इति वार्ताः।

गुड मॉर्निंग श्रोताओं, आज के अंक में मैं हूं आपके साथ आपका रेडियो दोस्त महताब। कार्यक्रम में हम सबसे पहले आपको सुनवाते हैं सुगम संगीत। सुगम संगीत के कार्यक्रम रसरंग में आज आप सुनेंगे गायक कलाकार शंकर मिश्र नाहर की प्रस्तुति। तो आइए सुनते हैं सबसे पहले ये प्यारी सी प्रस्तुति। सहजो बाई रचित ये भजन है, आवाज़ है गायक कलाकार शंकर मिश्र नाहर की।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए आइए सुनते हैं कुछ जरूरी संदेश।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
2: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
3: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
2: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
3: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
2: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
3: 8700001-4242।
4: They say some cars blend in, but what if yours always stand out? But what if yours always stood out? The Maruti Suzuki Fronks. Experience the thrill of the 1.0-liter turbo engine built for those who crave performance. Join over 4 lakh proud Fronks owners, starting at just ₹6.85 lakh. So, why follow when you can lead? Visit your nearest Nexa showroom today. Nexa.
0: श्रोताओं, कार्यक्रम के अंतर्गत आइए रेल सूचना के अंतर्गत भागलपुर जंक्शन से गुजरने वाले मुख्य ट्रेनों के आगमन और प्रस्थान के बारे में आपको बता दें। गाड़ी संख्या 1553 भागलपुर जयनगर एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय प्रातः 7:50 पर भागलपुर से खुलेगी। गाड़ी संख्या 1306 हावड़ा कवि गुरु एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय 7:45 पर सही समय पर भागलपुर पहुंचेगी। गाड़ी संख्या 12368 आनंद बिहार भागलपुर विक्रमशिला एक्सप्रेस प्रातः 8:15 पर सही समय पर भागलपुर पहुंचेगी। गाड़ी संख्या 15658 ब्रह्मपुत्र मेल प्रातः 8:05 के निर्धारित समय से लगभग एक घंटे लेट चल रही है। गाड़ी संख्या 53416 जमालपुर साहेबगंज पैसेंजर अपने निर्धारित समय 8:37 पर भागलपुर आएगी। कुछ ट्रेनों के बारे में हम आगे भी बताएंगे, अभी आइए सुनते हैं कार्यक्रम में अगली प्रस्तुति। यह प्रस्तुति नज़ीर की लिखी गज़ल है और इसे गाया है शंकर मिश्र नाहर ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए अब कुछ और ट्रेनों के बारे में आपको बता दें। गाड़ी संख्या 13403 रांची भागलपुर वनांचल एक्सप्रेस प्रातः 9 बजे अपने निर्धारित समय पर भागलपुर पहुंचेगी। गाड़ी संख्या 63431 साहिबगंज जमालपुर मेमू प्रातः 9:15 पर अपने निर्धारित समय पर भागलपुर पहुंचेगी। गाड़ी संख्या 13409 मालदा क्यूल इंटरसिटी अपने निर्धारित समय 9:35 पर भागलपुर आएगी। गाड़ी संख्या 13241 बांका राजेंद्र नगर इंटरसिटी एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय प्रातः 10:15 पर भागलपुर पहुंचेगी। गाड़ी संख्या 12367 भागलपुर आनंद विहार विक्रमशिला एक्सप्रेस दिन के 11:55 पर भागलपुर से खुलेगी। तो ये कुछ मुख्य ट्रेनों के बारे में आपसे जानकारी हमने साझा की भागलपुर रेलवे स्टेशन से गुजरने वाले ट्रेनों के बारे में रेल सूचना के अंतर्गत। कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं आखिरी पेशकश बिंदु जी के लिखे भजन को। आइए सुनते हैं गायक कलाकार शंकर मिश्र नाहर की आवाज़ में।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे सुगम संगीत के कार्यक्रम रसरंग में गायक कलाकार शंकर मिश्र नाहर की प्रस्तुति। कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं

0: कथा सागर में एक कहानी, शीर्षक है आधी रोटी पूरा आसमान। कहानीकार हैं कुमारी शालिनी।
1: सुबह के 4 बजे गांव का मंदिर का घंटा बजा और उसे घंटे के साथ सुधा की आंख खुल गई। बिना अलार्म 5 साल से यही रूटीन था। बाहर जनवरी की कड़ाके की ठंड, ना पहनने को गर्म कपड़ा था, बस एक फटी हुई शॉल। सुधा उठी क्योंकि उसका चूल्हा ठंडा रहा था। चूल्हा ठंडा रह गया तो बेटे का पेट ठंडा रह जाएगा और पेट ठंडा रह गया तो सपने भी ठंडे पड़ जाएंगे। चूल्हा में फूंक मारते मारते उसकी आँखों में पानी आ गया। धुएं से या किस्मत से पता नहीं, पास वाली चारपाई पर 6 साल का बेटा आरव चादर में सिकुड़ा हुआ सो रहा था। उसकी भूख से ठीक से नींद भी नहीं आई थी। कल रात उसने आधा पेट ही खाना खाया था। राशन का डिब्बा खाली था। सुधा ने तवा चढ़ाया, आटा गुथा, कुल 3 मुट्ठी आटा बचा था। उसने 3 रोटियां सेकी, 2 रोटी आरव के लिए और 1 रोटी के 2 टुकड़े किए। एक खुद खाया, 1 तवे पर ही छोड़ दिए ताकि दोबारा भूख लगने पर बेटे को दे सके। तभी आरव ने नींद में बड़बड़ाया, माँ बड़ी वाली गाड़ी चलाऊंगा। सुधा का हाथ रुक गया। उसने सोते हुए बेटे का माथा चूमा और कहा, हाँ तो आसमान छुएगा, चाहे तेरी माँ को जिंदगी भर आधी रोटी क्यों ना खाना पड़े। उसी आधी रोटी से शुरू हुआ था आरव के ITI तक का सफ़र। एक माँ ने ठान लिया था, मैं अपने बच्चे को पढ़ने के लिए अपनी मेहनत और ताकत लगा दूंगी। 6 साल का आरव का दाखिला स्कूल में कराया। उसके लिए सुधा ने 4 घरों में बर्तन झाड़ू का काम शुरू किया। महीने के 6,000 रुपये मिले, कमरे का किराया 2,000, स्कूल फीस 1,000, बाकी घर खर्च 3,000, पूरा महीना चलाना। आरव की पढ़ाई शुरू हुई। आरव पढ़ने में बहुत तेज था। उसकी पढ़ाई में जहाँ काम करती थी वहाँ के भी लोग उसकी किताब और कॉपी से मदद करते थे। आरव अब 9वीं में आ गया। साइंस में उसका दिमाग चलता था। टीचर ने कहा, उसको कोचिंग भेजो, यह ITI निकालेगा। मगर फीस थी 3,000 महीना, इतना पैसा कहाँ से। मगर सुधा ने हार नहीं मानी। सुधा के पास पैसे नहीं थे। वे कोचिंग सेंटर के बाहर झाड़ू लगाने लगी। मालिक को कहा, साहब पैसे मत देना, बस मेरे बेटे को पढ़ा दो। आरव को 6 महीने बाद पता चला कि उसकी माँ कोचिंग में शाम को झाड़ू लगाती है। वे फूट फूट कर रोया, माँ रहने दो, मैं नहीं पढ़ता। सुधा ने सिर सहलाया, बोला, मेहनत में कोई शर्म नहीं होती, मैं फर्श साफ करती हूँ ताकि तू कल ITI निकाल सके, मेरा झाड़ू तुझे आसमान तक ले जाएगा। आरव ने मैट्रिक में 91% से पास किया। उसकी दाखिला अब ITI में कराया गया और अब ITI का फॉर्म भरना था। सरकारी ITI शाहपुर में फीडर ट्रेड, फीस 40,000 सालाना। हॉस्टल सुधा के पास 500 रुपये थे। वे अपनी आखिरी निशानी शादी का

मंगलसूत्र लेकर सुनार के पास गई। सुनार बोला, बहन ये तो मत बेचो। सुधा बोली, भैया सुहाग तो चला गया, अब बेटे का भविष्य बनाना है। रख लो, 8,000 रुपये मिले। आरव का ITI में एडमिशन हो गया। आरव के पिता का निधन हो गया था जब वह 4 साल का था। उसका उस समय सुधा के रिश्तेदारों ने कहा, सुधा तू लड़के को अकेले कैसे पालेगी, अकेली विधवा मायके चली जा। जब यह 7 साल का या 8 साल का हो जाए तो इसे किसी ढाबे पर काम में लगा देना और तू भी कुछ काम ढूंढ ले। किसी के घर पर झाड़ू बर्तन का काम तो मिल ही जाएगा। सुधा ने कहा, नहीं मेरा बेटा पढ़ेगा, मैं इसे पढ़ाऊंगी। इसके लिए चाहे मुझे आधा पेट रहना पड़े। उसी दिन से घर में आधी रोटी का नियम शुरू हो गया। आरव के एडमिशन होने के बाद वह हर हफ्ते घर आता। हॉस्टल का खाना बेकार था, वह वहाँ का खाना खाकर बीमार पड़ गया। टाइफाइड डॉक्टर ने कहा, खाना अच्छा तो फल दो। घर में पैसे नहीं थे। अपने पति की आखिरी निशानी अंगूठी जो वह अपने बेटे के लिए रखा था उसे भी उसकी बीमारी के कारण बेच डाला। 15 दिन तक सेब अनार दूध दिया, खुद फिर वही आधी पेट। पड़ोसन बोली, सुधा तू मर जाएगी। सुधा ने जवाब दिया, दीदी मैं मर भी गई तो क्या, आरव जिंदा रहना चाहिए। मेरी आधी रोटी से उसका पूरा भविष्य बनता है तो ये सौदा मंगा नहीं। आरव का तबीयत अब पूरी तरह ठीक हो गया, वह फिर से हॉस्टल चला गया। ITI में प्रैक्टिकल के लिए औजार चाहिए थे। 2,000 रुपये का सेट सुधा ने 2 महीने दिवाली पर घरों में दिए बेचे, मोमबत्ती बेची कर 2,000 रुपये आरव को भेज दिया। आरव ने औजार का सेट लिया। पहला साल आरव ट्रेड में टॉप किया, दूसरा साल प्लेसमेंट आया। टाटा मोटर्स की कंपनी 8,000 महीना ट्रेनिंग के लिए। जिस दिन ज्वाइनिंग लेटर आया आरव भागकर घर आया। माँ चारपाई पर लेटी थी, कमजोर दुबली। 10 साल की आधी रोटी ने शरीर को तोड़ दिया था। आरव लेटकर दिखाकर कहा, माँ देख नौकरी लग गई, 8,000 महीना, अब तू कभी आधी रोटी नहीं खाएगी। सुधा उठी नहीं, बस उंगली से आशीर्वाद दिया, आँखों से आंसू थे। बोली, बेटा आज मेरी आधी रोटी ने पूरा आसमान छू लिया, मैं जीत गई। 5 साल हो गया आरव अब सीनियर टेक्नीशियन है। सैलरी 55,000। उसने माँ के लिए पक्का मकान बनवाया, घर में AC लगाया, घर पर हर सुख सुविधा का सारा सामान मंगवाया ताकि माँ आराम से रह सके। आरव बोला, माँ तू आराम करेगी। हर दिन आरव माँ को 4 रोटी की थाली खुद परोसा करता और दाल सब्जी मिठाई के साथ। सुधा हंसती है पागल, अब तो आदत हो गई आधी की। आरव रो पड़ा, माँ तेरा आधा रोटी ही मेरे पूरे आसमान की नींव थी। ITI की डिग्री पर नाम मेरा है पर मेहनत सारी तेरी है। तू अनपढ़ होकर भी मेरी सबसे बड़ी टीचर है। माँ दुनिया कहते हैं तू अनपढ़ है पर तूने भूख को हरा कर जिंदगी पढ़ा दी। ये डिग्री किसी स्कूल में नहीं मिलती। तेरी आधी रोटी मेरे सबसे बड़ी किताब थी और उसने ही मेरा पूरा आसमान नापना सिखाया। आज मेरा ITI सर्टिफिकेट बोलता है, माँ असली कारीगर है तू है जिसने

0: टी किस्मत को उम्मीद से जोड़कर मेरा भविष्य बना दिया।
1: श्रोताओं, आप सुन रहे थे कार्यक्रम कथा सागर में एक कहानी, शीर्षक था आधी रोटी पूरा आसमान। कहानीकार थी कुमारी शालिनी। श्रोताओं, कार्यक्रम में अब आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं मौसम के बारे में। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आज के दौरान दक्षिण बिहार के ज़िलों में एक दो स्थानों पर गरज और चमक के साथ आंधी चलने और हल्की से मध्यम बारिश होने की अनुमान है। आपको बताएं तो अधिकतम तापमान 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता प्रातः में 70 से 75% और दोपहर में 20 से 25% रहने की संभावना है। पूर्वानुमान अवधि के इस दौरान में 12 से 14 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दक्षिण पूर्व हवा चलने के अनुमान है। आपको मौसम सूचना के अंतर्गत हमने आज के मौसम के हाल के बारे में बताया। अब समय हुआ है कार्यक्रम फिल्म संगीत का। कार्यक्रम फिल्म संगीत की शुरुआत से पहले आपको बताते हैं आज के इतिहास के बारे में। आज की तिथि है 11 जून। आज ही के दिन वर्ष 1770 में ब्रिटिश नेवी ऑफिसर और महान खोजकर्ता कैप्टन जेम्स कुक ने ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ की खोज की थी। आज ही के दिन वर्ष 1866 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। इसे पहले आगरा उच्च न्यायालय के नाम से जाना जाता था। आज ही के दिन वर्ष 1955 में पहले मैग्नीशियम जेट एयरप्लेन ने उड़ान भरी थी। आज ही के दिन वर्ष 2010 में अफ्रीका में 19वीं फुटबॉल विश्व कप टूर्नामेंट की मेज़बानी की थी। ये पहला मौका था जब अफ्रीकी महाद्वीप में इस विश्व प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था। आज ही के दिन वर्ष 1897 में भारत के स्वतंत्रता सेनानी रामप्रसाद बिस्मिल का जन्म हुआ था। आज ही के दिन वर्ष 1989 में भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी मानसी जोशी का जन्म हुआ था। आज ही के दिन वर्ष 1948 में भारतीय राजनीतिज्ञ एवं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद यादव का जन्म हुआ था। ये था आज का इतिहास। श्रोताओं, कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं कुछ फिल्मी नगमे।

कार्यक्रम का पहला गीत सुनिए फिल्म बाजीराव मस्तानी से। इस गीत को गाया है श्रेया घोषाल, गणेश चंदन शिवे और मुस्तबा अजीज नाजा के साथ साथियों ने। गणेश चंदन शिवे, नशीर फराज और सिद्धार्थ और गरिमा ने इसके बोल लिखे हैं। संगीत है संजय लीला भंसाली का।

0: श्रोताओं, अभी आपने सुना फिल्म पैडमैन का ये गीत। कौशल मुनीर ने इसके बोल लिखे थे, अमित त्रिवेदी का संगीत था, आवाज़ थी अरिजीत सिंह की। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए आइए सुनते हैं एक जरूरी संदेश।
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे? So easy!
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए आइए आपको कुछ मुख्य सुर्खियों से अवगत कराते हैं। आज फुटबॉल का महाकुंभ शुरू होने वाला है। जी हां, दुनिया के सबसे बड़े लोकप्रिय टूर्नामेंट

फीफा वर्ल्ड कप की शुरुआत होने जा रही है। फुटबॉल के इस महाकुंभ का फाइनल 19 जुलाई को न्यू जर्सी में खेला जाएगा। 39 दिनों तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में 104 मैच खेले जाएंगे और पहला मुकाबला मैक्सिको सिटी में मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला जाएगा आज और भारतीय समय अनुसार रात 12:30 पर यह मुकाबला शुरू होगा। उससे पहले ओपनिंग सेरेमनी 10:30 से ही शुरू हो जाएगा। फैंस जी ने इस टूर्नामेंट का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। आपको बताएं तो इस टूर्नामेंट में ग्रुप स्टेज में 48 टीमें 12 ग्रुप में बटी हुई हैं। हर टीम 3-3 मैच खेलेगी। हर ग्रुप में टॉप 2 टीमों और तीसरे स्थान पर रहने वाली 8 सबसे बेहतरीन टीमों को नॉकआउट मुकाबले खेलने का मौका मिलेगा। पहले 32 टीमें आएंगी और 16 मैच में विजयी 16 टीम आगे बढ़ेंगी और 16 टीमों के 8 मैच में 8 विजयी टीम फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगी। क्वार्टर फाइनल में 8 टीमें खेलेंगी 4 मैच और उससे 4 विजेताएं सामने आएंगे। उन 4 विजेताओं के बीच सेमीफाइनल खेला जाएगा। 4 टीमें सेमीफाइनल खेलेंगी जिसमें 2 मैचेस होंगे और 2 विजेता सामने आएंगे और उन्हीं दोनों के बीच में फाइनल होगा फीफा वर्ल्ड कप का। तो आज मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका के बीच ये मुकाबला खेला जाएगा। आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत फिल्म वंस अपन अ टाइम इन मुंबई से।

श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए आपको अब महिला टी20 वर्ल्ड कप के बारे में बताते हैं। इंग्लैंड में 12 जून से खेले जाने वाले आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप एक की चर्चा खूब हो रही है इन दिनों, क्योंकि इसे ग्रुप ऑफ डेथ का नाम दिया गया है। इस ग्रुप में 6 बार के चैंपियन ऑस्ट्रेलिया, वनडे वर्ल्ड कप विजेता भारत और पिछले 3 आईसीसी व्हाइट बॉल फाइनल में पहुंचने वाली दक्षिण अफ्रीका को एक साथ रखा गया है। तीनों में से एक टीम ग्रुप स्टेज से बाहर हो जाएगी, इसलिए इस ग्रुप को ग्रुप ऑफ डेथ कहा गया है। तीनों ही मजबूत टीम को इस ग्रुप में रखा गया है। साथ में बांग्लादेश, पाकिस्तान और पहली बार महिला टी20 वर्ल्ड कप खेलने वाली टीम नीदरलैंड्स को भी इसी ग्रुप में रखा गया है। तो इस ग्रुप से कौन सी टीम बाहर होती है और कौन सी टीम आगे बढ़ती है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। आपको बताएं तो हालिया फॉर्म की बात करें तो वनडे वर्ल्ड कप 2025 की विजेता भारतीय टीम पर सबकी नज़रें हैं। टीम ने फरवरी 2026 में ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से टी20 सीरीज हराई, लेकिन इसके बाद दक्षिण अफ्रीका से 1-4 से हारी, इंग्लैंड से 1-2 से सीरीज हारी, और इसलिए अभी कुछ भी कहना सही नहीं होगा। इस भारतीय टीम के परफॉर्मेंस की बात करें तो सबसे ज़्यादा जिस पर नज़र है हमारे खिलाड़ियों में, उनमें स्मृति मंधाना का नाम सबसे आगे है, जिन्होंने 2025 वनडे वर्ल्ड कप में टीम के सबसे ज़्यादा स्कोरर के रूप में परफॉर्म किया था और 2026 के WPL में भी RCB की तरफ से एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी। इसके अलावा अमनजोत कौर, काशवी गौतम के चोट के कारण भारत के 5 बॉलर रणनीति में शेफाली वर्मा के भूमिका को भी अहम माना जा रहा है। तो ये मुकाबले जो है 12 जून से इंग्लैंड में शुरू होंगे। हम बात कर रहे हैं ICC महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 की। और कार्यक्रम के आखिरी गीत वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई के गीत मोहित चौहान के द्वारा गाया गया, इस गीत के साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत अब यहीं संपन्न होता है। आप सुन रहे थे गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। आप श्रोताओं को हमारी प्रस्तुति कैसी लगी, आप हमें सुझाव और अपनी प्रतिक्रिया हम तक ज़रूर आप भेजें। आप हमें खत लिख सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं, जो भी आपके लिए सुविधाजनक हो आप हमें ज़रूर अपनी बात हम तक पहुँचाएँ। आज आपके साथ था मैं, आपका रेडियो दोस्त महताब। मुझे इजाज़त दीजिए, सुनते रहिए आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र।

मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलो हर्ट्स पर और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार प्रभात आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं

0: की संभावना। पश्चिम एशिया संघर्ष में तनाव के बीच अमरीकी सेना ने ईरान में कई ठिकानों पर हमले किए। प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना की और देश से ओलंपिक के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने का आग्रह किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विकसित भारत 2047 के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष की बैठक का विषय है विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भाग लेंगे। वे समावेशी मानव विकास ढांचे पर चर्चा करेंगे।
1: बैठक में देश भर में उद्यमिता को बढ़ावा देने, कौशल विकास को मजबूत करने और अस्थायी रोजगार के अवसर सृजित करने के उपायों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। इन चर्चाओं में शासन, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, अभिसरण, साझेदारी और डेटा आधारित प्रणालियों सहित प्रमुख सहायक तत्वों का उपयोग करते हुए एक कार्यान्वयन प्रारूप तैयार करने पर बल दिया जाएगा। इसके साथ ही अल्प, मध्यम और दीर्घकालिक परिणामों पर नजर रखने के लिए एक तंत्र भी स्थापित किया जाएगा, जिससे जवाबदेही और मापन योग्य प्रभाव सुनिश्चित हो सके। समावेशी मानव विकास पर राष्ट्रीय दृष्टिकोण के साथ राज्य के दृष्टिकोणों को संरक्षित करने पर विशेष बल दिया जाएगा। नीति आयोग की शासी परिषद 26 से 28 दिसंबर 2025 के दौरान आयोजित मुख्य सचिवों के 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन की सिफारिशों पर भी ध्यान केंद्रित करेगी। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एनडीए सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना सरकार की सही नीतियों और सही दिशा का प्रमाण है।
2: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही है, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का सपना अब देश के हर नागरिक का संकल्प बन चुका है। उन्होंने कहा कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारत ने वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर हासिल की है।

0: होंगे।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का सपना अब देश के हर नागरिक का संकल्प बन चुका है। उन्होंने कहा कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारत ने वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर हासिल की है।

0: नेतन्याहू सहित विश्व भर के नेताओं से मिले बधाई संदेशों के लिए उनका हृदय से आभार व्यक्त किया है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम सरकार द्वारा गरीबों के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों के बारे में चर्चा करेंगे।
1: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने गरीबों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की। गरीबों के लिए पक्का घर उपलब्ध कराना मोदी सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए 4 करोड़ से अधिक घर आवंटित किए गए। वहीं खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश भर के 81 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। ओडिशा के कालाहांडी जिले के इंद्रमणि नायक ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस योजना से गरीब लोगों को बहुत लाभ मिल रहा है।
2: गरीब कल्याण योजना जो नरेंद्र मोदी ने जो किया है वो हमारा फैमिली 5 है जो हमको 5-5 किलो दे रहे हैं। तो अभी पहले से बहुत दिक्कत था, अभी तो बहुत हम लोग अभी सुखी शांति से सब जी रहे हैं।
1: दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जरूरतमंद परिवारों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों पर लोगों को सस्ती दरों पर जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। देश भर में अब तक लगभग 10 करोड़ 82 लाख लोगों ने आयुष्मान भारत योजना के तहत कैशलेस इलाज का लाभ लिया है। जम्मू कश्मीर के बारामूला के रहने वाले फैयाज अहमद ने कहा कि यह योजना आपातकालीन परिस्थितियों में गरीब लोगों के इलाज में बहुत मददगार साबित हो रही है।
3: जब से आयुष्मान भारत का स्कीम मोदी जी ने लॉन्च करा है, कभी भी किसी को जरूरत पड़ती है तो उसको भरपूर और एक आला मयारी इलाज बेहतरीन अस्पताल में मिलता है और राइट टाइम पे मिलता है, कोई क्यू में रहना नहीं पड़ता। मोदी जी हिस्ट्री के बेहतरीन कस्टोडियन में से एक है जो अपने आवाम का एक बेहतरीन कस्टोडियन है।
1: पारंपरिक ईंधन जैसे कोयले और लकड़ी के धुएं से होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं से राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की, जिसके तहत अब तक 10 करोड़ 55 लाख से अधिक महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दिए गए। वहीं सड़क किनारे कारोबार करने वाले रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को ऋण देने के लिए शुरू की गई पीएम स्वनिधि योजना के तहत अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक लोगों को ऋण दिए जा चुके हैं। भारत ने सामाजिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। वर्ष 2015 में 19% लोगों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल रहा था, जो वर्ष 2025 में बढ़कर 64% से अधिक हो गया है। सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से लगभग 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया, जो जन कल्याण और समावेशी विकास के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और एआई से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय वाणिज्य मंडल आईसीसी ने पश्चिम बंगाल में अपनी सदस्य कंपनियों के माध्यम से 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश को बढ़ावा देने की योजना बनाई है। एक रिपोर्ट।
5: भारतीय वाणिज्य मंडल आईसीसी के अध्यक्ष ब्रजभूषण अग्रवाल के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के बीच नई दिल्ली में हुई बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा की गई। आईसीसी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में आर्थिक गतिविधियों को लेकर नया उत्साह और सकारात्मक माहौल दिखाई दे रहा है। इससे राज्य के आर्थिक वृद्धि को गति मिलेगी और निवेश के लिए एक आकर्षक केंद्र के रूप में उसकी पहचान और मजबूत होगी। भारतीय वाणिज्य मंडल की स्थापना वर्ष 1925 में उद्योगपति घनश्याम दास बिड़ला और अन्य व्यापारिक नेताओं ने की थी। यह देश के सबसे पुराने उद्योग संगठनों में से एक है। समाचार से कृष्णकांत।
0: पश्चिम एशिया में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अमरीका ने कल ईरान के कई ठिकानों पर हवाई हमले किए। अमरीकी सेना ने बताया कि ये हमले ईरान की लगातार आक्रामक गतिविधियों के जवाब में किए गए हैं। एक रिपोर्ट।

0: अमरीकी हमलों का ये दूसरा दिन है। इससे कुछ घंटे पहले ईरान ने बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि बातचीत में गतिरोध के लिए ईरान को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वहीं संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत ने कहा कि ईरान धमकी और दबाव के बीच किसी तरह की बातचीत नहीं करेगा। इस बीच ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने कहा कि ओरमुज जलडमरू मध्य को सभी जहाजों और तेल टैंकरों के लिए बंद कर दिया गया है। संघर्ष के कारण वैश्विक तेल बाजार पर भी असर पड़ा है। कच्चे तेल की कीमत $93 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गई है। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम के कुछ क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ओलावृष्टि के साथ वर्षा का अनुमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए ओलंपिक के लिए बड़े लक्ष्य निर्धारित करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में NDA सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि युवा खिलाड़ी लगातार बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। फीफा विश्व कप 2026 का आज से आगाज हो रहा है। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमरीका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित किया जाएगा।
2: फीफा विश्व कप का यह अब तक का सबसे बड़ा संस्करण है। इसमें पहली बार 48 टीमें भाग ले रही हैं। पहले के संस्करणों में 32 टीमें शामिल होती थी। मेजबान देश अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको को विश्व कप में सीधे प्रवेश मिला है। अन्य 45 टीमों ने 2 वर्ष लंबे क्वालिफाइंग अभियान के जरिए जगह बनाई है। टूर्नामेंट में 12 ग्रुप है। प्रत्येक ग्रुप में 4-4 टीमें शामिल है। हर ग्रुप की शीर्ष 2 टीमें सीधे नॉकआउट चरण में प्रवेश करेंगी। इसमें 72 ग्रुप स्टेज और 32 नॉकआउट मुकाबले होंगे। फाइनल 19 जुलाई को खेला जाएगा। समाचार कक्ष से मैं चिराग झा।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं देवेंद्र त्रिपाठी।
3: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। जनसत्ता ने प्रधानमंत्री मोदी के 12 वर्ष पूरे होने पर आयोजित अभिनंदन बैठक में उनका बयान दिया है। कांग्रेस ने अपनी नाकामियों का ठीकरा हिंदुओं पर फोड़ा। लोकसत्ता ने श्री मोदी का बयान दिया है, भारत अब आत्मनिर्भर, सुरक्षित और समृद्ध राष्ट्र बन रहा है। झटका शीर्षक से हिंदुस्तान लिखता है, मार्च के बाद 20% तक महंगा हुआ जरूरत का सामान, रसोई का खर्च करीब ₹1,000 तक बढ़ा। दैनिक भास्कर ने नीट पेपर लीक मामले में NTA अधिकारियों की संसदीय समिति से मुलाकात को सुर्खी बनाया है। संसदीय समिति के सामने NTA ने रखा सुरक्षा प्लान, समिति ने कहा हमें अमरीका और चीन जैसे देशों से सीखना चाहिए। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पृष्ठ में POK की पीड़ा का विश्लेषण किया है। पत्र लिखता है, इस्लामाबाद ने POK में निर्दोष नागरिकों के साथ जैसी बर्बरता दिखाई है, उससे क्षेत्र की वास्तविक स्थिति फिर से दुनिया के सामने उजागर हुई है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर में मानवाधिकारों की दुहाई देने वाले पाकिस्तान का POK में रवैया उसके दोहरे मापदंडों की ही कलई खोलता है। दैनिक ट्रिब्यून की खबर है, 30 साल पहले लापता पर्वतारोही के अवशेष भारत लाएगी ITBP। माउंट एवरेस्ट पर 1996 के दुर्भाग्यपूर्ण अभियान के दौरान खो गए थे लांस नायक दोर्जे मोरूप। नवभारत टाइम्स ने फीफा विश्व कप को अहमियत दी है। फुटबॉल का महासंग्राम आज से, 10 दावेदार, 10 सुपरस्टार। राजस्थान पत्रिका ने WHO की रिपोर्ट प्रकाशित की है, खराब खान पान से हर रोज 42 लाख बीमार, 4100 मौत।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना NDA सरकार की सही नीतियों का प्रमाण। भारतीय वाणिज्य मंडल ने पश्चिम बंगाल में 1,00,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना बनाई। उत्तर पूर्वी बंगाल, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र, ओडिशा, केरल और माहे के कुछ स्थानों पर आज मूसलाधार बारिश की संभावना। और प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning. I am Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to chair 11th Governing Council meeting of Niti Aayog in New Delhi today. Prime Minister says lifting more than 25 crore people out of poverty during past 12 years of NDA government shows that its policies are correct and moving in right direction.

0: होता है कि सरकार की पॉलिसियां दुरुस्त हैं और वो सही सम्त में आगे बढ़ रही है। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स मगरबी बंगाल में 1,00,000 करोड़ रुपए मालियत की सरमायाकारी में सहूलत पैदा करने का इरादा रखता है। भारतीय मौसमियात महकमे ने शुमाल मशिक, मगरबी बंगाल, जेली हिमालयी खित्ते, उड़ीसा, केरला और माहे में शदीद बारिश की पेशगोई की है। मगरबी एशिया में कशीदगी में फिर से इजाफा हो गया है। अमरीकी फौज ने ईरान में कई ठिकानों पर हमले किए हैं और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों की कारकर्दगी की सताइश की है और ओलंपिक खेलों के लिए बड़े निशाने तय करने पर जोर दिया है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन कल्चरल सेंटर में नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल मीटिंग की सदारत करेंगे। विकसित भारत के लिए टीम इंडिया के वज़ीर आज़म के नज़रिए के ऐन मुताबिक इस साल के मौजू विकसित भारत 2047 के लिए जामे इंसानी तरक्की में उम्र, खित्ते, सिन्फ या समाजी और माशी पस मंज़र के कतई नज़र हर भारतीय की बहबूद और तरक्की पर तवज्जो मरकूज़ की गई है। गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग में इस नज़रिए को हकीकत की शक्ल देने और पूरे मुल्क में हर शहरी के लिए इसे ठोस और नुमाया नतीजे में बदलने की हिकमत अमली पर तबादले ख्याल किया जाएगा। गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग में वज़राए आला और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहिबान चार बुनियादी पहलुओं के ताल्लुक से इंसानी फरोग के जामे फ्रेमवर्क पर गौरखोज़ करेंगे, जिसमें बुनियादी इंसानी सरमाया, मुस्तकबिल के लिए तैयार हुनरमंदी, रोज़गार, छोटा कारोबार, सेहत, तग़ज़िया और बहबूद, नीज सबके लिए मुसावात और वक़ार शामिल हैं। मज़ीद तफ़सील हमारे नामा निगार से।
1: आज की इस मीटिंग में पूरे मुल्क में कारोबार को फ़रोग देने, हुनरमंदी की वसत और रोज़गार के पायदार मौके पैदा करने के इक़दामात पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। इसके अलावा अमल दरआमद से मुतालिक खाका इज्तमाई तौर पर तैयार करने पर भी तवज्जो मरकूज की जाएगी, जिसमें हुक्मरानी, डिजिटल पब्लिक बुनियादी ढांचे, साझेदारी, डेटा पर मबनी निज़ाम, नेज मुख्तसर, दरमियाने और तवील मुद्दती नतीजों पर नज़र रखने का एक मुनज़्ज़म तरीक़ा कार शामिल होगा। इस तरह जवाबदेही और नुमाया असरात को यकीनी बनाया जा सकेगा। इसके साथ साथ जामे इंसानी फरोग के ताल्लुक से कौमी नज़रिए के साथ रियासतों के नज़रियात को हम आहंग करने पर भी खास जोर दिया जाएगा, ताकि मसावियाना और ठोस तरक्की की समत मुत्तहदा और इज्तमाई हिकमत अमली को तकवियत मिल सके। नीति आयोग की गवर्नेंस काउंसिल चीफ सेक्रेटरियों की 5वीं कौमी कॉन्फ्रेंस की सिफारिशात पर भी तवज्जो मरकूज करेगी, जो पिछले साल दिसंबर के अवाखिर में हुई थी। दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शोएबा।
0: वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मुल्क के 140 करोड़ शहरियों की उमंगें यकीनन पूरी की जाएंगी। उन्होंने कहा कि कौमी जमहूरी इत्तेहाद एनडीए ने हमेशा मुल्क के भरोसे को तकबीयत बख्शी है। जनाब मोदी कल शाम नई दिल्ली में वाक़ भारत मंडपम में एनडीए कॉन्क्लेव से खिताब कर रहे थे। वज़ीर आज़म ने कहा कि 2014 में उभरती हुई उम्मीद की किरण आज एक नए एतमाद की किरण में तब्दील हो चुकी है। उन्होंने कहा कि मुल्क के लोगों ने पहली बार इसका मुशाहिदा किया है कि जब हुकूमत सही नीयत के साथ चलाई जाती है तो तरक्की भी तेज़ रफ्तार से होती है। वज़ीर आज़म ने कहा कि एनडीए हुकूमत के 12 साल के दौरान 25 करोड़ से ज़्यादा लोगों को गरीबी से बाहर लाया गया है, जिससे ये जाहिर होता है कि हुकूमत की पॉलिसियाँ दुरुस्त हैं और ये सही समत में गामजन हैं।
2: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
0: अपने खिताब में जनाब मोदी ने कहा कि ऐसे वक्त में कि जब दुनिया भर के बड़े ममालिक इक्तिसादी मसाइल से दो चार हैं, भारत ने साल 2025-26 में 7.7% की शरह तरक्की हासिल की। उन्होंने कहा कि मुल्क 5 कमज़ोर मईशतों के ज़ुमरे से निकल चुका है और अब दुनिया में सबसे तेज़ रफ्तार से तरक्की करने वाली मईशतों में से एक बन चुका है।
2: आज ग्लोबल ग्रोथ में भारत की हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है, इसलिए भारत को अब ग्लोबल

0: पैरामीटर, ग्लोबल कंपटीशन और ग्लोबल पर्सपेक्टिव देखना है। दुनिया भारत से सॉल्यूशन चाहती है, दुनिया भारत में वैश्विक सप्लाई चेन का एक भरोसेमंद पार्टनर देख रही है और हमें दुनिया की इन अपेक्षाओं पर खरा उतर कर दिखाना है।
1: ऐसे भारत का सफर है जिसने बड़े अहदाफ मुकर्रर करके और आलमी अदम इस्तेहकाम के हालात में भी इन अहदाफ को हासिल करने की अनथक कोशिश करके पहली बार अपनी मुकम्मल सलाहियतों को बरूएकार लाना शुरू किया। कल कौमी जमहूरी इतिहाद ने एक करारदाद मंजूर की जिसमें मुल्क के सबसे तवील अरसे तक खिदमात अंजाम देने वाले मुंतखब वजीर आजम बनने पर जनाब मोदी की तारीफ की गई है। बीजेपी के सदर नितिन नवीन ने कहा है कि नई दिल्ली में एनडीए के कॉन्क्लेव में 35 सियासी पार्टियों के 75 मंदूबीन ने शिरकत की। नामानिगारों से बात करते हुए जनाब नवीन ने कहा कि एनडीए के रहनुमाओं ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत के तई तशक्कुर का इजहार किया और तारीखी संगे मील पर उन्हें मुबारकबाद दी और इसे मुल्क के 140 करोड़ लोगों के लिए फख्र का लम्हा करार दिया। जनाब नितिन नवीन ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में भारत विकसित भारत के नजरिए की समत आगे बढ़ रहा है और सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास के वजीर आजम के रहनुमाई वाले मंत्र से मुल्क भर में लोग बाहम मुंसलिक हुए हैं। भारत में गुज़िश्ता 12 साल के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी की दूरअंदेश क्यादत में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के वसूलों से तहरीक पाकर जबरदस्त तब्दीली रोनुमा हुई। इस दौरान हुकूमत ने गरीबों की फलाह व बहबूद और उन्हें बाइख्तियार बनाने, किसानों, ख्वातीन और नौजवानों के लिए कई अहम इकदाम किए हैं। आकाशवाणी का खबरों का शोभा 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के उन्वान से एक खसूसी फीचर पेश कर रहा है। आज हम गरीबों की बहबूद के लिए हुकूमत की तरफ से किए गए इकदाम पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं।
2: गुज़श्ता 12 साल के दौरान नरेंद्र मोदी हुकूमत ने गरीबों की बहबूद और समाजी तहफ़ुज़ को मुस्तहकम करने के लिए कई अहम स्कीमें नाफिज की हैं। गरीबों को मकानात मुहैया करने पर मोदी हुकूमत ने खास तवज्जो दी है। खुराक की यकीनी फराहमी के शोबे में हुकूमत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुल्क भर में 81 करोड़ से ज़्यादा मुस्तफिदीन को मुफ्त अनाज फराहम कर रही है। आकाशवाणी न्यूज़ से बात करते हुए उड़ीसा के कालाहांडी की इंद्रामानी नायक ने बताया कि गरीब लोग इस स्कीम से इस्तेफादा कर रहे हैं।
3: गरीब कल्याण अन्न योजना जो नरेंद्र मोदी ने जो किया है वो हमारा फैमिली 5 है जो हमको 5-5 किलो दे रहे हैं। पहले से बहुत दिक्कत था, अभी तो बहुत हम लोग अभी सुखी शांति से सब जी रहे हैं। अभी जो 5-5 किलो हमारा परिवार खूब खुश पूरा बहुत आराम से रह रहे हैं।
2: हिफ्ज़ान सेहत से मुताल्लिक दुनिया की सबसे बड़ी अवामी स्कीम आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना इक्तिसादी तौर पर कमजोर कुनबों को 5 लाख रुपए का हेल्थ कवरेज फराहम कर रही है। साथ ही जन औषधि केंद्रों से जेनरिक दवाएं कम कीमतों पर मुहैया की कराई जा रही हैं। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए जम्मू कश्मीर के बारामूला के फैयाज अहमद ने बताया कि आयुष्मान भारत स्कीम के तहत गरीबों को मुश्किल तरीन हालात के दौरान इलाज हासिल करने में सहूलत फराहम की जा रही है।
4: मैं एनडीए सरकार और मोदी जी का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बहुत सारी जो स्कीमें चलाई जिसने मुल्क के अंदर हिस्ट्री में पहली बार एक गरीब को सीधा बरह-रास्त फायदा पहुंचा डिजिटलाइजेशन के जरिए। आयुष्मान भारत की बात करना चाहूंगा, मोदी जी की सरकार से पहले मुल्क में यह होता था अचानक किसी की बीमारी का पता चलता था या बीमारी के टाइम जो ऑपरेशन सर्जरी करनी होती थी उन्हें या तो जमीन बेचनी पड़ती थी या घर की कोई कीमती शय बेच कर वो चीज़ों का पैसे का बंदोबस्त करके ऑपरेशन और बाकी चीज़ें कराने पड़ते थे। लेकिन जब से आयुष्मान भारत का स्कीम को मोदी जी ने लॉन्च करा है तब से ये चीज़ पूरे मुल्क में नहीं है।
2: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ 55 लाख से ज्यादा खवातीन को मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन फराहम किए जा रहे हैं। नई दिल्ली से सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर।
1: इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स आईसीसी अपनी मेंबर कंपनियों के जरिए मगरबी बंगाल में 1 लाख करोड़ रुपए मालियत की सरमायाकारी में सहूलत पैदा करने का इरादा रखता है जिससे रियासत की इक्तिसादी सलाहियत और तरक्की के इम्कानात में सनतों के बढ़ते हुए एतमाद की अक्कासी होती है। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर ब्रिजभूषण अग्रवाल की ज़ेर क़यादत सनती इदारे के एक वफद और मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह के दरमियान नई दिल्ली

0: ने मीटिंग के दौरान इस तजवीज़ पर तबादले ख्याल किया गया। मस्कूरा ऐवानी तजारत ने कहा है कि मगरबी बंगाल में पुरउम्मीदी और मुस्बत रफ्तार का नया माहौल देखने में आ रहा है, जिससे माशी तरक्की की रफ्तार तेज़ करने में मदद मिल सकती है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों की कारकर्दगी की सताइश की और ओलंपिक्स खेल के बड़े मकासद मुतय्यन करने पर जोर दिया है। कल नई दिल्ली में मुनाकिदा एनडीए कॉन्क्लेव में इजहार ख्याल करते हुए जनाब मोदी ने नौजवान एथलीट्स की हुसूलियाबियों और भारत में खेलों की तेज रफ्तार तरक्की को उजागर किया।
1: भारत दुनिया की बिगेस्ट स्पोर्ट लीग की धरती बनता जा रहा है। आने वाले सालों में हमारी ये ख्याति और बुलंद होगी। ओलंपिक्स के लिए हमारी तैयारियां भी भारत की एस्पिरेशन का ही प्रतिबिंब है। हमें छोटा नहीं सोचना है, हमें लक्ष्य ऊंचे रखने हैं और उन्हें प्राप्त करने के लिए पूरी ताकत लगा देनी है।
0: अमरीकी फौज ने कल ईरान में कई ठिकानों पर फिर से हमले किए। अमरीकी फौज ने कहा है कि ईरान की लगातार जारहियत के तनाजुर में जवाबी कार्रवाई करते हुए ये हमले किए गए हैं। लड़ाई खत्म कराने के लिए मुजाकरात बहाल करने की कोशिशों के बावजूद मगरबी एशिया में फिर से कशीदगी बढ़ गई है। बहरैन, कुवैत और उर्दुन में जहां अमरीकी फौजी मुतय्यन हैं, ईरान के हमलों के चंद घंटों बाद ये अमरीकी हमले हुए। ईरान के मीडिया ने मुल्क के जुनूब में बंदर अब्बास, सिरिक, मिनाब और किशम जजीरे में धमाके होने की इत्तला दी है। उधर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ये तंबीह की है कि ईरान को तातुल का शिकार मुजाकरात की कीमत चुकाना होगी, जबकि अक्वाम मुत्तहिदा में ईरान के नुमाइंदे ने कहा है कि ईरान धमकियों और दबाव में आकर बातचीत नहीं करेगा। इधर ईरान के पासदारान इनकलाब ने तेल टैंकरों और कमर्शियल बहरी जहाजों समेत हर तरह के जहाजों के लिए आबनाए हुरमुज के बंद होने का दावा किया है। भारतीय मौसमियात महकमे ने अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, केरला, माहे, उड़ीसा, मगरबी बंगाल के ज़ेली हिमालयी खित्ते और सिक्किम में बाज़ मकामात पर आज शदीद बारिश की पेशगोई की है। मौसमियात महकमे के मुताबिक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश होने और ओले गिरने का इम्कान है। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं कौनैन हैदर।
2: शुक्रिया असदुल्ला। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इनकलाब और प्रताप समेत आज के सभी अखबारात ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को तवील तरीन मुद्दत तक मुंतखब वजीर आजम के तौर पर खिदमात अंजाम देने को सफ़े अव्वल पर शाये करते हुए लिखा है कि यह भारत की तारीख में एक अहम संगे मील है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू समेत मुतअद्दिद ममालिक के सरकर्दा रहनुमाओं ने वजीर आजम को मुबारकबाद दी है। रोजनामा प्रताप ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के इस बयान को सफ़े अव्वल पर नुमाया किया है कि ज़मीनी सतह पर कवानीन और पॉलिसियों का नफाज ही अच्छी हुक्मरानी की कलीद है। उन्होंने सिविल सर्विस में खवातीन की बढ़ती हुई नुमाइंदगी की भी सताइश की।
0: और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल मीटिंग की सदारत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि एनडीए सरकार के गुज़श्ता 12 साल के दौरान 25 करोड़ से ज्यादा अफराद को गुरबत से बाहर लाए जाने से ये जाहिर होता है कि सरकार की पॉलिसियां दुरुस्त हैं और वो सही सम्त में आगे बढ़ रही है। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स मगरबी बंगाल में 1,00,000 करोड़ रुपए मालियत की सरमायाकारी में सहूलत पैदा करने का इरादा रखता है। भारतीय मौसमियात महकमे ने शुमाल मशिक, मगरबी बंगाल के ज़ेले हिमालयी खित्ते, उड़ीसा, केरला और माही में शदीद बारिश की पेशगोई की है। मगरबी एशिया में कशीदगी में फिर से इजाफा हो गया है। और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों की कारकर्दगी की सताइश की है और ओलंपिक खेलों के लिए बड़े निशाने तय करने पर जोर दिया है। इसी के साथ आकाशवाणी से खबरनामा खत्म हुआ।
3: यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडिया वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर। एक अंतराल के बाद आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
4: जिस ऊंचाई पर तिरंगा होता है वहाँ लापरवाही नहीं पहुँचनी चाहिए। भारतीय ध्वज न सजावट है, न परिधान और न प्रचार का माध्यम।
5: भारतीय ध्वज संहिता 2002 के अनुसार तिरंगे का आकार, रंग और स्वरूप पूरी गरिमा के अनुरूप होना चाहिए। फटा, गंदा या क्षतिग्रस्त ध्वज कभी नहीं फहराया जाना चाहिए। और याद रखिए, राष्ट्रीय ध्वज का

0: अपमान राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के तहत कानूनी अपराध है। ये नियम डराने के लिए नहीं, सम्मान सिखाने के लिए है।
1: क्योंकि तिरंगे का सम्मान देश का सम्मान। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: बाढ़ से बचने के उपाय। आपातकालीन किट हमेशा अपने पास रखें, जिसमें एक छोटी रेडियो, टॉर्च, बैटरी, मजबूत रस्सी, माचिस, मोमबत्ती, पानी, सूखा भोजन, खाद्य सामग्री आदि साथ हो। घर के सभी सदस्यों को नजदीकी सुरक्षित आश्रय का पता हो। बच्चों को बाढ़ के पानी में खेलने से रोकें। सांपों एवं अन्य जहरीले जंतुओं से बचकर रहें। चेतावनी व सुझाव के लिए रेडियो सुने या टीवी देखें। अफवाह पर ध्यान न दें और न ही घबराएं। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी।
3: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी होंगे शामिल। विधान परिषद की 9 सीटों पर द्विवार्षिक चुनाव और 1 सीट पर उपचुनाव के लिए निर्वाचित उम्मीदवारों के नाम की आज हो सकती है घोषणा। प्रदेश के 5 कलाकारों को वर्ष 2024 और 2025 के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा। और प्रदेश के अधिकतर भागों में आज सुबह से बारिश का सिलसिला जारी। मौसम विभाग ने अगले 3 घंटों के दौरान पटना, अरवल, भोजपुर, जहानाबाद, नालंदा, सारण और वैशाली जिले में आंधी, बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विकसित भारत 2047 के लिए टीम इंडिया के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष की बैठक का विषय है विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भाग लेंगे।
1: बैठक में देश भर में उद्यमिता को बढ़ावा देने, कौशल विकास को मजबूत करने और अस्थायी रोजगार के अवसर सृजित करने के उपायों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। इन चर्चाओं में शासन, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, अभिसरण, साझेदारी और डेटा आधारित प्रणालियों सहित प्रमुख सहायक तत्वों का उपयोग करते हुए एक कार्यान्वयन प्रारूप तैयार करने पर बल दिया जाएगा। इसके साथ ही अल्प, मध्यम और दीर्घकालिक परिणामों पर नजर रखने के लिए एक तंत्र भी स्थापित किया जाएगा, जिससे जवाबदेही और मापन योग्य प्रभाव सुनिश्चित हो सके। समावेशी मानव विकास पर राष्ट्रीय दृष्टिकोण के साथ राज्य के दृष्टिकोणों को संरेखित करने पर विशेष बल दिया जाएगा। नीति आयोग की शासी परिषद 26 से 28 दिसंबर 2025 के दौरान आयोजित मुख्य सचिवों के 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन की सिफारिशों पर भी ध्यान केंद्रित करेगी। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार।

0: दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। नई दिल्ली में एनडीए की बैठक में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विश्वासघात के बाद देश की जनता ने एनडीए सरकार पर भरोसा जताया है।
2: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
1: श्री मोदी ने कहा कि देश लगातार विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है।
2: ये के 12 वर्षों की उपलब्धियों की एक और विशेषता है, हमें ये उपलब्धियां वैश्विक अस्थिरता और अशांति के दौर में हासिल हुई है। दुनिया के बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाएं संघर्ष कर रही है, तब भी 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर तो जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि एनडीए राष्ट्र की सेवा और विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए नए जोश के साथ मिलकर काम करना जारी रखेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक स्थिरता के महत्व को समझ लिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत सभी देशवासियों का सपना होना चाहिए।
2: आज देश का हर नागरिक विकसित भारत के सपने से भरा हुआ। विकसित भारत का सपना अब किसी एक व्यक्ति का नहीं रहा, किसी सरकार का नहीं रहा, किसी दल का नहीं रहा, देश के जन जन का सपना बन चुका है, संकल्प बन चुका है। और इस सपने की पूर्ति के लिए हमें अपना हर पल समर्पित करना है। एनडीए के 12 वर्षों की एक बड़ी सफलता ये भी है कि देश कांग्रेस के कुचक्र से आजाद हुआ है।
1: भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि एनडीए सम्मेलन में 35 राजनीतिक दलों के 75 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। श्री नवीन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि वर्तमान में एनडीए गठबंधन 22 से अधिक राज्यों में सत्ता में है, जो देश के लगभग 75% भौगोलिक क्षेत्र को कवर करता है। विधान परिषद की 9 सीटों पर द्विवार्षिक चुनाव और 1 सीट के उपचुनाव के लिए निर्वाचित उम्मीदवारों के नाम की घोषणा आज किए जाने की संभावना है। इन चुनावों के लिए नाम वापसी का आज अंतिम दिन है। किसी भी उम्मीदवार के नाम वापस नहीं लिए जाने की स्थिति में विजय उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। 10 सीटों पर 10 उम्मीदवार होने के कारण सभी उम्मीदवारों का निर्विरोध निर्वाचन तय माना जा रहा है। भाजपा ने इस चुनाव के लिए पवन सिंह, संजय मयूख, अनिल कुमार ठाकुर और शीला पंडित को उम्मीदवार बनाया है। वहीं जदयू ने स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार, भारती मेहता, शिवरानी देवी प्रजापति और ललन प्रसाद को उम्मीदवार बनाया है। इधर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने पार्टी के कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष अशरफ अंसारी को उम्मीदवार बनाया है। महागठबंधन की ओर से 1 सीट पर राजद के सुनील सिंह उम्मीदवार हैं। राजस्व और भूमि सुधार विभाग आज से 17 जून तक राज्य के सभी अंचलों में लंबित आवेदनों के निष्पादन के लिए विशेष अभियान चलाएगा। इस दौरान 46 लाख आवेदनों के निष्पादन का लक्ष्य रखा गया है। विभागीय मंत्री दिलीप जायसवाल ने बताया कि पिछले वर्ष 16 अगस्त से 20 सितंबर तक चलाए गए महाअभियान के दौरान आवेदन लिए गए थे, हालांकि तकनीकी कारणों से इन आवेदन का निपटारा नहीं किया जा सका था। केंद्र सरकार ने सूक्ष्म वित्त संस्थानों के लिए दूसरे चरण की ऋण गारंटी योजना की वैधता को इस वर्ष 31 अगस्त तक या 20,000 करोड़ रुपए की गारंटी जारी होने तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। अब तक कुल 770 करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं। योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के माध्यम से ऋण गारंटी सहायता प्रदान करना है। पटना उच्च न्यायालय में 7 नए न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के अनुसार इनमें 3 स्थायी और 4 अतिरिक्त न्यायाधीश शामिल हैं। पटना उच्च न्यायालय की ओर से कॉलेजियम के तहत 11 अधिवक्ताओं के नाम भेजे गए थे, जिसके बाद केंद्र सरकार ने 7 नामों की अनुशंसा की है।

0: संस्कृति मंत्रालय ने वर्ष 2024 और 2025 के संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप, अकादमी रत्न, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और उस्ताद बिस्मिल्ला खान युवा पुरस्कारों की घोषणा की है। प्रदेश के 5 कलाकारों को अकादमी के विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा। वरिष्ठ अभिनेता सुरेश कुमार हज्जू, नाट्य निदेशक शिव नारायण झा और लोक कलाकार महेंद्र राम को राष्ट्रीय कला पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। इसके साथ ही युवा रंगकर्मी रोहित चंद्रा और लोक गायिका मनीषा श्रीवास्तव को युवा पुरस्कार और उस्ताद बिस्मिल्ला खान पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Patna को फॉलो कर सकते हैं। प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में आज सुबह से ही तेज हवा के साथ बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने मोबाइल हूटर के माध्यम से अगले 3 घंटों में पटना, अरवल, भोजपुर, जहानाबाद, नालंदा, सारण और वैशाली जिले में तेज आंधी के साथ बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। हमारे संवाददाताओं ने बताया है कि इन स्थानों पर आज सुबह से ही तेज हवा के साथ बारिश हो रही है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 घंटों के दौरान मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर जिले के विभिन्न स्थानों पर आंधी, बारिश और वज्रपात का रेड अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के शेष स्थानों पर भी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान किशनगंज के टेढ़ा गांच में सबसे अधिक 57.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने मीडिया की उन खबरों का खंडन किया है जिनमें दावा किया गया था कि नेपाल ने भारत से आम के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। मंत्रालय ने कहा कि यह रिपोर्ट तथ्यात्मक रूप से गलत और भ्रामक है। मंत्रालय ने कहा है कि हालांकि नेपाल ने हाल ही में गर्म पानी से उपचार की आवश्यकता सहित कुछ आयात शर्तों में संशोधन किया है, भारत निर्धारित आवश्यकताओं के अनुपालन में निर्यात को बढ़ावा देना जारी रखे हुए है। इस बीच नेपाल सरकार ने भी स्पष्ट किया है कि भारतीय आमों के आयात पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। राज्य के विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। पथ निर्माण विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल ने बताया कि इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है। श्री पाल ने कहा कि राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों पर 8,000 स्थानों पर अतिक्रमण की पहचान की गई है जिन्हें जल्द ही हटा लिया जाएगा। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा में कथित फर्जीवाड़ा और जालसाजी मामले में मुंगेर जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों से 15 आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पटना और मुंगेर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में ये गिरफ्तारियां की गईं। मुंगेर के पुलिस अधीक्षक सैयद इमरान मसूद ने बताया कि पटना में दर्ज 2 मामलों में फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए यह कार्रवाई की गई है। रोहतास जिला भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर सासाराम स्थित हजरत बिजली शहीद की दरगाह पर चादरपोशी की गई। कार्यक्रम का नेतृत्व मोर्चा के जिला अध्यक्ष डॉ एस जमशेद अहमद ने किया। किशनगंज मंडल कारा में सजायाफ्ता एक महिला कैदी उषा रानी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। दहेज प्रताड़ना से जुड़े एक मामले में वो फरवरी 2026 से न्यायिक हिरासत में जेल में बंद थी। जेल अधीक्षक धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि महिला बंदी पिछले कुछ समय से मानसिक अवसाद से पीड़ित थी। अररिया जिले में भारत नेपाल सीमा पर दोनों देशों के बीच सुरक्षा व्यवस्था मजबूत बनाने और आपसी सहयोग को लेकर एसएसबी और नेपाल सुरक्षा बलों के बीच सामंजस्य बैठक आयोजित की गई। बॉर्डर एरिया मीटिंग में सुरक्षा तंत्र को और मजबूत बनाने के लिए विशेष प्रयास किए जाने पर सहमति बनी है। पटना जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों से पुलिस ने हथियार और कारतूस के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। इधर पटना सिटी के चौक थाना क्षेत्र से पुलिस ने वाहन और मोबाइल चोरी के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। विश्व की सबसे बड़ी फुटबॉल प्रतियोगिता फीफा विश्व कप 2026 का आज से आगाज हो रहा है। यह टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित किया जाएगा। फीफा विश्व कप का यह अब तक का सबसे बड़ा संस्करण है। इसमें पहली बार 48 टीमें भाग ले रही हैं। इससे पहले के संस्करणों में 32 टीमें शामिल होती थीं। प्रतियोगिता में कुल 104 मुकाबले खेले जाएंगे। फाइनल मुकाबला 19 जुलाई को होगा। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हवाले से लिखा है, मध्यम वर्ग के लिए हर क्षेत्र में नए मौके। दैनिक जागरण ने राज्य में हुए टेंडर घोटाला मामले पर शीर्षक दिया है, ऋषु श्री के करीबी 3 अफसर गिरफ्तार, संजीव

0: चेतावनी, सुधार न करने वाले बैंकों के सरकारी डिपॉजिट पर लगेगी रोक। राष्ट्रीय सागर के शब्द हैं, राज्य के 94,29,000 पेंशनधारियों के खाते में पहुंचे 1,096 करोड़ रुपए। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी होंगे शामिल। विधान परिषद की 9 सीटों पर द्विवार्षिक चुनाव और 1 सीट पर उपचुनाव के लिए निर्वाचित उम्मीदवारों के नाम की आज हो सकती है घोषणा। प्रदेश के 5 कलाकारों को वर्ष 2024 और 2025 के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा। और प्रदेश के अधिकतर भागों में आज सुबह से बारिश का सिलसिला जारी। मौसम विभाग ने अगले 3 घंटे के दौरान पटना, अरवल, भोजपुर, जहानाबाद, नालंदा, सारण और वैशाली जिले में आंधी, बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: सड़क दुर्घटनाएं सिर्फ खबर नहीं, कई परिवारों का दर्द बन जाती हैं। इसीलिए बिहार परिवहन विभाग लेकर आया है एक नई पहल।
2: अब आम जन भी सड़क सुरक्षा में अपनी भागीदारी निभा सकते हैं। अगर कहीं दिखे 3 सवारी, रैश ड्राइविंग, बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट या यातायात नियमों का कोई भी उल्लंघन,
1: तो फोटो या वीडियो भेजिए व्हाट्सएप नंबर 9153971897 पर या ईमेल करें commandcontrolcenterbihar@gmail.com पर।
2: आपकी शिकायत पर होगी त्वरित कार्रवाई और आपकी पहचान रहेगी पूरी तरह गोपनीय।
1: आइए मिलकर बनाएं सुरक्षित बिहार। स्वयं नियमों का पालन करें और दूसरों को भी प्रेरित करें। परिवहन विभाग, बिहार सड़क सुरक्षा परिषद तथा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।

मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलोहर्ट्स पर और FM 100.1 मेगाहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। अब पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम नगमे नए पुराने।

श्रोताओं कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए बरसात, अ सबलाइम लव स्टोरी का ये गीत। इस गीत को गाए हैं कुमार शानू और अलका याग्निक ने। नदीम और श्रवण का संगीत है, इसके बोल लिखे हैं समीर ने।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम नगमे नए पुराने। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए आइए सुनते हैं कुछ जरूरी संदेश।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
1: ओ, 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।
3: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
4: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
5: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: श्रोताओं, कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं फिल्म लव स्टोरी का गीत। इस गीत को गाया है अमित कुमार और लता मंगेशकर ने। राहुल देव बर्मन का संगीत है और इसके बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

श्रोताओं, सुनिए फिल्म कभी खुशी कभी गम का ये गीत। समीर ने इसके बोल लिखे हैं, जतिन ललित का है संगीत। इस गीत को गाया है कविता कृष्णमूर्ति, अलका याग्निक, अमित कुमार, उदित नारायण, सोनू निगम और साथियों ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं फिल्म सरस्वती चंद्र का ये लोकप्रिय गीत। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर और साथियों ने, कल्याण जी आनंद जी का संगीत है, इंदिवर ने इसके बोल लिखे हैं।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम नगमे नए पुराने। कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं अलका याग्निक, उदित नारायण और साथियों की आवाज़ में कार्यक्रम का आखिरी गीत फिल्म जानवर से।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम नगमे नए पुराने अब यहीं संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। श्रोताओं, कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे गायक कलाकार श्यामानंद झा की प्रस्तुति। आरंभ में सुनिए महादेवी वर्मा का लिखा गीत।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं सुगम संगीत के कार्यक्रम में गायक कलाकार श्यामानंद झा की प्रस्तुति। कार्यक्रम में आगे हम और भी प्रस्तुति सुनेंगे, लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं एक जरूरी संदेश।
1: आकाशवाणी भागलपुर केंद्र से सुने NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार दिन के 12:30 बजे से।
0: अब आइए सुनते हैं डॉक्टर शांति जैन का लिखा गीत।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत में गायक कलाकार श्यामानंद झा की प्रस्तुति। कार्यक्रम के अंत में सुनिए माखनलाल चतुर्वेदी का लिखा गीत।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत में गायक कलाकार श्यामानंद झा की प्रस्तुति। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से।

श्रोताओं, कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए प्रेम रोग फिल्म का ये लोकप्रिय गीत। लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर की आवाज़ है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, संतोष आनंद ने इसके खूबसूरत बोल लिखे हैं।

0: future feels effortless with the Grand Vitara, because some journeys deserve more than just movement. They deserve comfort, presence and peace of mind. This is your opportunity to bring home the Grand Vitara at just ₹8,999 per month. Yes, ₹8,999 per month. Step into a world of refined performance and hybrid technology, along with 6 airbags as standard. Less fuel stress, more driving pleasure. Visit your nearest Nexa showroom today. TNC apply.
1: Nexa.
2: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से। कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं फिल्म लावारिस का गीत। इस गीत को गाया है आशा भोसले और किशोर कुमार ने। अनजान ने इसके बोल लिखे हैं। कल्याण जी आनंद जी का संगीत है।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
0: श्रोताओं, कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं फिल्म वारिस का गीत। इस गीत को गाया है मनमोहन सिंह और लता मंगेशकर ने। वर्मा मलिक ने इसके बोल लिखे हैं, उत्तम सिंह का संगीत है।

श्रोताओं, कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं अगला गीत। इस गीत को लिया है हमने फिल्म जाबाज से। इस गीत को गाया है किशोर कुमार और सपना मुखर्जी ने। कल्याण जी आनंद जी का संगीत है और इसके बोल लिखे हैं इंदिवर ने।

0: श्रोताओं, इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से अब यही संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम रेडियो नाटक। श्रोताओं, कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे एक पुनर्प्रसारित नाटक। शीर्षक है बदलता गांव, लेखक है धनंजय मिश्र और प्रस्तुत करता है अमित कुमार। नाटक की प्रस्तुति आप सुनेंगे कुछ जरूरी संदेशों के बाद।
1: Say some cars blend in, but what if yours always stand out? But what if yours always stood out? The Maruti Suzuki Fronks. Experience the thrill of the 1.0-liter turbo engine built for those who crave performance. Join over 4 lakh proud Fronks owners starting at just rupees 6.85 lakh. So, why follow when you can lead? Visit your nearest Nexa showroom today. Nexa.
2: जानते हैं इन वीरों की वीर गाथाएं लेकर कौन आ रहे हैं? हम यानी
3: क्रेश,
4: क्रेश
2: और बाल्टी बॉय।
5: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रेश, ट्रेश और बाल्टी बॉय।
6: प्रस्तुत है नाटक बदलता गांव। लेखक हैं धनंजय मिश्र, प्रस्तुतकर्ता एवं निर्देशक अमित कुमार।

0: ये मेरा ही गांव है। कितना बदल गया है सब कुछ।
1: सुबह सुबह नए नए बाबा, लगता है कोई मकान ढूंढ रहे हैं। अच्छा चलकर पूछता हूं। बाबा आप किसी के मकान को ढूंढ रहे हैं क्या?
0: हाँ बेटा, लेकिन पहले ये तो बताओ कि ये खुदरामपुर गांव ही है ना?
1: हाँ बाबा, ये खुदरामपुर ही है।
0: कहीं ये दूसरा खुदरामपुर तो नहीं?
1: आप किस खुदरामपुर की खोज कर रहे हैं बाबा? 50 कोसों तक दूसरा कोई खुदरामपुर है ही नहीं।
0: अच्छा अच्छा, अच्छा।
1: लेकिन बाबा,
0: हाँ
1: आप ढूंढते हैं किसे?
0: ढूंढने को तो मैं इस गांव में सभी को ढूंढ रहा हूँ।
1: सभी को?
0: हाँ, किस किस का नाम बताऊं बेटा। लेकिन छोड़ो, तुम क्या बता सकते हो ये बिशु पांडे का कौन सा मकान है?
1: बिशु पांडे?
0: हाँ हाँ, बिशु पांडे।
1: क्या काम करते हैं? मेरा मतलब है किस कार्यालय में?
0: तो क्या तुम बिशु पांडे को नहीं जानते?
1: अब इतने बड़े गांव में कौन किसको जान सकता है बाबा? किसी को जानने से फायदा भी क्या है? किनको फुर्सत है गांव भर के आदमी को जानते फिरे?
0: अरे वो तो भजन कीर्तन में डूबा रहने वाला व्यक्ति है, किसी कार्यालय का अफसर या बड़ा बाबू नहीं कि लोग उसे जाने। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, मैं स्वयं खोज लूंगा उसे, स्वयं खोज लूंगा।
1: ठीक है बाबा, खोज लीजिए।
0: क्या जमाना आ गया, किसी को किसी से मतलब नहीं। ये आवाज कहाँ से आ रही है?

0: हाँ, अब तो समझ में आ रहा है। ये विशु पांडे की आवाज है। हाँ, ये विशु पांडे की ही आवाज है।
1: वही जुड़े जब प्रेम से,
0: ठीक उसी तरह का स्वर, बहुत दिनों के बाद फिर से पहचान में आ रहा है। विशु पांडे,
2: इस समय इधर कौन आ रहा है? अरे अरे, ये तो अपना कैलाश चौधरी लगता है।
0: आप विशु पांडे तो नहीं?
2: और आप कैलाश चौधरी तो नहीं?
3: अरे अरे, तुमने ठीक ही पहचाना मित्र।
1: तुमने भी ठीक पहचाना मित्र।
2: चौधरी,
3: हाँ,
2: तुम इतने सालों तक कहाँ वनवास में रहे?
3: हाँ,
2: गांव छोड़कर कैसे इतने सालों तक तुम्हें बाहर रह गया? जवानी में गए थे और बुढ़ापे में गांव लौटे हो।
3: अरे विशु, तुम भी तो बूढ़े हो गए हो, गांव में रहकर तुम ही कौन सा जवान बने रहे।
2: हाँ भाई, ठीक कहते हो।
3: सारा भारत घूम आया, लेकिन अपने गांव जैसी हल माटी की सुगंध नहीं है।
2: अरे तो ये कहो न चौधरी, कि अपने गांव की मिट्टी खींच लाई है तुम्हें।
3: तुमने बिल्कुल ठीक कहा पांडे। वैसे भी हर आदमी की यही इच्छा होती है कि उसकी ठठरी उसके गांव के ही हवा पानी मिट्टी में समाए तो अच्छा।
2: ये तो तुमने ठीक ही कहा चौधरी, लेकिन अपना गांव थोड़े ही न रह गया है। नरक तो नहीं कहूँगा, लेकिन उससे कम भी नहीं रह गया है। अब ये गांव बदल रहा है चौधरी, बदल रहा है।
0: तुम्हारे कहने का कुछ मतलब नहीं समझा?
2: समझा भी नहीं सकूँगा। अच्छा, पहले ये बताओ कि गांव में अब स्थायी तौर पर रहने आए हो या कुछ दिन रह

0: फिर वनवास लौट जाओगे। आधे सन्यासी तो हो ही गए हो, क्या पता कब पूरे सन्यासी बन जाओ।
1: नहीं विशु नहीं, मैं अब कहीं नहीं जाने वाला।
0: अच्छा
1: अच्छा, ये बताओ अपने बच्चू भैया का क्या हालचाल है।
0: बच्चू भैया?
1: हाँ बच्चू भैया।
0: चलो अपनी आंखों से देख लेना उनका हालचाल।
1: ऐसे क्यों बोल रहे हो तुम?
0: अरे पहले चलो तो सही। अच्छा अच्छा चौधरी, ये बताओ कि तुम्हें वो वाला गाना याद है?
1: कौन कौन वाला?
0: वही वाला
1: इमली।
0: हाँ।

0: बिल्कुल
1: हाँ
2: और कितनी देर लगेगी?
1: वो हरे रंग का मकान उन्हीं का है।
2: ओ अच्छा अच्छा वो मकान।
1: हाँ
2: लेकिन इतनी भीड़ क्यों लगी है इनके पास?
1: क्या बताऊं चौधरी,
2: क्या हुआ?
1: ये तो हर दूसरे दिन की कहानी है।
2: दूसरे दिन की कहानी?
1: वो कहते हैं ना,
2: हाँ।
1: जायदाद जितनी बड़ी समस्या भी।
2: हाँ भाई, कमोबेश यही हाल तो सब जगह है। अच्छा अच्छा ये यही बच्चू भैया हैं क्या?
1: अरे हाँ भाई, यही बच्चू भैया।
2: अच्छा नमस्कार बच्चू भैया।
1: नमस्कार नमस्कार कैलाश। अरे तुम।
2: मैं
1: आप पहचाना भाई, आप पहचाना, अब तो नहीं ना जाओगे?
2: अरे अब तो गांव भी मुझे बाहर निकालेगा तो भी नहीं निकलूंगा। हाँ समझे बच्चू भैया। बच्चू भैया,
1: हाँ
2: बिशु बता रहा था कि आपका अपने गोतिया से विवाद चल रहा है।
1: हाँ चौधरी, तुम्हारी भाभी तो मुझे शादी के कुछ दिन बाद ही छोड़कर चली गई। उसके बाद मैंने शादी नहीं की, नहीं किसी बच्चे को गोद लिया। सोचा था मेरे भाई के बच्चे ही मेरे वारिस हो जाएंगे, लेकिन इन्हें तो जायदाद की ऐसी भूख जगी है कि मेरे मरने तक का भी इंतजार नहीं। इसी वजह से रोज कुछ न कुछ बखेड़ा होता रहता है। अब गांव में भी एकता नहीं है, सब एक दूसरे का फायदा उठाना चाहते हैं। अजब स्थिति हो गई है भाई, अजब स्थिति हो गई है।
3: कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं बच्चू भैया, सब ठीक हो जाएगा।
2: तो इसी स्थिति को बदलने के लिए अब हम लोगों को संघर्ष करना है। हम सबों की उम्र ही क्या बची है, बचे हुए समय में अगर हम एक गांव को भी गांव बना सके तो बहुत बड़ी बात होगी।
3: लेकिन ये संभव भी है क्या?
2: बिल्कुल संभव है।
3: गांव में कहीं मेल भी रह गया है, किसी टोले को किसी टोले से कोई मतलब नहीं।
2: सोचो विशु, ये कितनी खतरनाक स्थिति है।
1: ये तो मुझे भी लगता है कि हम लोगों से कहीं ना कहीं कोई बड़ी भूल हो गई। क्या गांव वालों से हमें मदद मिलेगी?
2: अवश्य मिलेगी, अवश्य। अगर किसी से नहीं भी मिली तो युवाओं का साथ लेंगे।
1: युवा?
2: हाँ।
1: अरे युवाओं से तो इसमें कोई मदद नहीं मिलेगी।
2: अरे यही भूल है हम सबों की, जात पात धर्म की दीवारें तोड़ेंगे तो गांव शहर देश के युवा देश का नक्शा बदल रहे हैं। इस गांव का भाग्य भी बदलेगा तो यहाँ के युवाओं के हाथों ही।

0: हम लोगों की भूमिका इतनी ही होगी कि उन्हें आशीर्वाद देते रहें।
1: चौधरी, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। और हाँ, आज से ही हम सब इस काम पर लग जाते हैं।

0: जो गीत गा रहे हैं। बाबा बाबा आप कौन हैं और अकेले इस धूप में खंजड़ी बजाकर क्या गा रहे हैं?
1: पहले ये तो बताओ बेटी कि तुम कौन हो?
0: मैं? आप बाबू अखिलेश सिंह को तो जानते ही होंगे।
1: हाँ हाँ, अखिलेश, अरे वो तो मेरे बचपन का दोस्त है।
0: हाँ, मैं उन्हीं की बड़ी बेटी हूँ।
1: अच्छा।
0: उषा 10 साल से विदेश में थी, डॉक्टरी की पढ़ाई करने गई थी। पढ़ाई पूरी हो गई तो गांव लौट आई हूँ।
1: अच्छा, तो क्या अब यहीं रहोगी या फिर विदेश लौट जाओगी?
0: नहीं नहीं बाबा, अब ना विदेश जाऊंगी ना शहर, बस इसी गांव में रहकर जो हो सकेगा करूंगी। अरे आप मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं? क्या मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा?
1: नहीं नहीं बेटी, ऐसी बात नहीं है। जिसको अपने देश, अपने गांव, अपनी माटी से प्यार होता है, उसे शहर में या विदेश में हीरे का खजाना भी मिल जाए तो अपनी जन्मडीह नहीं छोड़ता।
0: हाँ बाबा, आपकी बातों ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। बताइए ना आप हैं कौन?
1: मैं तुम्हारे ही गांव का कैलाश चौधरी हूँ। बहुत साल पहले ये गांव छोड़कर चला गया था।
0: अच्छा अच्छा, हाँ, पिताजी ने कई बार आपकी बात की थी। कई बार आपके बारे में उनसे सुना है।
1: हाँ हाँ, सोचा था इतने सालों बाद गांव में सब कुछ बदला हुआ मिलेगा, लेकिन यहाँ तो सिर्फ गांव बदला है, लोग तो अभी भी वहीं ठहरे हुए हैं जहाँ हुआ आज से 40 साल पहले थे। अब लोगों को अपने गांव से मतलब नहीं रह गया, सब अपने अपने सपने में लीन हैं। न इस गांव के पोखरों से उनका मतलब है, न बाग बगीचों से, न खेतों से, न हवा माटी से।
0: बाबा,
1: हाँ,
0: आपकी बातों से लगता है आप मेरे काम में मेरी मदद कर सकते हैं।
1: मदद? किस काम के लिए?
0: आप यहाँ के पुराने ठाकुर गणपति को तो जानते ही होंगे ना?
1: हाँ हाँ, अच्छी तरह से जानता हूँ। हमारा बचपन साथ ही बीता है। उसके दादा ने इस गांव के लिए एक ग्राम पोखर दान दिया था।
0: हाँ हाँ,
1: जिसके कारण यहाँ खेती करना संभव हो पाया।
0: हाँ बाबा, वही ठाकुर गणपति जिस पोखर की आप बात कर रहे हैं वो लगभग 100 साल पुराना तो होगा ही।
1: हाँ, होगा ही।
0: अब उस पोखर की वजह से इस गांव में घमासान छिड़ा हुआ है।
1: अच्छा,
0: पोखर का इस गांव की समृद्धि में क्या योगदान है ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं है बाबा। लेकिन आज इसी पोखर की जमीन को मिट्टी से भरकर एक बड़ा कारखाना लगाने की तैयारी है।
1: कारखाना? मुझे थोड़ा ठीक ठीक बताओ ना।
0: बाबा, मैंने विदेश में रहकर पढ़ाई की है, वहीं मेरे साथ ठाकुर गणपति का बेटा किशोर सिंह भी पढ़ता था।
1: अच्छा,
0: उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। वहां तो वो बड़ी बड़ी बातें करता था कि गांव जाकर पूरे गांव का नक्शा ही बदल देना है। वो अपने शहरी दोस्तों के साथ यहाँ एक कारखाना लगाना चाहता है।

0: अच्छा,
1: जिसके लिए जमीन का एक बड़ा टुकड़ा चाहिए उसे।
0: ओ।
1: अब देखिए ना, चूंकि ये पोखर उसके पूर्वजों ने इस गांव को दिया है,
0: हाँ।
1: तो अब वो इस पर अपना कानूनी हक जता रहा है। अब क्या बताऊं बाबा, पूरा गांव एक तरफ है और किशोर उसके पिताजी एक तरफ।
0: मामला तो गंभीर है।
1: हाँ, इसलिए हमने कुछ वकीलों से भी संपर्क किया है ताकि कोई कानूनी हल निकल सके।
0: देखो उषा बेटी, हमारे समय में तो सब कुछ गांव की पंचायत में ही मिलजुल कर हल हो जाता था। मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन बस एक बात कहनी है।
1: हाँ हाँ, कहिए ना।
0: तुम इस समस्या के समाधान के लिए जो भी करना चाहो करो, लेकिन उससे पहले मुझे एक प्रयास करने दो। मेरा अब भी मानना है कि गांव के बदलते स्वरूप में अब भी गुंजाइश बाकी है, जिन्हें बस समझने की जरूरत है। बस तुम मेरा साथ दो बेटी।
1: हाँ, क्यों नहीं, जहाँ इतने दिन रुकी हूँ तो कुछ दिन और सही।
0: हाँ हाँ, चलो चलो, मैं तुम्हें अपने दोस्तों से मिलवाता हूँ।
1: हाँ हाँ, चलिए बाबा,
0: चलो
1: चलिए,
0: चला जाओ।

0: हेलो, हाँ हाँ, मैं किशोर सिंह ही बोल रहा हूँ, कहो। क्या गांव वाले राजपोखर को गांव की संपत्ति बताने के लिए संगठित हो रहे हैं? क्या कहते हो? हाँ हाँ बोलो। हाँ, मुझे भी लग रहा था कि इसमें उषा का ही हाथ होगा। और कौन? विशु पांडे, बच्चा सिंह, कैलाश चौधरी। हाँ हेलो, कहाँ देखा? राजपोखर के निकट। अरे राजपोखर हमारे पूर्वज का रहा है, जिस पर मेरा पुस्तैनी अधिकार बनता है। हाँ हाँ हाँ, अरे ये तो मैं भी समझ रहा हूँ। ये काम सिर्फ 4-5 आदमी का बनाया हुआ खेल है, जिसका नेतृत्व 40 साल के बाद गांव में आए वृद्ध कैलाश चौधरी कर रहे हैं। मैं तो उनसे मिल भी चुका हूँ, जब वो पहली बार लौटकर गांव आए थे और अपरिचितों की तरह गांव में भटक रहे थे। अगर उस दिन पता होता कि ये गांव आकर इस तरह आग लगाएंगे, तो उसी दिन किसी और गांव का पता बता देता मैं इन्हें। ठीक है, तुम लोग वहीं डटे रहो, आगे जो कुछ भी होगा मैं देख लूंगा।
1: किससे बात कर रहे थे किशोर
0: जी? बेचू से।
1: इतनी रात को?
0: पिताजी, बात ही कुछ ऐसी है, सारे गांव वाले मिलकर हम लोगों के खिलाफ विद्रोह करने वाले हैं।
1: क्या विद्रोह?
0: जी।
1: लगता है घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा, उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी। अच्छा किशोर।
0: जी पिताजी।
1: तुम जाकर आराम करो, मैं देखता हूँ अब आगे क्या करना है।
0: पिताजी आप भी सो जाइए, अब कल सुबह सोचते हैं इस बारे में।
1: ठीक है।

0: बेटा गणपति नींद से जागो, देखो मेरी क्या हालत हो गई है।
1: आपकी ऐसी हालत किसने की है?
0: तुम ही ने तो की है मेरी ये हालत।
1: नहीं नहीं, नहीं।
0: सारे शरीर पर जख्म दे दिए हैं, ऊपर से ये कारखाना खोलकर तुम मुझे मारने ही वाले हो।
1: ये आपके शरीर से इतना खून क्यों बह रहा है? और आप कौन हैं? कौन हैं आप?
0: मैं इस गांव का ग्राम देवता हूँ।
1: ग्राम देवता?
0: शरीर से बहने वाला ये रक्त तुम मानवों द्वारा दिए गए जख्मों का है।
1: ग्राम देवता? मंदिर में तो आपकी ही मूर्ति है। ये ग्राम देवता, प्रणाम प्रणाम ग्राम देवता। आपकी ये हालत हमारे कारण से है, हमें माफ कर दीजिए ग्राम देवता। आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा ग्राम देवता।

0: वैसा ही होगा।
1: एक बात समझ लो, अगर मैं ही नहीं रहूंगा तब तुम्हारा अस्तित्व ही कहाँ रहेगा।
0: मैं समझ गया ग्रहण देवता, सब कुछ समझ गया, आपकी बातों का मतलब भी समझ गया। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा जिससे ये गांव बदल जाए। बस बस बस आप हमें छोड़कर मत जाइए, मत जाइए ग्राम देवता, हमें माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए।
1: ठीक है।

0: सिर बहुत भारी लग रहा है। रात में कैसा सपना देखा, ग्राम देवता का वो जख्मी शरीर। नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। अगर ऐसा हुआ तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। मैं आज ही उन लोगों से मिलकर सब ठीक कर दूंगा। लेकिन किशोर, किशोर को कैसे समझाऊं? किशोर से तो बात करनी ही होगी। किशोर, किशोर।
1: जी पिताजी।
0: जरा गाड़ी तो निकालो।
1: इतनी सुबह सुबह क्या हो गया पिताजी?
0: जो कहता हूँ बेटा उतना करो, बाकी बातें रास्ते में होंगी।
1: जी

0: बच्चा भाई, बच्चा भाई कहाँ हो? अरे भाई बाहर तो निकलो।
1: अरे ठाकुर, तुम इतनी सुबह सुबह, और ये साथ में तुम्हारा इंजीनियर बेटा भी है, वाह वाह।
0: वो बिशु पांडे कहाँ है? और शेख साहब, अरे भाई सभी गांव वालों को तो बुलाओ, कुछ कहना है उन लोगों से।
1: क्या हो गया ठाकुर, कौन सी बातें करनी है?
0: अरे बच्चा भाई, पहले सबको बुलाओ तो सही।
1: अभी किसी को भेजता हूँ। लगता है चौधरी, कल रात वाले दोनों प्लान काम कर गए। शेख साहब का ग्राम देवता बनकर गणपति ठाकुर से बात करना और बेचू को दिखाकर पोखर के चारों तरफ इकट्ठा होकर नारेबाजी करना, दोनों तीर सही निशाने पर लगे हैं।
2: अरे अरे, सही कह रहे हो विशु, बस अब अपना मुंह बंद रखना।
1: हाँ चौधरी, हाँ।
3: लेकिन लेकिन मुझे तो किशोर की चिंता है, कहीं वो मामला बिगाड़ ना दे।
4: लो, सब लोग आ गए।
3: अरे अरे, ये ठाकुर खड़ा क्यों हो गया?
0: सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मुझसे एक बड़ी गलती होने जा रही थी, लेकिन लेकिन मंदिर वाले ग्राम देवता की कृपा है मुझ पर कि कल रात उन्होंने साक्षात दर्शन दिए, उन्होंने मुझे सही राह दिखाई।
5: पिताजी, पिताजी, पता नहीं क्यों मुझे इसमें सच्चाई नहीं लग रही।
0: किशोर,
5: कहीं वो आपका भ्रम तो नहीं?
0: किशोर, किशोर, मैं कह रहा हूं, अगर एक शब्द भी तुमने इसके बाद बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
5: पिताजी, ये क्या कह रहे हैं आप?
0: अरे मैंने तुम्हें विदेश भेजा था पढ़ने के लिए, ताकि गांव के बदलते स्वरूप को एक सही आकार दिया जा सके। अरे लेकिन तुमने तो गांव को ही बदलने की बात ठान ली। और मुझे देखो, मुझे देखो, मैं भी तुम्हारे बहकावे में आ गया। अरे तुमसे अच्छी तो उषा बेटी है, जो कम से कम गांव वालों के साथ तो खड़ी रही। बेटा अब भी समय है, तुम अपनी जिद छोड़ दो, छोड़ दो अपनी जिद, नहीं तो मैं कह रहा हूं अपने पूर्वजों की सारी संपत्ति

0: गांव के नाम दान कर दूंगा।
1: वाह ठाकुर वाह, पोखर को बचाकर तुमने फिर से इस गांव को बचा लिया, इस गांव को बचा लिया।
2: जहां तक बात किशोर की है तो उसे एक मौका दिया जाए ताकि वो फिर से नई शुरुआत कर सके।
3: हाँ हाँ क्यों नहीं, एक मौका तो किशोर को मिलना ही चाहिए। हाँ, मिलना ही चाहिए। ठाकुर साहब एक मौका अवश्य दें आप।
4: हाँ चाचा जी, किशोर को माफ कर दीजिए।
5: पिताजी मुझे माफ कर दीजिए। कैलाश चाचा, विशु चाचा, बच्चू चाचा, आप सब भी मुझे माफ कर दीजिए। उषा बहन मुझे माफ करना, मैं बस इस गांव का विकास करना चाहता था, लेकिन मैं भूल गया था कि विकास का मतलब सिर्फ बदलाव करना ही नहीं है, बल्कि वो बदलाव जिनके लिए किया जा रहा है उनको ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। ताल, तलैया, पोखर, ये सभी गांव के अभिन्न अंग हैं। इनका अस्तित्व मिटाकर कारखाना, नहीं नहीं, ऐसा तो अब मैं सोच भी नहीं सकता। अब मैं अच्छी तरह समझ गया हूँ कि बदलता गांव कैसा होना चाहिए। हाँ, कैसा होना चाहिए बदलता गांव।
3: हाँ हाँ हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ समझ गए,
2: सब समझ गए। तो विशु भैया
3: हाँ
2: हो जाए
3: हो जाए गांव।

0: अभी आप
1: आप सुन रहे थे कार्यक्रम रेडियो नाटक, शीर्षक था बदलता गांव। लेखक थे धनंजय मिश्र और प्रस्तुतकर्ता थे अमित कुमार। यह आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। कृपया अगले कार्यक्रम के लिए प्रतीक्षा करें।

मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलोहर्ट्ज़ और एफएम के 110.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो घड़ी में प्रातः 11:01 हुए हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम नई फिल्मों से। इस कार्यक्रम के आरंभ में हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म आज़ाद का गीत, जिसे गाया है अरिजीत सिंह और हंसिका पारिक ने।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नई फिल्मों से। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म भूल चूक माफ से, जिसे गाया है नीरज श्रीधर, सुनिधि चौहान और साथियों ने।

लीजिए आप सुनिए फिल्म चाइना टाउन का गीत, जिसे गाया है सुनिधि चौहान और हिमेश रेशमिया ने।

लीजिए अब सुनिए साधना सरगम की आवाज में फिल्म 1947 अर्थ का ये गीत।

लीजिए आप सुनिए फिल्म थ्री इडियट का गीत, जिसे गाया है शान, सोनू निगम और साथियों ने।

आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम नई फिल्मों से। प्रसारण आपकी सेवा में आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से किया गया। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 11:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत का एक और कार्यक्रम गुलदस्ता।

दोस्तों, आज के गुलदस्ता में हम बातें कर रहे हैं फिल्म जगत के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार के बारे में। यानी आप तो समझ गए होंगे कि फिल्म जगत में यूँ तो अनेकों पुरस्कार दिए जाते हैं, लेकिन उसका पैमाना जो होता है उसमें सर्वश्रेष्ठ स्थान पर माना जाता है फिल्म फेयर अवार्ड को। फिल्म फेयर अवार्ड ये माना जाता है कि जिस विधा में ये पुरस्कार जिस वर्ष के लिए दिया गया उस गीत ने अपनी सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित किए। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको 70 के दशक के फिल्म फेयर अवार्ड के बारे में आपको बताएंगे कि ये किस लिए और किन्हें दिया गया। पहला गीत हमने दिया है फिल्म बॉबी से, और इस फिल्म को फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया 1973 में अभिनय के लिए। कलाकार थे ऋषि कपूर और डिंपल कपाड़िया। तो आइए इन दोनों युगल कलाकारों पर फिल्माया गया ये गीत अब हम आपको सुनवाते हैं।

दोस्तों, 1973 में ही एक फिल्म आई थी अभिमान। इस फिल्म के सारे गाने सुपर हिट हुए और इस फिल्म को फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया संगीत के क्षेत्र में, यानी इस फिल्म के संगीतकार सचिन देव बर्मन को सम्मानित किया गया फिल्म फेयर अवार्ड से उनके इस फिल्म में दिए गए संगीत को। तो आइए सुनते हैं ऐसे फिल्म का ये लोकप्रिय गीत, जैसे अपनी धुन से संवारा था सचिन देव बर्मन ने।

0: You choose a diesel SUV for the power, the pull, the road presence. Now experience all of it without the noise, the smoke, the vibration. Meet the electric SUV, the e-Vitara. Get instant acceleration at every tap. Smooth, silent drives on every road with ADAS level 2, 7 airbags, a range of 534 km and running costs of under rupee 1 per km. This is everything you love about an electric SUV. Upgrade to the electric SUV, the e-Vitara today. Visit your nearest Nexa showroom.
1: Nexa.
2: आकाशवाणी भागलपुर केंद्र से सुने NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सोमवार से शुक्रवार दिन के 12:30 बजे से।
3: जानते हो बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
4: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। जानते हो बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
4: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
6: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
5: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं।

0: आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग,
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
1: 8700001-4242।
2: दोस्तों, सन 1973 में एक फिल्म आई थी दाग, जिसके गीतों ने न केवल धूम मचाई बल्कि इस फिल्म की पटकथा और निर्देशन ने भी क्या खूब

निर्देशन किया जिनमें दाग ने खूब प्रसिद्धि हासिल की। आइए ऐसे फिल्म का एक लोकप्रिय गीत हम आपको सुनवाते हैं जिसे 1973 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशन के लिए फिल्म फेयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया।

दोस्तों संगीत की बात हो और फिल्मकार खय्याम का नाम ना आए, ये तो हो नहीं सकता। 1978 में एक फिल्म आई थी कभी कभी। इस फिल्म का हर पहलू खूब चला, दर्शकों ने इसे खूब पसंद किया। इस फिल्म का अगर

निर्देशन बहुत जोरदार था, तो फिल्म के गीत और संगीत ने इस फिल्म की प्रसिद्धि में चार चांद लगाए। अभिनय के क्षेत्र में अगर शशि कपूर, राखी और अमिताभ बच्चन ने जोरदार अभिनय किया, तो संगीतकार खय्याम ने इसे अपने संगीतों से खूब प्रसिद्धि दिलाई। आइए सुनते हैं 1978 की इस फिल्म जिसका नाम था कभी कभी। इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ संगीत के लिए फिल्म फेयर का अवार्ड दिया गया। आइए सुनते हैं ऐसे फिल्म का ये लोकप्रिय गीत।

तो श्रोताओं लीजिए, अब आपको हम लिए चलते हैं 80 के दशक में। सुनो, 1981 में एक फिल्म आई उमराव जान। रेखा के दमदार अभिनय के लिए इस फिल्म को लंबे समय तक याद रखा जाएगा। हालांकि अभिनय के साथ साथ इस फिल्म के गीत और संगीत उतने ही अच्छे थे जितना अभिनय रेखा का अच्छा था। इस फिल्म को इसके संगीत के लिए 1981 में फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। और आप जानना चाहते होंगे कि इस फिल्म के संगीतकार कौन थे। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बताए देते हैं कि इस फिल्म का संगीत दिया था खय्याम ने। तो आइए सुनते हैं आशा भोसले की आवाज़ में इस फिल्म का ये लोकप्रिय गीत।

आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता, ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो के घड़ी में दोपहर के ठीक 12 बजे हैं। लीजिए सुनिए शहरी महिलाओं के लिए हमारा कार्यक्रम नारी लोक।

नमस्कार बहनों, नारी लोग के आज के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी सहेली मुनमुन। बहनों, महिला शिक्षा कितना आवश्यक है ये तो आप सभी जानती हैं। आज हमारी चर्चा का विषय भी यही है कि महिला शिक्षा उनके विकास में कैसे सहायक है। महिला शिक्षा किसी भी समाज और राष्ट्र की प्रगति की आधारशिला है। ये केवल साक्षरता नहीं है, बल्कि महिलाओं को उनके अधिकारों को, निर्णय लेने की क्षमता और आर्थिक स्वतंत्रता के प्रति सशक्त बनाती है। एक शिक्षित महिला अपने पूरे परिवार और आने वाली पीढ़ियों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाती है। शिक्षा और महिलाओं का विकास एक दूसरे के पूरक हैं। शिक्षित महिलाएं न केवल अपने परिवार और समाज का उत्थान करती है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था और विकास दर को भी गति देती है। साक्षरता और शिक्षा से महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ता है और वे आत्मनिर्भर बनती हैं। शिक्षा महिलाओं को रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करती है, जिससे वे आर्थिक रूप से मजबूत होती हैं और उनका जीवन स्तर सुधरता है। साक्षरता का सीधा संबंध बेहतर स्वास्थ्य से भी है। शिक्षित माताएं अपने और अपने बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य का बेहतर प्रबंधन कर सकती हैं, जिससे शिशु मृत्यु दर घटती है। शिक्षा महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करती है, जिससे बाल विवाह और रूढ़िवादी कुरीतियों में कमी आती है और समाज में लैंगिक समानता को बढ़ावा मिलता है। महिला शिक्षा को राष्ट्रीय विकास की रीढ़ माना गया है। स्वतंत्रता से पहले भारतीय महिलाओं की साक्षरता दर बेहद कम थी। दशकों के सुधारों और सामाजिक सक्रियता के बाद इसमें लगातार वृद्धि हुई है। शिक्षा से महिलाओं में आत्मविश्वास, अपने अधिकारों के बारे में जागरूकता और अन्याय से लड़ने की नैतिक शक्ति पैदा होती है। शिक्षित महिला अपने प्रति हो रहे सामाजिक आर्थिक भेदभाव को पहचान कर उसका प्रतिकार करने योग्य बन सकती हैं। शिक्षा और जागरूकता के बढ़ने पर ही महिलाएं कानून द्वारा दी गई सुविधाओं का भी लाभ उठा सकती हैं। मानव समाज में नारी शिक्षा का विशिष्ट महत्व है, क्योंकि कोई भी काम, चाहे सामाजिक हो या आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, बिना स्त्री के पूर्ण नहीं होता है। शिक्षित होकर वे आत्मविश्वास से परिपूर्ण होती हैं। शिक्षा की शक्ति को एक वाक्य में व्यक्त नहीं किया जा सकता। ये जीवन बदल सकती है, रूपांतरित कर सकती है और एक ऐसा संसार बना सकती है जहाँ विकास और सद्भाव व्याप्त है। महिलाओं की बेहतर शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक जागरूकता, आर्थिक प्रोत्साहन, सुरक्षित शैक्षिक माहौल और तकनीकी शिक्षा का विस्तार आवश्यक है। इन उपायों से न केवल महिलाओं का सशक्तिकरण होगा, वरन वे आत्मनिर्भर भी बन सकेंगी। आज के युग में शिक्षा ही वो अचूक माध्यम है जो महिलाओं को अज्ञानता के अंधकार से निकालकर उनके विकास के नए द्वार

0: खिलाफ हो रहे किसी भी शोषण घरेलू हिंसा का विरोध कर सकती हैं। बहनों, हम और हमारा देश दुनिया की सुपर पावर बनने के लिए तेजी से प्रगति कर रहे हैं, लेकिन लैंगिक असमानता की चुनौती आज भी हमारे समक्ष एक कठोर वास्तविकता के रूप में खड़ी है। यहाँ तक कि देश में कई शिक्षित और कामकाजी शहरी महिलाएं भी लैंगिक असमानता का अनुभव करती हैं। महिला शिक्षा के लाभ दूरगामी हैं। भारत को लड़कियों की शिक्षा में सुधार लाने के लिए गरीबी, बुनियादी ढांचे और सामाजिक मानसिक जैसी चुनौतियों का समाधान करना होगा। राष्ट्र के समावेशी विकास के लिए प्रत्येक लड़की को शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। नारी शिक्षा आज के युग में अत्यंत आवश्यक विषय है। किसी भी समाज के विकास में नारी की भूमिका अहम होती है। शिक्षा न केवल महिलाओं को स्थापित करती है, बल्कि पूरे परिवार और समाज को भी स्थापित करती है। जब नारी शिक्षित होती है तो वो ना केवल स्वयं के जीवन को सुधारती है, बल्कि अपने बच्चों को भी सही दिशा देती है। बहनों, आपका विकास तभी संभव है जब आप शिक्षा रूपी धन को अपनाकर आगे बढ़ेंगी। शिक्षा आपके स्वरूप को तरासने का कार्य करती है। बहनों, चर्चा के बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए लेते हैं छोटा सा अंतराल।
1: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहाँ वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयाँ।
2: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: सुनो ना।
4: हाँ?
3: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
4: तो रोका किसने है? हाँ?
3: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
4: मुझसे।
3: तुमसे? तो अच्छा, बताओ फिर।
4: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
3: पर उससे मेरा क्या फायदा?
4: देखो, फायदा है जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
3: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
4: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
3: ओ, 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।
5: गांव के विकास से ही होता है देश का विकास, और मुखिया ही अपनी दूरदर्शिता और अथक प्रयासों से गांव का विकास कर रहे हैं। इसी दिशा में देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक ने बिहार में एक अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया की शुरुआत की, जिसके तहत बिहार के गांव में उत्कृष्ट विकास कार्य करने वाले मुखियाओं का सम्मान किया जा रहा है, और बिहार के चारों जोन से श्रेष्ठ 80 मुखियाओं को चुना जा चुका है हिंदुस्तान के सहयोग से। यशस्वी मुखिया अभियान के अंतिम चरण में 15 जून को पटना में बिहार के 20 ऐसे यशस्वी मुखियाओं को सम्मानित किया जाएगा जो राज्य स्तर पर बने हैं अपने गांव के विकास के सारथी। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें हिंदुस्तान।

बहनों, अंतराल के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए सुनते हैं पूर्व प्रसारित काव्य पाठ। कवित्री हैं शीनू कल्याणी।

0: मेरी दूसरी कविता का शीर्षक है गांव। अब पीपल की छांव कहाँ है, अब पीपल की छांव कहाँ है, पहले जैसा गांव कहाँ है। अब पीपल की छांव कहाँ है, पहले जैसा गांव कहाँ है। डगर वही है, गली वही है, डगर वही है, गली वही है, पक्की है पर नली वही है। मौसम है बरसात नहीं है, कहने में वो बात नहीं है। मौसम है बरसात नहीं है, कहने में वो बात नहीं है। अपनेपन की छांव कहाँ है, अपनेपन की छांव कहाँ है, पहले जैसा गांव कहाँ है। अपनेपन की छांव कहाँ है, पहले जैसा गांव कहाँ है। अब पीपल की छांव कहाँ है, पहले जैसा गांव कहाँ है। था समाज का ताना वाना, था समाज का ताना वाना, एक का छप्पर दस का कंधा। मानवता संग रिश्ते नाते, शोक खुशी मिल बांट मनाते। मानवता संग रिश्ते नाते, शोक खुशी मिल बांट मनाते। अब जमती चौपाल कहाँ है, अब जमती चौपाल कहाँ है, पहले जैसा गांव कहाँ है। अब पीपल की छांव कहाँ है, पहले जैसा गांव कहाँ है। बेटी दस की थी समाज में, बेटी दस की थी समाज में, रुतवा एक का था समाज में। बेटी दस की थी समाज में, रुतवा एक का था समाज में। एक आंगन में दस दरवाजे, इक्की शादी दस के बाजे। अब पंचों की शान कहाँ है, अब पंचों की शान कहाँ है, पहले जैसा गांव कहाँ है। अब पंचों की शान कहाँ है, पहले जैसा गांव कहाँ है। अब पीपल की छांव कहाँ है, पहले जैसा गांव कहाँ है। फागुन की वो रंग ठिठोली, फागुन की वो रंग ठिठोली, ढोल मंजीरे भांग की गोली। हल्ला गुल्ला आर पार, हल्ला गुल्ला आर पार, पल में झगड़ा पल में प्यार। जीवन है उन्माद कहाँ है, जीवन है उन्माद कहाँ है, पहले जैसा गांव कहाँ है। अब पीपल की छांव कहाँ है, पहले जैसा गांव कहाँ है। मेरी तीसरी कविता का शीर्षक है हिंदुस्तान। पूछ रहा कोई दूर क्षितिज से, पूछ रहा कोई दूर क्षितिज से, विश्व गुरु का मान कहाँ है। पूछ रहा कोई दूर क्षितिज से, विश्व गुरु का मान कहाँ है। सभ्यता संस्कृति को गाने वाला अपना हिंदुस्तान कहाँ है। पूछ रहा कोई दूर क्षितिज से, विश्व गुरु का मान कहाँ है। सभ्यता संस्कृति को गाने वाला अपना हिंदुस्तान कहाँ है। आजादी ने दशकों देखे, आजादी ने दशकों देखे, निज गौरव अभिमान कहाँ है। आजादी ने दशकों देखे, निज गौरव अभिमान कहाँ है। भूखे नंगे और फकीरों से विमुक्त पहचान कहाँ है। भूखे नंगे और फकीरों से विमुक्त पहचान कहाँ है। धवल तिरोहित हिमतुंग शिखर पर, धवल तिरोहित हिमतुंग शिखर पर, गूंजे ऐसा जयगान कहाँ है। शीश किए अर्पण जिस खातिर, सपनों का हिंदुस्तान कहाँ है। धवल तिरोहित हिमतुंग शिखर पर, गूंजे ऐसा जयगान कहाँ है। शीश किए अर्पण जिस खातिर, सपनों का हिंदुस्तान कहाँ है। दिशा विदिशा जय घोषनाद हो, दिशा विदिशा जय घोषनाद हो, माँ भारती की तान कहाँ है। दिशा विदिशा जय घोषनाद हो, माँ भारती की तान कहाँ है। सस्य श्यामला के अधरों पर, सुरभित होती मुस्कान कहाँ है। सस्य श्यामला के अधरों पर, सुरभित होती मुस्कान कहाँ है। बिगुल क्रांति की कहाँ, बिगुल क्रांति की कहाँ, क्रांति का बोलो फरमान कहाँ है। भगत राज व उधम सरीखा, भगत राज व उधम सरीखा, बांका नौजवान कहाँ है। वही दास्तां, वही दास्तां, वही बेरियां, आजादी का मान कहाँ है। वही दास्तां, वही बेरियां, आजादी का मान कहाँ है। पूछ रहा चित्रों में कोई, भूखों का भगवान कहाँ है। पूछ रहा चित्रों में कोई, भूखों का भगवान कहाँ है। लूट मची थी जो जारी है, लूट मची थी जो जारी है, बापू का सिद्धांत कहाँ है। लूट मची थी जो जारी है, बापू का सिद्धांत कहाँ है। कैद कहाँ सोने की चिड़िया, कैद कहाँ सोने की चिड़िया। सोने का हिंदुस्तान कहाँ है? कैद कहाँ सोने की चिड़िया, सोने का हिंदुस्तान कहाँ?
1: बहनों, अभी आप सुन रही थीं पूर्व प्रसारित काव्य पाठ। कवित्री थीं श्रीनु कल्याणी। काव्य पाठ के बाद प्रस्तुत है पूर्व प्रसारित कहानी। कहानीकार हैं
0: मेरे मन
1: मृदुला
0: को
1: सिन्हा।
0: भार आप मैं अकेली लॉन में बैठी प्राकृतिक दृश्य का आनंद ले रही थी। बादलों का सिमटना, बिखरना और फिर तरह तरह के आकार बनना मेरे मन को भा रहा था। कितनी अजीब बात है, इस छोटे से मन में न जाने कहां से जादुई पंख लग जाते हैं जो पल भर में हजारों कोस की दूरी तय कर लेते हैं। इसी दौरान अचानक ही मेरी नजर एक छोटी बच्ची पर टिक सी गई। वह अपनी बैसाखियों को अपनी गोद में रखकर बड़ी ललचाई नजरों से सामने थिरकती हुई अपनी सहेलियों को देख रही थी। शायद वह यह सोच रही थी, काश मेरे भी पांव होते तो मैं भी उनके साथ नाचती। मैंने देखा

देखते ही देखते गोद में रखे बैसाखी को उसने झटके से उठाकर एक ओर रख दिया और एक पैर से ही उछलती हुई उन बच्चों में शामिल हो गई। उसका चेहरा खिल उठा था। कितना आत्मविश्वास झलक रहा था उसके चेहरे पर। उसका खिला चेहरा देखकर मेरा दिल भर आया था। कॉलेज की छुट्टियां समाप्त होने की वजह से मैं भी हॉस्टल जाने की तैयारी में जुट गई। न जाने क्यों मेरी आंखों के सामने उसी बच्ची का चेहरा बार बार उभर कर आ रहा जाता। उसके नयन नक्श तो साधारण थे पर आंखों में एक अजीब सी भावपूर्ण चमक थी। उससे मेरा लगाव बढ़ता जा रहा था। मैं जब भी छुट्टियों में घर आती उसे बुलाकर उससे बातें करती। वह भी कहती, दीदी आपसे बातें करना मुझे अच्छा लगता है। और हम दोनों ढेर सारी बातें करते। वह छोटी बच्ची जिसका नाम श्रावणी था, जो धीरे धीरे बड़ी हो रही थी और समझदार भी, वह न तो कभी थकती न ही कभी मायूस होती। एक पैर से उछल उछल कर अपनी सहेलियों के साथ नाचना शायद उसकी पहली कोशिश थी और यही कोशिश शायद उसके जीवन का प्रेरणा स्रोत बन गई। एक दिन की बात है, हम दोनों बैठे बातें कर रहे थे। मैंने उससे पूछ डाला, श्रावणी तुम्हें दिक्कत नहीं होती? शायद उसके दुख को मैंने कुरेदा था। उसने बोझिल सी मुस्कान अपने चेहरे पर लाने की कोशिश की थी जो दर्द से भरी थी। एक लंबी सांस लेते हुए उसने कहा, दीदी समय ने मुझे दिव्यांग बनाया, दोषी ठहराऊं भी तो किसे? भगवान को तो दोषी ठहरा नहीं सकती क्योंकि वे तो इतने बड़े संसार के पालन करता है, और न ही अपने आप को, क्योंकि जब ये दुर्घटना हुई थी तब मैं नादान बच्ची थी। एक कबोध बच्ची की चीख जो दोपहर के सन्नाटे में चारों ओर गूंज उठी थी, जब नशे में धुत ट्रक ड्राइवर ने इस नन्ही सी जान के पांव कुचल दिए थे। देखते ही देखते यह खबर बिजली की तरह फैल गई। उसकी माँ पागलों सी बेतहाशा भागी चली जा रही थी, जिधर से बिटिया की चीख सुनाई दे रही थी। जब तक वह पहुंची वह बेहोश हो चुकी थी। जल्द से जल्द उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। इन्फेक्शन के कारण घुटने से नीचे पैर काटना पड़ा। उसे क्या पता था जब वह एक पैर लेकर समाज में प्रवेश करेगी तो समाज उसे कैसी नजरों से देखेगा। कुछ लोग तो सहानुभूति अवश्य मिलेगी, कुछ लोगों की सहानुभूति अवश्य मिलेगी, पर जो असंवेदनशील होंगे वे हंसेंगे, ताने कसेंगे, देखो देखो तीन टांग वाली आ रही है, इसी नाम से लोग जानेंगे और उसका प्यारा नाम गौण हो जाएगा। सभी ने यह कहकर मुकदमा दायर करवा दिया कि इसके इलाज के लिए इसे पढ़ा लिखा कर अपने पांव पर खड़े होने के लिए जरूरी है। अंततः मुकदमे में इनकी जीत हुई। मुआवजे में जो राशि मिली उससे सारे कर्ज उतारे गए। सरकार के तरफ से थोड़ी जमीन मिली ताकि भविष्य में उसके काम आ सके। केस जीतने के पहले कई साल तक उनकी स्थिति काफी दयनीय रही। वे कर्ज में डूबे रहे, इसी गरीबी में वह अपनी पढ़ाई पूरी करती रही। श्रावणी के शुभचिंतक ने LIC एजेंट के रूप में काम करने की सलाह दी। काम सीखने का ये अच्छा मौका था। कुछ लोग सहानुभूति में पॉलिसी करवाते तो कुछ इसके काम में लगन को देखकर। एक दिन की बात है, श्रावणी एक सेठ के यहाँ गई। उसने ज्यों ही गेट के अंदर प्रवेश किया, लॉन में बैठे सेठ ने उसे हीन भावना से देखा और धुतकारते हुए कहा, जाओ यहाँ से, हम भीख नहीं देते। ये सब सुनने के बावजूद श्रावणी ने बड़े ही विनम्र भाव से कहा, चाचा जी मैं भीख मांगने नहीं आई हूँ, मैं LIC एजेंट हूँ। ये आप यदि एक पॉलिसी करवाएंगे तो बड़ी खुशी होगी। हम पर लाख विपत्ति आई, वर्षों तक आर्थिक तंगी से हम गुजरते रहे, पर मेरे माता पिता ने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। भला उनकी बेटी किसी के सामने कैसे हाथ फैला सकती है। शायद इन सब बातों का सेठ जी पर कोई असर नहीं हुआ, उन्होंने फिर से उसे दुत्कारा। सेठ जी की कटाक्ष ने श्रावणी को सिर से पैर तक झकझोर दिया। श्रावणी ने कहा,

0: चाचा जी, आपके विचार जानकर बहुत दुख हो रहा है। यदि कोई युवती का मारा है, आप यदि उसकी मदद नहीं कर सकते तो कम से कम उनका मजाक तो ना उड़ाइए। मुझे तो तरस आता है आपके विचारों पर। मेरा तो सिर्फ एक पांव ही अक्षम है, पर आपका तो दिल दिमाग सब अक्षम हो चुका है। मुझे सहारा देने के लिए तो ये दो बैसाखी हैं मेरे पास। पता नहीं आपके इस अक्षम दिमाग को कौन सहारा देगा। यह कहते हुए वह चली गई। सारा दिन बीत गया। जब सेठ जी सोने गए तो उन्हें ऐसा लगा कि कोई धिक्कार रहा है और ये कह रहा है आपने एक बच्ची की भावना को ठेस पहुंचाया। आपने तो इंसानियत का ही गला घोंट दिया। रात भर वो सो नहीं पाए, उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा था। सुबह होने के बाद उन्हें ऐसा महसूस हुआ मानो उनके जिंदगी की नई सुबह हो। अपने अंदर आए परिवर्तन से उन्हें बड़ा सुकून महसूस हो रहा था। उनका बेचैन मन शांत और निर्मल हो गया था। सेठ जी श्रावणी के पास गए और हाथ जोड़कर कहने लगे, बेटी मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे विचारों का अपमान किया है, तुमने मेरी आंखें खोल दी। श्रावणी ने झट से उनके जोड़े हुए हाथों को अपने हाथ में ले लिया। नहीं चाचा जी, नहीं, ये हाथ जोड़ने के लिए नहीं है, ये तो हम जैसों को आशीर्वाद देने के लिए है। हमें तो आप लोगों के सहारे ही जीना है, वरना इतने बड़े संसार में हमारी क्या पहचान है। आप लोगों की मदद से ही तो हमें अपनी पहचान बनानी है। सेठ जी अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। तुमने ये एहसास न दिलाया होता तो शायद मैं ये कभी नहीं समझ पाता कि मजबूरी क्या होती है, अभाव क्या होता है। और उन्होंने अपना हाथ श्रावणी के सिर पर रख दिया। श्रावणी काफी खुश थी कि उसकी कोशिश से किसी का हृदय परिवर्तन हुआ है।
1: विकास से ही होता है देश का विकास, और मुखिया ही अपनी दूरदर्शिता और अथक प्रयासों से गांव का विकास कर रहे हैं। इसी दिशा में देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक ने बिहार में एक अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया की शुरुआत की, जिसके तहत बिहार के गांव में उत्कृष्ट विकास कार्य करने वाले मुखियाओं का सम्मान किया जा रहा है। और बिहार के चारों जोन से श्रेष्ठ 80 मुखियाओं को चुना जा चुका है हिंदुस्तान के सहयोग से। यशस्वी मुखिया अभियान के अंतिम चरण में 15 जून को पटना में बिहार के 20 ऐसे यशस्वी मुखियाओं को सम्मानित किया जाएगा जो राज्य स्तर पर बने हैं अपने गांव के विकास के सारथी। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें हिंदुस्तान।
2: बहनों, अभी आप सुन रही थी पूर्व प्रसारित कहानी। कहानीकार थी मृदुला सिन्हा। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए सुनते हैं ये गीत।

इस गीत के साथ ही बहनों समय हो चला है आपसे विदा लेने का। हम फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए अपनी सहेली मुनमुन को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

आप सुन रहे थे शहरी महिलाओं के लिए हमारा कार्यक्रम नारी लोक। प्रसारण आपकी सेवा में आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से किया गया। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 12:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: सबदंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूँ विमलेश।
0: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार। आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने बड़ा खूबसूरत विचार भेजा है। लिखते हैं,
2: हर कठिनाई में छुपी होती है सफलता की कुंजी, बस उसे ढूंढना होता है। और असफलता में छिपी होती एक नई सीख जो हमें और बेहतर बनाती है। सपनों की उड़ान तभी सफल होती है जब हम ज्ञान के पंखों से उड़ते हैं।
0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने प्रेरणादायी संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है चांदनी चौक गंडई पंडरिया छत्तीसगढ़ से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की, विकी, नानू, रविंद्र और रौनक सेन जी का।
2: शेरी वडनेर महाराष्ट्र से बलदेव दामोदर और अरुणा दामोदर।
0: और बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन और डिंपल देवांगन।
2: गांव ढाणी, कुतुबपुर, तहसील हांसी, जिला हिसार, हरियाणा से रामधारी गुर्जर, गुरदीप गुर्जर, मीठी गुर्जर, ओजस गुर्जर, अवनी गुर्जर और प्रियांशी।
0: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेशों के लिए। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में।
2: जी
0: श्रोताओ, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं दुनिया के प्रसिद्ध पेयों के बारे में और उनकी रोचक जानकारी ले रहे हैं।
2: जी
0: तो विमलेश जी, पिछले दिनों में हमने चर्चा की चाय और कॉफी से जुड़ी सुंदर सामाजिक परंपराओं की।
2: जी
0: ये तो बताइए श्रोताओं को, आज हम किस पेय की चर्चा करने जा रहे हैं?
2: सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि पेयों से जुड़ी सामाजिक परंपराएं मात्र आवभगत से जुड़ी नहीं हुई है, लेकिन ये सामाजिक ताने बाने और सौहार्द को भी मजबूत बनाने का काम करती है। आज हम चर्चा करेंगे कोको पेय के बारे में। पर अजीत जी, ये तो बताइए श्रोताओं को कि कोको है क्या?
0: जी विमलेश जी, बताता हूँ। कोको एक पेड़ है जिसके फल को भी कोको कहते हैं।
2: जी
0: दुनिया में चाय और कॉफी के बाद जो सबसे लोकप्रिय पेय है वो है कोको। ये सिर्फ एक पेय ही नहीं है, इससे चॉकलेट, मिठाइयाँ और कई प्रकार के सौंदर्य उत्पाद भी बनाए जाते हैं।
2: जी
0: वैज्ञानिक भाषा में इसे काकाओ भी कहते हैं, जिसका ग्रीक में अर्थ है देवताओं का भोजन। विमलेश जी, अब इस जानकारी को आप आगे बढ़ाइए।
2: श्रोताओ, कोको आर्द्र और गर्म जगहों पर उगता है। ब्राजील और आइवरी कोस्ट इसके सबसे बड़े उत्पादक हैं। भारत में भी ये केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में उगाया जाता है। श्रोताओ, अब जानते हैं अजीत जी से कि कोको का फल कैसा होता है।
0: तो श्रोताओ, कोको के फल के बारे आपको बताना चाहता हूँ कि कोको पेड़ पर बड़े रंगीन फल लगते हैं, देखने में बड़े सुंदर लगते हैं।
2: जी
0: किस्मों के अनुसार कच्चा फल हरा, हल्का पीला या बैंगनी होता है, यही पकने पर गहरा पीला हो जाता है या नारंगी या लाल भी हो सकता है किस्मों और स्थान के अनुसार।
2: जी

0: का स्वाद प्रायः आम और लीची जैसा होता है। इसके हर फल में लगभग 20 से 60 तक बीज हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत कड़वे होते हैं। इन्हीं बीजों से कोको पेय या चॉकलेट भी बनाए जाते हैं। फिर क्या होता है?
1: फिर ये फल तोड़ा जाता है, बीज निकाले जाते हैं, उन्हें धूप में सुखाया जाता है, फिर बाद में भूनकर पीसा जाता है। इसे कोको पाउडर कहते हैं। इसका स्वाद प्रायः किसी मीठे फल जैसा होता है। इसके हर फल में लगभग 20 से लेकर 60 तक बीज हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत कड़वे होते हैं।
0: इन्हीं बीजों से कोको पेय या चॉकलेट भी बनाए जाते हैं।
1: जी
0: तो श्रोताओं, ये तो हुई कोको की जानकारी। इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं दुनिया की पेय पदार्थों की परंपरा की। इतिहास बताता है कि प्राचीन मध्य अमेरिका में माया एक बेहद विकसित सभ्यता थी।
1: इस सभ्यता में कोको को बहुत मूल्यवान समझा जाता था और लोग इसका इस्तेमाल मुद्रा की तरह भी करते थे। एक प्रकार से कोको के बीज वस्तु विनिमय प्रणाली का आधार थे। प्राचीन सभ्यता में कोको पेय सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं का हिस्सा रहा है।
0: जी विमलेश जी, एक बात और बता दूं कि प्राचीन सभ्यताओं में विवाह, सामुदायिक सभाओं, राजा द्वारा की गई दावतों में कोको पेय का होना बेहद अनिवार्य माना जाता था।
1: जी,
0: जनजातीय युद्धों में जाने से पहले कोको पेय विशेष रूप से जड़ी बूटियों और मसालों को मिलाकर परोसा जाता था। युद्धों में संधि या शांति वार्ता के अवसरों पर दोनों पक्षों को कोको पेय परोसा जाता था।
1: इसे शक्तिवर्धक पेय माना जाता था। आज भी मेक्सिको, स्पेन और इटली में कोको पेय का बहुत अधिक चलन है। पश्चिम अफ्रीका में कोको की खेती बड़े पैमाने पर होती है। आज भी कोको की फसल कटाई के अवसर को सामाजिक उत्सव के रूप में मनाया जाता है, जैसा कि हमारे देश भारत में भी फसलों की कटाई का समय त्योहारों के रूप में मनाया जाता है।
0: जी श्रोताओं, काकाओ की उत्पत्ति का मूल स्थान वैसे तो दक्षिण अमेरिका है, लेकिन जब यूरोपीय यात्री जैसे क्रिस्टोफर कोलंबस और हेरनोन कॉर्ट्स अमेरिका पहुंचे, तब कोको यूरोप पहुंचा। वहां चीनी और दूध मिलाकर इसका नया रूप विकसित हुआ, जिससे आज की हॉट चॉकलेट और चॉकलेट संस्कृति विकसित हुई, जो पूरी दुनिया में मित्रता का प्रतीक बन चुकी है।
1: कोको पेय संस्कृति दुनिया की सबसे प्राचीन पेय संस्कृति मानी जाती है। आज भी मेक्सिको, ग्वाटेमाला और लगभग सभी दक्षिणी अमेरिकी देशों में पारंपरिक कोको पेय सामाजिक सद्भाव और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। आज भी विशेष अवसरों पर जगह जगह कोको पेय समारोह आयोजित किए जाते हैं और लोगों को आमंत्रित किया जाता है।
0: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी कोको और कोको पेय संस्कृति पर। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है,
1: कोको या काकाओ की पैदावार सबसे अधिक किस देश में होती है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: कोको या काकाओ की पैदावार सबसे अधिक किस देश में होती है? श्रोताओ, आप भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर।
1: आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो चलिए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है श्री अरविंदो का शैक्षिक दर्शन।
1: शिक्षकों के लिए विशेष रूप से निर्मित इस कार्यक्रम में दुनिया के प्रसिद्ध शिक्षाविद और आध्यात्मिक गुरु श्री अरविंदो के शैक्षिक दर्शन को विस्तार से समझाया गया है और बताया गया है कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए क्या क्या प्रयास किए जाने चाहिए और कैसी शिक्षण विधियाँ उनके लिए अनुकूल हैं।
0: महर्षि अरविंद, जिन्हें अरविंदो के नाम से भी पुकारा जाता है, एक महान दार्शनिक थे। शिक्षा के क्षेत्र में उनकी दार्शनिक मान्यताओं को पूरी दुनिया में लोग गंभीरता से लेते हैं। प्रस्तुत है श्री अरविंद का जीवन और उनका शैक्षिक दर्शन।
2: श्री अरविंद का जन्म 15 अगस्त 1872 को कोलकाता में हुआ। उनके पिता डॉक्टर कृष्णधन घोष चाहते थे कि अरविंद की शिक्षा दीक्षा अंग्रेजी में हो और उनका लालन पालन पाश्चात्य संस्कृति में हो। अरविंद इंग्लैंड गए और उन्होंने ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच एवं अंग्रेजी भाषाओं का अध्ययन किया। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद 1893 के प्रारंभ में वो भारत वापस आए। यहाँ बड़ौदा स्टेट की प्रशासकीय एवं शैक्षिक सेवा में काम किया और वहीं के एक कॉलेज में प्राध्यापक हो गए। इस बीच उन्होंने धर्म, इतिहास, राजनीति, साहित्य एवं संस्कृति का अध्ययन किया। उसके बाद श्री अरविंद ने भारतीय मूल्यों पर आधारित शिक्षा की एक नई परिकल्पना प्रस्तुत की।

1914 में मीरा रिशार नामक फ्रांसीसी महिला पांडिचेरी आई और वो श्री अरविंद की आध्यात्मिक साधना में सहभागी बनी। बाद में 1920 में स्थायी रूप से भारत में बसकर उन्होंने काम करना शुरू किया। 1926 में उन्होंने श्री अरविंद के पांडिचेरी स्थित आश्रम की स्थापना की और उसके अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों का संयोजन किया। उनकी निष्ठा एवं सेवा भावना से प्रभावित होकर लोग उन्हें माताजी कहने लगे। पांच दिसंबर 1950 को श्री अरविंद ने समाधि ले ली और उसके बाद माताजी ने आश्रम का पूरा कार्यभार संभाल लिया। मनुष्य के बारे में श्री अरविंद की जो सोच थी उसे माताजी ठोस आकार देना चाहती थी। इसी उद्देश्य से उन्होंने 1943 में श्री अरविंद अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र की स्थापना पांडिचेरी में की। ये केंद्र शिक्षा जगत में शोध के संस्थान के रूप में आज भी कार्यरत है।

एक दिन राम कृपाल नाम का एक शोध छात्र पांडिचेरी के शिक्षा केंद्र में आता है। वहां उसके ठहरने एवं खाने की पूरी व्यवस्था की जाती है। शोध कार्य में उसको दिशा निर्देश देने के लिए एक वरिष्ठ अध्यापक श्री सुबोध को राम कृपाल के साथ लगा दिया जाता है। शोध छात्र राम कृपाल आश्रम की व्यवस्था एवं वातावरण से बहुत प्रभावित हो जाता है।

0: आहा, वाकई यहाँ की सुबह भी कितनी मनोहर है। इन दो चार दिनों में ही मुझे यहाँ की हर चीज से लगाव हो गया है।
1: यही तो हमारा उद्देश्य है। हम सब एक ऐसा वातावरण बनाना चाहते हैं कि यहाँ आने वाला हर व्यक्ति अमित स्मृतियां लेकर वापस जाए।
0: सुबोध जी, अब तक तो हमने यहाँ के सभी विभागों, शिक्षा के तौर तरीके और व्यवस्था के बारे में काफी कुछ जान लिया है, पर अभी असली काम बाकी है।
1: असली काम? वो क्या है भला राम कृपाल?
0: यही कि मैं जानना चाहता हूँ कि श्री अरविंद का शैक्षिक दर्शन वास्तव में क्या है।
1: राम कृपाल
0: जी,
1: इसे श्री अरविंद का व्यावहारिक दृष्टिकोण ही कहा जाएगा कि उन्होंने अपने शैक्षिक दर्शन में हर पहलू पर ध्यान दिया। वो चाहे विद्यालय का वातावरण हो, चाहे छात्रों का मनोविज्ञान हो, या फिर शिक्षकों का अपना दायित्व।
0: हाँ,
1: मैं 1945 के आसपास श्री अरविंद के संपर्क में आया।
0: जी,
1: उस समय मैं बहुत छोटा था, यही कोई 14 साल की उम्र रही होगी मेरी।
0: अच्छा,
1: तब ये विद्यालय ऐसा नहीं था, बस छोटा सा आश्रम हुआ करता था। उस समय अंग्रेजों का शासन था और भारतीय छात्र अधिकतर पश्चिमी मूल्यों पर आधारित अंग्रेजी शिक्षा पाते थे। श्री अरविंद के पिता ने उन्हें भी उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेजा।
0: जी,
1: शिक्षा पूरी कर वो अपने देश लौटे और स्वाधीनता आंदोलन से जुड़ गए। बाद में 1908 में वो जेल भी गए। इसके बाद उन्होंने प्रचलित शिक्षा प्रणाली में सुधार का लक्ष्य अपनाया और देश के सामने एक मुक्त, स्वदेशी और उद्देश्यपूर्ण शिक्षा की विचारधारा रखी।
0: वो क्या था सुबोध जी?
1: श्री अरविंद कहा करते थे, जो शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्त करने तक सीमित है, वो शिक्षा शिक्षा नहीं है। ज्ञान तो

0: मनुष्य के भीतर ही है, उसे सिर्फ शिक्षा के द्वारा सामने लाया जाता है।
1: जी,
0: बच्चों का ध्यान उनके अपने ज्ञान के साधनों की ओर खींचना चाहिए। हम जबरदस्ती उन्हें कुछ नहीं सिखा सकते, हमें तो सिर्फ उसकी बुद्धि को प्रशिक्षित करना होता है।
1: जी,
0: विद्यार्थी को उसके अपने वातावरण में ही विकसित करना चाहिए, अपने राष्ट्र, समाज और समय के अनुकूल। इसीलिए शिक्षा भी मातृभाषा में दी जानी चाहिए। तथ्यों की जानकारी देना, डिग्रियां बांट देना ही शिक्षा नहीं, उसे ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे वो पूर्ण मानव बन सके। अपनी पसंद का विषय चुने और मंजिल भी खुद तय करें। जिस तरह पशु से मानव का विकास हुआ है, उसी तरह अब मानव से अति मानव का विकास होना है।
2: प्राचीन भारतीय शिक्षा के बारे में वो क्या सोचते थे?
0: मुझे अच्छी तरह याद है कि श्री अरविंद ने प्राचीन भारतीय शिक्षा की बड़ी प्रशंसा की थी।
1: जी,
0: वो इसे उपयोगी मानते थे, पर पश्चिमी या आधुनिक शिक्षा को उन्होंने पूरी तरह नकारा नहीं।
2: मैं कुछ समझा नहीं सुबोध जी।
0: सुनो रामकृपाल, बात यह है कि श्री अरविंद ने एक मिलीजुली शिक्षा पद्धति की परिकल्पना की थी।
1: जी,
0: जिसमें समय के साथ जुड़ने वाले विषय भी शामिल हों। श्री अरविंद प्राचीन समय में ऋषियों द्वारा अपनाए गए कई शैक्षिक प्रयोगों के प्रशंसक भी थे। इनमें प्रमुख थी गुरु शिष्य परंपरा और ब्रह्मचर्य का पालन।
2: पर आज के जमाने में गुरु शिष्य परंपरा?
0: हाँ, क्यों नहीं भाई, इस आश्रम में जहाँ बैठे हैं,
2: हाँ?
0: पूरी तरह उसी परंपरा का पालन हो रहा है।
2: और ब्रह्मचर्य?
0: रामकृपाल
1: जी,
0: ब्रह्मचर्य के पालन से विद्यार्थी का मन और शरीर साफ होता है और उसमें शिक्षा को लेकर एकाग्रता आती है।
1: जी,
0: वो ठीक कहते थे कि प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली की सफलता का रहस्य भारतीय शैक्षिक चिंतन ही था।
2: आज तो उबाऊ होती जा रही है हमारी शिक्षा व्यवस्था। ऊपर से बस्ते का बोझ, अध्यापक का गुस्सा और घर के लिए बच्चे को दिया गया काम। अरे हाँ सुबोध जी, पाठ्यक्रम और शिक्षा की पद्धति के बारे में श्री अरविंद क्या कहते थे?
0: श्री अरविंद के अनुसार शिक्षा के दो तरीके या प्रणालियां हैं।
1: जी,
0: पहली प्रणाली है समकालिक और दूसरी क्रमिक। पहली पद्धति जरा आधुनिक है, जिसमें बहुत से विषयों की थोड़ी थोड़ी पढ़ाई एक ही समय में की जाती है।
2: जी हाँ,
0: पर इसका नतीजा ये होता है कि जिस विषय का पूरा ज्ञान एक साल में हो सकता है, वैसा 7 वर्षों में भी नहीं मिल पाता। जबकि दूसरी यानी क्रमिक प्रणाली ज्यादा अच्छी है, जो प्राचीन समय में लागू थी। इसमें 1-2 विषयों की शिक्षा गहराई से पाने के बाद ही बाकी विषय छुए जाते थे। पाठ्यक्रम तय करते वक्त अगर इन बातों का ध्यान रखा जाए तो अच्छा होगा।
2: बिल्कुल ठीक।
0: वास्तव में श्री अरविंद चाहते थे कि शिक्षा का कार्य लचीलेपन के साथ हो, ना कि बनावटी या कठिन। वो इससे भी इनकार करते थे कि एक ही विषय ज्यादा पढ़ने से छात्र की दिलचस्पी कम हो जाती है। शायद इसीलिए वो बच्चे की रुचि पहले ही समझकर शिक्षा देने को ठीक मानते थे।
2: जी, अब आप ये बताइए कि श्री अरविंद ने अध्यापकों के कर्तव्य के बारे में क्या कहा?
0: असल बात तो ये है कि उनका शैक्षिक दर्शन अध्यापकों पर ही केंद्रित है। जैसा कि मैंने बताया, शिक्षा बालक की मानसिक क्षमता और वातावरण के अनुरूप ही दी जानी चाहिए।
2: जी,
0: अब सवाल ये है कि शिक्षक ऐसा क्या करे और क्या न करे कि शिक्षा के नतीजे अच्छे आए। श्री अरविंद के मुताबिक हर व्यक्ति में दिव्यता का अंश है, उसके अपने कुछ शारीरिक और मानसिक खूबियां हैं। बस इन्हें खोजना और प्रयोग में लाने लायक बनाना ही शिक्षक की पहली जिम्मेदारी है। अध्यापक

0: सिखाने वाला ना होकर सहायक और मित्र हो। वो बच्चे में सभी 6 इंद्रियों के ठीक उपयोग की क्षमता विकसित करे।
1: 6 इंद्रियों में? भला ये कैसे हो सकता है, हमारी तो 5 ही इंद्रियां हैं।
0: दरअसल छठी इंद्री से श्री अरविंद का तात्पर्य है बच्चे का मानस। ये 5 इंद्रियों दृश्य, श्रव्य, ध्यान, स्वाद, स्पर्श के रूप में वस्तुओं को ग्रहण कर उन्हें विचार संवेदना के रूप में परिणत करता है।
1: जी,
0: श्री अरविंद के अनुसार शिक्षक का काम सुझाव देना है, कुछ थोपना या लादना नहीं। वो तो छात्र को बस ये बताए कि उसमें कौन कौन सी दक्षताएं छिपी हुई हैं और इसे बाहर लाने के लिए वो किस तरह का प्रयास करे। शिक्षक को मूर्ति निर्माता की तरह समझना गलत है, बल्कि उसे तो एक ना दिखाई देने वाली चीज अर्थात मन से संबंध बनाना होता है।
1: जी हाँ,
0: उनके शिक्षा सिद्धांत का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि वो विद्यार्थी के संपूर्ण विकास पर जोर देते थे। यानी शिक्षा ऐसी हो जिससे व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और आंतरिक विकास हो सके।
1: जी बिल्कुल,
0: श्री अरविंद के एकीकृत शिक्षा यानी पूर्ण शिक्षा के सिद्धांत में वो सारी बातें शामिल हैं जिसकी ठीक ठीक व्याख्या माताजी करती हैं, जिन्होंने इस पद्धति को व्यावहारिक रूप देने में अपना सारा जीवन लगा दिया।

0: श्री अरविंद की शिक्षा की जो समग्र दृष्टि थी उसको ठोस व्यावहारिक धरातल पर लाने का काम माताजी ने किया। माताजी ने एक नई दुनिया, नई मानवता, नया समाज और नई चेतना के निर्माण के श्री अरविंद के सपने को साकार किया। इसका आदर्श पूर्ण शिक्षा है, जिसके माध्यम से मनुष्य अपनी आंतरिक पूर्णता प्राप्त करने के लिए सम्मिलित रूप से प्रयास करता है। श्री अरविंद आश्रम में आध्यात्मिक मूल्यों से अनुप्राणित मनुष्य के संपूर्ण विकास के लिए उपयुक्त वातावरण है। इसका लक्ष्य है पूर्ण शिक्षा के द्वारा मानवीय प्रेम और विश्व बंधुत्व का प्रसार। यहाँ किसी भी जाति, भाषा, धर्म या क्षेत्र के लोग प्रवेश ले सकते हैं। इसके अलावा देश के विभिन्न भागों में श्री अरविंद के शैक्षिक दर्शन के प्रचार प्रसार के लिए संस्थाएं कार्य कर रही हैं, परंतु अभी भी काफी कुछ करना शेष है। शैक्षिक दर्शन के आधार पर संस्थाएं काम कर रही हैं। वास्तव में श्री अरविंद के सिद्धांतों के वास्तविक प्रचार प्रसार के लिए अभी काफी कुछ करना शेष है। उधर शोध छात्र राम कृपाल ने श्री अरविंद के बारे में पौंडेचेरी से सारी जानकारियां जुटाने के बाद लौटने की तैयारी की और वहां से एक संकल्प के साथ चल पड़ा।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम श्री अरविंदो का शैक्षिक दर्शन।

0: शिक्षा, शिक्षा की डिजिटल आधारिक संरचना, पीएम ई विद्या कार्यक्रम और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत एनसीईआरटी शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की एक पहल। दीक्षा, दीक्षा।
1: और आइए अब सुनते हैं कुछ मजेदार गुदगुदाने वाले और शिक्षा से भरपूर कुछ शिशु गीत।
2: इन गीतों के द्वारा बच्चों को स्वास्थ्य, पर्यावरण और एकता का संदेश दिया गया है और संदेश दिया गया है कि अपने स्वास्थ्य और पर्यावरण का ध्यान रखना हम सबकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है।

की सैर तो हो गई इस गीत में, अब हम मिलकर इसे गाएंगे। पहले मैं गीत की एक पंक्ति बोलूंगी, फिर आप सब मिलकर इसे बोलिए। पर एक बात है, सब जोर से गाएंगे और हाँ मिलकर भी।

मेले के थे ऐसे ठाट, झूले ठेले सुंदर हाट। तुम्हारे घर के पास मेला लगे तो जरूर जाना। और हाँ, अकेले नहीं, किसी के साथ। और वहां से आकर अपनी मेले की सैर के बारे में अपने साथियों को भी बताना।

0: कि क्या देखा वहां।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम शिशु गीत, और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।

आप सुन रहे थे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, प्रसारण आपकी सेवा में आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में हमारा अगला प्रसारण होगा।

ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है, मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलो हर्ट्स और एफएम के 110.1 मेगा हर्ट्स पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के ठीक 1 बजा है। लीजिए सुनिए लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग। आज के हमारे कलाकार हैं वीरेंद्र कुमार ठाकुर। आरंभ में आइए इनसे सुनते हैं ये देवी गीत।

0: कार्यक्रम का अगला गीत सुनने के पहले आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: गांव के विकास से ही होता है देश का विकास, और मुखिया ही अपनी दूरदर्शिता और अथक प्रयासों से गांव का विकास कर रहे हैं। इसी दिशा में देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक ने बिहार में एक अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया की शुरुआत की, जिसके तहत बिहार के गांव में उत्कृष्ट विकास कार्य करने वाले मुखियाओं का सम्मान किया जा रहा है, और बिहार के चारों जोन से श्रेष्ठ 80 मुखियाओं को चुना जा चुका है हिंदुस्तान के सहयोग से। यशस्वी मुखिया अभियान के अंतिम चरण में 15 जून को पटना में बिहार के 20 ऐसे यशस्वी मुखियाओं को सम्मानित किया जाएगा जो राज्य स्तर पर बने हैं अपने गांव के विकास के सारथी। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें हिंदुस्तान।
0: लीजिए सुनिए वीरेंद्र कुमार ठाकुर से ये विद्यापति का गीत।

से ही होता है देश का विकास और मुखिया ही अपनी दूरदर्शिता और अथक प्रयासों से गांव का विकास कर रहे हैं। इसी दिशा में देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक ने बिहार में एक अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया की शुरुआत की, जिसके तहत बिहार के गांव में उत्कृष्ट

0: श्रेष्ठ विकास कार्य करने वाले मुखियाओं का सम्मान किया जा रहा है और बिहार के चारों जोन से श्रेष्ठ 80 मुखियाओं को चुना जा चुका है हिंदुस्तान के सहयोग से। यशस्वी मुखिया अभियान के अंतिम चरण में 15 जून को पटना में बिहार के 20 ऐसे यशस्वी मुखियाओं को सम्मानित किया जाएगा जो राज्य स्तर पर बने हैं अपने गाँव के विकास के सारथी। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें हिंदुस्तान।
1: आप सुन रहे हैं लोकगीतों का कार्यक्रम लोकरंग। कलाकार हैं वीरेंद्र कुमार ठाकुर। इनके गाए लोकगीत आप एक बार फिर सुनेंगे प्रादेशिक समाचार के बाद, जिसके लिए आइए शामिल होते हैं रांची की प्रसारण सभा में।

0: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में नीति आयोग की बैठक शुरू। विकसित भारत और समावेशी विकास पर चर्चा जारी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी ले रहे हैं भाग। झारखंड हाईकोर्ट ने भू माफियाओं के खिलाफ अपनाया सख्त रुख। राज्य सरकार ने तैयार किया विशेष SOP। कोर्ट ने दिया 6 हफ्ते का समय। राज्य के नेशनल और स्टेट हाईवे पर तेज रफ्तार रोकने के लिए लगेंगे स्पीड रिकॉग्निशन कैमरे। गति सीमा तोड़ने पर कटेगा ऑनलाइन चालान। रांची सदर अस्पताल बनेगा राज्य का पहला टेली SNCU और ई संजीवनी हब। ग्रामीण मरीजों को ऑनलाइन मिलेगी विशेषज्ञ सलाह। और रांची में आयोजित झारखंड जूनियर शतरंज चैंपियनशिप संपन्न। बालक वर्ग में तनिष्क और बालिका वर्ग में कीर्ति बनी विजेता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में देश भर में उद्यमिता, कौशल विकास और स्थायी रोजगार सृजन के उपायों पर गहन विचार विमर्श किया जा रहा है। इसके साथ ही डिजिटल सार्वजनिक ढांचे और शासन से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर भी चर्चा केंद्रित है। इस वर्ष का मुख्य विषय 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास रखा गया है। बैठक में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उपराज्यपाल हिस्सा ले रहे हैं। बैठक में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी मौजूद हैं। राज्य में जमीन कब्जे के बढ़ते मामलों पर झारखंड हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। इस मामले में सुनवाई करते हुए अदालत ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया। सरकार की ओर से बताया गया कि मामले की जांच के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति ने विशेष SOP तैयार कर लिया है। अधिवक्ता अत्तानु बैनर्जी ने बताया कि अदालत ने इस SOP की समीक्षा करने और इसके क्रियान्वयन से जुड़े अन्य आवश्यक कदमों के लिए राज्य सरकार को 6 हफ्ते का समय दिया है।
1: एक नियम बनाया गया है, वो सरकार के पास अभी भेजा गया है। कोर्ट ने सरकार को 6 हफ्ते का समय दिया है। जो प्रस्ताव गया है इसको आपको लागू करना है, नहीं लागू करना है, जो भी निर्णय लेना आप 6 हफ्ते के अंदर लीजिए। कोर्ट ने मुझे भी ये कहा है वो उचित कानूनी रूप से वो सुझाव भी हम 10 दिन के अंदर ये वहाँ पर दे दे।
0: राज्य से गुजरने वाले नेशनल और स्टेट हाईवे पर सड़क हादसों को रोकने के लिए सरकार ने नई तकनीक अपनाने का फैसला किया है। अब हाईवे पर तेज रफ्तार वाहनों पर लगाम लगाने के लिए स्पीड रिकॉग्निशन कैमरे लगाए जाएंगे। सड़क सुरक्षा कोषांग की समीक्षा बैठक में यह बात सामने आई कि अधिकांश हादसे वाहनों की तेज गति के कारण होते हैं। इसी को देखते हुए बिहार की तर्ज पर झारखंड में भी कैमरा एनफोर्समेंट व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। बोकारो के सेक्टर 12 में नए मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के निर्माण कार्य का जायजा लेने स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह बोकारो पहुंचे। उन्होंने जिला प्रशासन और सेल के अधिकारियों के साथ बैठक कर जमीन हस्तांतरण और बुनियादी ढांचे की प्रगति की समीक्षा की। अपर मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्माण कार्य में तेजी लाने और इसे निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया है।
2: 27 मार्च में इसको चालू कर दिया जाए और NMC का जो नॉर्म्स है उसमें हम लोग मार्च तक अप्लाई कर देंगे और पढ़ाई तो है वो अगस्त से ही शुरू होगा। सबसे पहले मेडिकल जो कॉलेज के अंतर्गत हॉस्पिटल है वो चालू करेंगे मार्च के 27 में और उसके बाद पूरा मेडिकल कॉलेज जो है वो करीब करीब जुलाई अगस्त के आसपास चालू।
0: राज्य सरकार ने डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए रांची सदर अस्पताल को नए ई संजीवनी हब के रूप में विकसित करना शुरू कर दिया है। इसके तहत राज्य भर के जिला अस्पतालों की नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाइयां ऑनलाइन सदर अस्पताल से जोड़ी जाएंगी, जिससे गंभीर नवजातों की विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा 24 घंटे ऑनलाइन निगरानी हो सकेगी। श्रावणी मेला से पहले 25 जुलाई को देवघर बासुकीनाथ 4 लेन शुरू हो जाएगा। 999 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे इस 45 किलोमीटर से अधिक लंबे 4 लेन का 80% से अधिक काम पूरा हो चुका है। NHAI के अनुसार रेलवे ओवरब्रिज पर गर्डर लॉन्चिंग का काम पूरा होने के बाद अब निर्माण अंतिम चरण में है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। कोडरमा के लक्ष्मीपुर में गोवर्धन योजना के तहत स्थापित बायोगैस प्लांट से 32 घरों में पाइपलाइन के जरिए गैस की आपूर्ति शुरू हो गई है। महिलाओं द्वारा संचालित इस 1500 किलोग्राम क्षमता वाले प्लांट से लकड़ियों पर निर्भरता खत्म हुई है और खेतों के लिए जैविक खाद भी मिल रही है। परियोजना की सफलता पर मेंटेनेंस मैनेजर नीतीश राज ने कहा कि मिडल ईस्ट में बढ़ते तनाव और LPG की आसमान छूती कीमतों के बीच यह आत्मनिर्भर पहल बेहद कारगर साबित हो रही है।
3: तो और हम लोग पाइप से गैस दिए, गैस देने के बाद सुबह शाम जिस तरह हम रेगुलर बेसिस पर जो गैस जलता है उस हिसाब से प्रतिदिन हम लोग गैस जलता है सब पे, जिसमें अभी LPG की किल्लत होने के कारण हमारे सबसे वरदान साबित होता है गोवर्धन योजना।
0: बोकारो शहर के सिटी थाना क्षेत्र स्थित दूंदीबाद फल मंडी में कल देर रात भीषण आग लग गई। आग की चपेट में आने से 4 फल दुकानें और कई खटाल पूरी तरह नष्ट हो गए। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड और BSL की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और करीब 2.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जमशेदपुर पुलिस ने साक्षी बाजार से लापता मासूम बच्ची आफरीन को पश्चिम बंगाल के पुरुलिया से सकुशल बरामद कर लिया है। बच्ची की तलाश के लिए गठित SIT ने 50 CCTV कैमरों की फुटेज खंगाल कर इस सफलता को हासिल किया। सिटी SP ललित मीणा ने बताया कि मामले में पुलिस ने एक निसंतान दंपति को हिरासत में लिया है।
4: 50 से अधिक CCTV देखे गए और उसका जब जो ट्रेन था जो उसके द्वारा रास्ता फॉलो किया गया था और ये जो 2 व्यक्ति हैं इनका नाम है अब्दुल जसीम और अफसाना बेगम। इन्होंने देखा कि उस दिन मार्केट में बच्ची अकेली है तो ये उसको अपने साथ लेकर चले गए।
0: आज सुबह के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के मुख्य इंडेक्स मामूली बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। ताज़ा जानकारी मिलने तक सेंसेक्स 125 अंक बढ़कर 74,109 पर और निफ्टी 29 अंक बढ़कर 23,244 पर पहुंच गया था। राजधानी रांची के सर्राफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,38,200 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,45,000 रुपये प्रति किलो है। और अब मौसम का हाल। राज्य में भीषण गर्मी झेल रहे लोगों को आज से राहत मिल सकती है क्योंकि प्री मानसून गतिविधियां तेज होने जा रही हैं। मौसम विभाग ने रांची, धनबाद और देवघर समेत कई जिलों में आंधी, वज्रपात और बारिश की संभावना जताते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार मुख्य मानसून अगले 4 दिनों में संताल परगना के रास्ते राज्य में प्रवेश करेगा। रांची में आयोजित 25वीं झारखंड जूनियर स्टेट शतरंज चैंपियनशिप में बालक वर्ग में तनिष्क कुमार और बालिका वर्ग में कीर्ति कुमारी ने खिताबी जीत हासिल की है। प्रतियोगिता के शीर्ष 4-4 खिलाड़ियों का चयन

0: राष्ट्रीय स्तर की शतरंज प्रतियोगिता के लिए हुआ है। इसी समारोह में झारखंड अंडर 7 और अंडर 11 शतरंज चैंपियनशिप का भी विधिवत उद्घाटन किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में नीति आयोग की बैठक शुरू। विकसित भारत और समावेशी विकास पर चर्चा जारी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी ले रहे हैं भाग। झारखंड हाईकोर्ट ने भूमाफियाओं के खिलाफ अपनाया सख्त रुख। राज्य सरकार ने तैयार किया विशेष एसओपी। कोर्ट ने दिया 6 हफ्ते का समय। राज्य के नेशनल और स्टेट हाईवे पर तेज रफ्तार रोकने के लिए लगेंगे स्पीड रिकॉग्निशन कैमरे। गति सीमा तोड़ने पर कटेगा ऑनलाइन चालान। रांची सदर अस्पताल बनेगा राज्य का पहला टेली एसएनसीयू और ई संजीवनी हब। ग्रामीण मरीजों को ऑनलाइन मिलेगी विशेषज्ञ सलाह। और रांची में आयोजित झारखंड जूनियर शतरंज चैंपियनशिप संपन्न। बालक वर्ग में तनिष्क और बालिका वर्ग में कीर्ति बनी विजेता। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। नीचे सुनिए लोक गीतों के कार्यक्रम लोक रंग का शेष भाग। आज के हमारे कलाकार हैं वीरेंद्र कुमार ठाकुर। आइए इस भाग में सबसे पहले सुनते हैं उनसे ये पूर्वी

0: गांव के विकास से ही होता है देश का विकास, और मुखिया ही अपनी दूरदर्शिता और अथक प्रयासों से गांव का विकास कर रहे हैं। इसी दिशा में देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक ने बिहार में एक अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया की शुरुआत की, जिसके तहत बिहार के गांव में उत्कृष्ट विकास कार्य करने वाले मुखियाओं का सम्मान किया जा रहा है। और बिहार के चारों जोन से श्रेष्ठ 80 मुखियाओं को चुना जा चुका है हिंदुस्तान के सहयोग से। यशस्वी मुखिया अभियान के अंतिम चरण में 15 जून को पटना में बिहार के 20 ऐसे यशस्वी मुखियाओं को सम्मानित किया जाएगा जो राज्य स्तर पर बने हैं अपने गांव के विकास के सारथी। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें हिंदुस्तान।
1: लोक रंग कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं वीरेंद्र कुमार ठाकुर से ये शिव भजन।

आप सुन रहे थे लोक गीतों का कार्यक्रम लोक रंग। कलाकार थे वीरेंद्र कुमार ठाकुर। प्रसारण आपकी सेवा में आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से किया गया। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 1:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए रूपक गंगा के सुरताल के चौथी कड़ी। इस धारावाहिक के लेखक हैं रमेश रमाणा।

0: गंगा को पूर्ण रूप प्राप्त होता है देवप्रयाग से। इससे पहले गंगा भागीरथी के रूप में जानी जाती है। देवप्रयाग में ही भागीरथी का अलकनंदा नदी के साथ संगम होता है। यहां से गंगा वेगवान गति के साथ ऋषिकेश और हरिद्वार के लिए प्रस्थान करती है।
1: टेहरी और पौड़ी गढ़वाल को मानो नदियों का वरदान प्राप्त है। गोमुख से भागीरथी चलती है तो केदारनाथ से मंदाकिनी तथा बद्रीनाथ से अलकनंदा। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी और अलकनंदा का संगम होता है। यहां से अलकनंदा बनकर देवप्रयाग तक आती है और भागीरथी में विलीन हो जाती है। इन सभी नदियों को गंगा का ही रूप माना गया है।
0: गंगा के प्रति जितनी श्रद्धा टिहरी निवासियों को है, उतनी ही श्रद्धा पौड़ी निवासियों को भी है। पौड़ी गढ़वाल के लोग भी गंगा गीतों में विशेष आनंद लेते हैं। यहाँ के लोग गंगा की महिमा का वर्णन करते नहीं थकते।
1: पौड़ी गढ़वाल के लोगों ने गंगा की महिमा और महत्व को इस गीत में सजाने का प्रयास किया है।

0: गंगा अपनी गोद में सभी धर्म जाति के लोगों को आश्रय देती है, उनका लाभ सभी को प्राप्त है, साथ ही सभी लोग गंगा पर समान रूप से श्रद्धा रखते हैं।
1: ऐसी ही बात को इस गीत में कहा गया है। गंगा के किनारे बसे गांव के लोग कहते हैं, गंगा की कृपा से हम सब स्वस्थ, सुखी और अन्न धन से परिपूर्ण हैं। वे गंगा से प्रार्थना करते हैं कि जो गांव आपके समीप नहीं है उन पर भी अपनी कृपा बनाए रखना। कुछ ऐसे ही भाव हैं इस गीत के।

0: भले ही भारत के सभी गांव गंगा के किनारे बसे नहीं हों, पर गंगा का लाभ अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें भी मिल जाता है। गंगा का उद्भव मात्र पवित्रता के लिए नहीं हुआ, बल्कि व्यावसायिक दृष्टिकोण से भी गंगा लाखों करोड़ों की जीवनदायिनी है।
1: पौड़ी गढ़वाल के अधिकांश गीतों में गंगा स्नान का ही वर्णन मिलता है। दरअसल गगनचुंबी पहाड़ों की गहराई में गंगा की तेज धारा में स्नान करना अत्यंत कठिन और असुरक्षित है, इसलिए पौड़ी गढ़वाल के लोगों को भी जब गंगा स्नान की इच्छा होती है तो उन्हें भी ऋषिकेश या हरिद्वार ही आना पड़ता है। पौड़ी गढ़वाल के लोग गीत गाते हुए और नृत्य करते हुए गंगा स्नान के लिए समतल क्षेत्र में आते हैं और गंगा की महिमा का गुणगान करते हुए गंगा की आरती उतारते हैं।

0: किसी भी पर्व त्योहार पर गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है। पौड़ी गढ़वाल में किसी पर्व पर स्नान करना तथा थड़िया चौंफला नृत्य करते हुए गंगा की आरती उतारने की बात ही निराली है।
1: चल, गंगा नहाने का पर्व आ गया, हम भाई बहन भी गंगा नहाने का सुख प्राप्त करेंगे। कहा जाता है कि इस गंगा को भागीरथ ने भूमि पर उतारा था, इसलिए इसमें स्नान का विशेष महत्व होता है।
0: गढ़वाल लोक गीतों की धरती है, यहाँ के कण कण में संगीत समाया है। कल कल करती गंगा की धार, रुनझुन करती वर्षा की फुहार, मेघों की गर्जना के बीच कौंधती बिजलियां और पक्षियों की चहचहाहट से यहाँ का पूरा वातावरण संगीतमय हो जाता है।
1: ऐसे में इंसान चुप कैसे रह सकता है, इस सुंदरमय दृश्य से प्रभावित होकर गुनगुनाने लगता है, पैर थिरकने लगते हैं, प्रेम से सराबोर हो गीतों के बोल अपने आप ही फूट पड़ते हैं।

0: इस गीत में पहाड़, झरनों और नदियों के प्रति प्रेम दर्शाया गया है। हमारे पहाड़ों में प्राकृतिक सौंदर्य तो है ही, वहीं देवताओं का वास भी है। इसके अलावा पहाड़ की सुंदरियों, बच्चों तथा जवानों के सौंदर्य का भी वर्णन है। यहाँ गंगा की कृपा से पशु पक्षी, फूल वनस्पति तथा सभी स्थान रमणीक हैं।
1: इनका प्रेम मात्र प्रकृति पर ही उजागर नहीं होता, बल्कि आपसी रिश्तों में भी खुलकर सामने आता है।
0: इस गाने में एक लड़की की शादी का वर्णन है। वो दुल्हन बनकर मंडप में बैठी है, बारात आ रही है और सभी उससे मजाक कर रहे हैं। तुम्हारी बारात कहाँ से आई है और तुम्हें कौन मुकुट पहनाएगा?
1: ये गीत एक संवाद के रूप में है। बारात दुल्हन के घर पहुंची है और उससे पूछा जा रहा है,

0: हे सजी धजी दुल्हन, तुम किस गांव की हो? तुम्हारा ससुराल कहां पर है? हमने तुम्हारे दूल्हे की आवाज, उसकी चाल और चमकते मुकुट को भी पहचान लिया। अब तुम भी उसे पहचानना।
1: वसंत ऋतु के आगमन पर जब गढ़वाल के पहाड़ों में तरह तरह के फूल अपनी खुशबू बिखेरते रहते हैं, तो उसी समय विभिन्न पक्षी भी अपनी चहचहाहट और बोलियों से सारे वातावरण को गुंजा देते हैं।
0: पहाड़ों में पक्षी अपनी बोलियों में संदेशवाहक का काम भी करते हैं, जो कि पुराने युग से लेकर आज तक चला आ रहा है।
1: दुर्गम पहाड़ों और नदियों के कारण गढ़वाल की गोद में रहने वाले लोगों तक कोई भी संदेश लंबे अरसे के बाद ही मिल पाता है। यदि ऐसे में किसी को विशेष संदेश भेजना हो तो बेचैनी बढ़ना स्वाभाविक है। विशेषकर यदि कोई पत्नी परदेश में काम कर रहे अपने पति को संदेश भेजना चाहती है, या कोई बेटी अपनी माँ से मिलने की तड़प को बताना चाहती है।
0: गढ़वाल के पहाड़ों में नारियां घुघती पक्षी को अपना संदेशवाहक बनाती हैं और उसी से अपना सुख दुख कहकर संदेश भेजती हैं।
1: एक महिला घुघती पक्षी से अपनी माँ को संदेश भेजती है। माँ, तुमसे मिले बहुत दिन हो गए हैं, इसलिए तुम मेरे लिए अच्छे अच्छे पकवान लेकर धार मेले में आना। मैं भी अपनी सखी सहेलियों के साथ वहां आऊंगी। कुछ ऐसे ही भाव हैं इस गीत के।

0: ही होता है देश का विकास और मुखिया ही अपनी दूरदर्शिता और अथक प्रयासों से गांव का विकास कर रहे हैं। इसी दिशा में देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक ने बिहार में एक अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया की शुरुआत की, जिसके तहत बिहार के गांव में उत्कृष्ट विकास कार्य करने वाले मुखियाओं का सम्मान किया जा रहा है और बिहार के चारों जोन से श्रेष्ठ 80 मुखियाओं को चुना जा चुका है हिंदुस्तान के सहयोग से। यशस्वी मुखिया अभियान के अंतिम चरण में 15 जून को पटना में बिहार के 20 ऐसे यशस्वी मुखियाओं को सम्मानित किया जाएगा जो राज्य स्तर पर बने हैं अपने गांव के विकास के सारथी। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें हिंदुस्तान। गांव के विकास से ही होता है देश का विकास और मुखिया ही अपनी दूरदर्शिता और अथक प्रयासों से गांव का विकास कर रहे हैं। इसी दिशा में देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक ने बिहार में एक अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया की शुरुआत की, जिसके तहत बिहार के गांव में उत्कृष्ट विकास कार्य करने वाले मुखियाओं का सम्मान किया जा रहा है और बिहार के चारों जोन से श्रेष्ठ 80 मुखियाओं को चुना जा चुका है हिंदुस्तान के सहयोग से। यशस्वी मुखिया अभियान के अंतिम चरण में 15 जून को पटना में बिहार के 20 ऐसे यशस्वी मुखियाओं को सम्मानित किया जाएगा जो राज्य स्तर पर बने हैं अपने गांव के विकास के सारथी। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें हिंदुस्तान। गांव के विकास से ही होता है।
1: अभी अब धारावाहिक गंगा के सुरताल की चौथी कड़ी सुन रहे थे। इस धारावाहिक के लेखक थे रमेश रबाणा। प्रसारण आपकी सेवा में आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से किया गया। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 2 बजने ही वाले हैं। आइए शामिल होते हैं पटना के प्रसारण सभा में प्रादेशिक समाचारों के लिए।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उपराज्यपाल भाग ले रहे हैं। बैठक में देश भर में उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ावा देने तथा रोजगार के स्थायी अवसर सृजित करने के उपायों पर विचार विमर्श किया जाएगा। चर्चा में शासन, डिजिटल सार्वजनिक ढांचे और साझेदारी सहित प्रमुख मुद्दों के समुचित कार्यान्वयन की रूपरेखा तैयार करने पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस वर्ष की बैठक का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। विधान परिषद की 9 सीटों पर द्विवार्षिक चुनाव और 1 सीट के उपचुनाव के लिए निर्वाचित उम्मीदवारों के नाम की आज घोषणा किए जाने की संभावना है। इन चुनावों के लिए आज नाम वापसी का अंतिम दिन है। किसी भी उम्मीदवार के नाम वापस नहीं लिए जाने की स्थिति में विजयी उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। 10 सीटों पर 10 उम्मीदवार होने के कारण सभी उम्मीदवारों का निर्विरोध निर्वाचन तय है। भाजपा ने इस चुनाव के लिए पवन सिंह, संजय मयूख, अनिल कुमार ठाकुर और शीला पंडित को उम्मीदवार बनाया है। वहीं जदयू ने स्वास्थ्य मंत्री निशांत, भारती मेहता, शिवरानी देवी प्रजापति और ललन प्रसाद को उम्मीदवार बनाया है। इधर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने पार्टी के कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष अशरफ अंसारी को उम्मीदवार बनाया है। महागठबंधन की ओर से 1 सीट पर राजद के सुनील कुमार सिंह एकमात्र उम्मीदवार हैं। राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने राजस्व महाअभियान के तहत प्राप्त आवेदनों के निपटारे के लिए आज से सभी अंचलों में विशेष अभियान की शुरुआत की है। 17 जून तक चलने वाले इस अभियान के दौरान 46 लाख आवेदनों के निष्पादन का लक्ष्य है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में प्री मॉनसून बारिश होने से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पटना, बक्सर, सिवान, सारण, बेगूसराय, सुपौल और मधेपुरा समेत कई जिलों में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश हुई है। मौसम विभाग ने आज राज्य के अधिकतर हिस्सों में तेज हवा के साथ बारिश का पूर्वानुमान जताया है। पश्चिम चंपारण और कटिहार जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटरमीडिएट के शैक्षणिक सत्र 2026-27 में नामांकन के लिए तीसरी चयन सूची जारी कर दी है। पहली और दूसरी सूची के बाद बची सीटों के आधार पर तैयार इस सूची में शामिल छात्र 14 जून तक संबंधित विद्यालयों में नामांकन ले सकेंगे। आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने हाजीपुर नगर परिषद के लेखापाल मनीष कुमार के दो ठिकानों पर छापेमारी की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार उनके हाजीपुर के बागमली स्थित आवास और नगर

परिषद कार्यालय परिसर स्थित सरकारी आवास पर छापेमारी की गई। आय से अधिक संपत्ति के मामले में यह कार्रवाई की गई है। छापेमारी के दौरान लाखों रुपए मूल्य

एक देशी पिस्तौल भी बरामद किया गया। रोहतास जिले के डेहरी स्थित पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में दौड़ के दौरान 5 प्रशिक्षु जवान भीषण गर्मी के चलते बेहोश हो गए। इनमें से एक प्रशिक्षु सिपाही श्रीराम कुमार की पटना एम्स में इलाज के दौरान मौत हो गई। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।

जबरदस्त गर्मी के सबब बेहोश हो गए। इनमें से एक ट्रेनी सिपाही श्रीराम कुमार की पटना एम्स में इलाज के दौरान मौत हो गई। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से उर्दू खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: सुनो ना,
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है, हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
0: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।

0: ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। 2:15 होने ही वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे दोपहर समाचार दिल्ली से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, केंद्र और राज्य सरकारों के सामूहिक प्रयास विकसित भारत के दृष्टिकोण की भावना को साकार करने में महत्वपूर्ण। उन्होंने नई दिल्ली में नीति आयोग के 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों में आकाशवाणी और दूरदर्शन की पहुंच मजबूत करने के प्रयास कर रही है। राजस्थान के जैसलमेर में 20 किलोवाट के FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया। सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ किया। तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चिकबराइक ने राज्यसभा सदस्य पद से इस्तीफा दिया। भारत में निर्मित एयरबस C-295 विमान ने वडोदरा में पहली परीक्षण उड़ान सफलतापूर्वक संपन्न की। अमेरिका के हमलों के बाद ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य को बंद करने की घोषणा की। और फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आज रात मेक्सिको सिटी में शुभारंभ। समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भले ही दुनिया अनिश्चितता और अस्थिरता के दौर से गुजर रही हो, लेकिन भारत आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ विकास पथ पर अग्रसर है। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जैसे जैसे भारत विकसित भारत के लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहा है, ऐसे में केंद्र और राज्य सरकारों की सामूहिक जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। श्री मोदी ने कहा कि राज्यों के बीच सहयोग, संवाद और विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि नीति आयोग इसमें सहयोग के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, ताकि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच विचारों का समुचित आदान प्रदान हो सके और विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में सामूहिक प्रयासों को बल मिले। बैठक में देश भर में उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ावा देने तथा रोजगार के स्थायी अवसर सृजित करने के उपायों पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इस वर्ष की बैठक का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उपराज्यपाल भाग ले रहे हैं। किसानों का कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है और सरकार उनके जीवन को सुगम बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि किसान देश के खाद्य सुरक्षा, पोषण और समृद्धि की रीढ़ हैं। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और फसल बीमा योजना जैसी पहले न केवल किसानों की आय की रक्षा कर रही हैं, बल्कि कृषि को और भी सशक्त बना रही हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज जयपुर में आकाशवाणी परिसर में आयोजित कार्यक्रम में राजस्थान के रामगढ़ में 20 किलोवाट के FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन वर्चुअली माध्यम से किया। इस कार्यक्रम में जयपुर की सांसद मंजू शर्मा, प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। श्री वैष्णव ने सामरिक अवसंरचना पर ध्यान केंद्रित करते हुए सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार व्यवस्था को मजबूत करने के लिए आकाशवाणी और दूरदर्शन से सरकार की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। उन्होंने समय के साथ परिवर्तन पर भी बल दिया।
2: मैं निवेदन करूंगा आकाशवाणी के सभी साथियों से और विशेषकर DG साहब से, राजीव जी से और हमारे प्रसार भारती के चेयरमैन श्री प्रसून जोशी जी से कि अब हम एक नए तरीके से सोचे आकाशवाणी के बारे में। हम आज के समय के हिसाब से आकाशवाणी को डिजिटल फर्स्ट और हाइपर लोकल, इन दो सूत्रों में बांधे। जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म हमारे पास आज अवेलेबल है, अपना खुद का वेव्स OTT है, उस प्लेटफॉर्म को यूज करें। लोकल आर्ट, लोकल संस्कृति, लोकल खान पान को लाने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनाए। अगले 1000 दिनों में एक मास्टर प्लान बना के आकाशवाणी और दूरदर्शन का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन करें। आपको पूरा फ्रीडम है, जो आप कहोगे वो पॉलिसी बनेगी। पॉलिसी बनाने वाले आप, इंप्लीमेंट करने वाले आप।
1: श्री वैष्णव ने कहा कि राजस्थान में सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार और प्रसारण नेटवर्क को मजबूत करने के लिए ये पहल शुरू की गई है।
2: करीब अपने 450 स्टेशन है पूरे प्रदेश में, उसमें से 200 स्टेशन

0: का काम करीब करीब पूरा होने को आया है, तो ये काम जो कि जन जन को, जैसे श्रद्धेय अटल जी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बना के गांव गांव तक सड़क पहुंचाई थी, वैसा ही आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी छोटे से छोटे स्टेशन पर भी अच्छा काम करने के लिए दिन रात लगे। बड़े स्टेशनों का काम तो अपनी जगह है, जयपुर में एक तरीके से लोग आते हुए स्टेशन को भी देखेंगे, जैसे हवा महल देखने जाते हैं, वैसे ही ये भी एक टूरिज्म का अच्छा अट्रैक्शन बनेगा और जनता को बहुत बड़ी होगी।
1: सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना के माध्यम से 22, 25, 27 और 30 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को केंद्रीय उत्पाद शुल्क से पूरी तरह छूट देने की घोषणा की है। मंत्रालय ने कहा कि अब इन चारों ईंधन श्रेणियों पर उत्पाद शुल्क शून्य रहेगा। इसका उद्देश्य भारत के एथेनॉल मिशन कार्यक्रम को मजबूत करना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। भारत में निर्मित एयरबस C-295 विमान ने गुजरात के वडोदरा से पहली परीक्षण उड़ान सफलतापूर्वक संपन्न की। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने भारत में निर्मित पहले एयरबस C-295 के प्रथम सफल परीक्षण उड़ान की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि यह एरोस्पेस विनिर्माण में देश की बढ़ती क्षमताओं को भी दर्शाता है। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए एयरबस, टाटा एडवांस सिस्टम, भारतीय वायुसेना और सभी इंजीनियरों, टेक्नीशियनों और कर्मचारियों को बधाई दी। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और बुल्गारिया के संबंध दीर्घकालिक और स्थिर हैं। बुल्गारिया के विदेश मंत्री वेलिस्लावा पेट्रोवा चामोवा से मुलाकात के दौरान श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों देश मिलकर भविष्य में संबंधों को बेहतर करने पर कार्य करेंगे।
2: हमारी बातचीत के तीन पहलू थे। पहला, भारत और बुल्गारिया के बीच आपसी सहयोग। दूसरा, भारत और यूरोपीय संघ के बीच साझेदारी। और तीसरा, वैश्विक स्थिरता और विकास के लिए ताकतवर देश किस तरह मिलकर काम कर सकते हैं।
1: डॉक्टर जयशंकर ने बल देकर कहा कि आर्थिक सुरक्षा और आतंकवाद के बढ़ते खतरे पर भारत का स्पष्ट रुख है।
2: भारत का मानना है कि ये दौर युद्ध का नहीं है और संघर्षों का एकमात्र समाधान बातचीत तथा कूटनीति है। जब बात आर्थिक जोखिमों की आती है तो इससे निपटने का तरीका मजबूत आपूर्ति श्रृंखला और अधिक विविधता है, और ये सुनिश्चित करना आवश्यक है कि समुद्री व्यापार में कोई रुकावट न आए। साथ ही आतंकवाद के मामले में दुनिया को शून्य सहिष्णुता की नीति पर स्पष्ट रुख अपनाना होगा।
1: ओमान की खाड़ी में पलाव ध्वज वाले वाणिज्यिक जहाज एमटी सिटेबोलो पर अमेरिकी सेना के हमले में लापता हुए तीनों भारतीय नाविकों की मौत की पुष्टि हो गई है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि तीनों शव बरामद कर लिए गए हैं। उन्होंने इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री सोनोवाल ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे बचाए गए चालक दल के सदस्यों को तुरंत स्वदेश वापस लाया जाए और मृतकों के पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए शीघ्र भारत भेजा जाए। अमेरिका ने ईरान पर नए सैन्य हमले किए हैं। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य बंद करने की घोषणा की है और क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने कहा कि अमेरिका ने आत्मरक्षा में लगातार दूसरे दिन हमले किए। इनमें ईरान की वायु रक्षा प्रणालियों, रडार और संचार ढांचों को निशाना बनाया गया। हमारे संवाददाता ने बताया कि ईरान के मीडिया ने बंदर अब्बास, केशम द्वीप, मीनाब और सिरिक सहित कई स्थानों पर विस्फोट की सूचना दी है।
3: मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन अब ईरान की बॉर्डर से बाहर भी फैल चुका है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने क्लेम किया है कि उन्होंने बहरीन, कुवैत और जोर्दा में यूएस मिलिट्री फैसिलिटीज पर मिसाइल और ड्रोन अटैक्स लॉन्च किए हैं। ये लेटेस्ट अमेरिकन स्ट्राइक्स के रेस्पॉन्स में किया गया रिटेलिएशन है। ईरानियन स्टेट मीडिया के मुताबिक जोर्दान के मुवाफक साल्टी एयरबेस पर 12 बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर किए गए और तेहरान का कहना है कि इससे मिलिट्री फैसिलिटीज और एयरक्राफ्ट शेल्टर्स को नुकसान पहुंचा है। लेकिन जोर्दान या यूनाइटेड स्टेट्स ने क्लेम्स की अभी तक कंफर्मेशन नहीं दी है। कुवैत ने टेम्पररी तौर पर एयर ट्रैफिक सस्पेंड कर दिया। बहरीन से आए रिपोर्ट के मुताबिक इंटरसेप्शन के बाद डॉन डेब्री रेसिडेंशियल एरियाज में गिर गया, जिसे माइनर डैमेज और चोट लगने की रिपोर्ट्स हैं। मल्टीपल कंट्रीज में मिलिट्री एक्टिविटी रिपोर्ट होने और की शिपिंग लाइन्स पर प्रेशर बढ़ने के साथ ये फियर्स और बढ़ रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट एक और ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल और डेंजरस फेज में एंटर कर सकता है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दुबई।

0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल एक्स @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चिकबराइक ने राज्यसभा के सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना त्यागपत्र राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन को भेज दिया है। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस के नेता और राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर राय और सुष्मिता देव ने राज्यसभा पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों और वित्तीय बुनियादी ढांचे पर बढ़ते खतरे को लेकर चेतावनी जारी की है। एक रिपोर्ट।
1: गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र द्वारा जारी चेतावनी के अनुसार साइबर अपराधी वित्तीय और व्यक्तिगत धोखाधड़ी के लिए AI द्वारा डीप फेक वीडियो का तेजी से दुरुपयोग कर रहे हैं। आमतौर पर साइबर अपराधी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जॉब पोर्टल, डेटिंग प्लेटफॉर्म या फोन कॉल के माध्यम से संपर्क करते हैं। सरकार ने फिनटेक कंपनियों सहित वित्तीय संस्थानों को डीप फेक का पता लगाने के तंत्र को मजबूत करने और ग्राहक ऑनबोर्डिंग प्रणालियों को बेहतर बनाने की सलाह दी है। को सलाह दी गई है कि वे अपने बायोमेट्रिक डेटा को सुरक्षित रखें, संदिग्ध लॉगिन प्रयासों के प्रति सतर्क रहें और वित्तीय गतिविधियों से संबंधित ईमेल या SMS सूचनाओं की नियमित रूप से निगरानी करें। यह भी आग्रह किया गया है कि वे किसी भी संदिग्ध वित्तीय लेनदेन की सूचना राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल के माध्यम से तुरंत दें। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: सरकार ने स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान सीमा के पास भारतीय वायुसेना का विमान दुर्घटनाग्रस्त होने का दावा करने वाला वीडियो पूरी तरह से भ्रामक है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि यह दावा फर्जी है और वीडियो को पाकिस्तानी दुष्प्रचार खातों द्वारा प्रसारित किया जा रहा है। जांच इकाई ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे सीमा पार से चलाए जा रहे दुष्प्रचार अभियानों से सावधान रहें। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से मेक्सिको सिटी में रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में आयोजित किया जाएगा। उद्घाटन मैच में आज ग्रुप ए में मेजबान मेक्सिको का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। भारतीय समयानुसार ये मैच रात 12:30 बजे से शुरू होगा।
2: फीफा विश्व कप का ये अब तक का सबसे बड़ा संस्करण है। इसमें पहली बार 48 टीम भाग ले रही हैं। पहले के संस्करणों में 32 टीम शामिल होती थी। मेजबान देश अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको को विश्व कप में सीधे प्रवेश मिला है। ये विश्व कप इतिहास के सबसे चुनौतीपूर्ण विश्व कप में से एक होने की भी संभावना है, जिसमें टीमों को तीन देशों में कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, जिनमें लंबी यात्राएं, बदलती जलवायु और बदलते समय क्षेत्र शामिल हैं। विश्व कप के इतिहास में अब तक ब्राजील, इटली, जर्मनी, स्पेन, अर्जेंटीना, इंग्लैंड, फ्रांस और उरुग्वे ने फीफा ट्रॉफी जीती है। अन्य 45 टीमों ने 2 वर्ष लंबे क्वालिफाइंग अभियान के जरिए अपनी जगह बनाई है। टूर्नामेंट में 12 ग्रुप हैं। प्रत्येक ग्रुप में 4-4 टीमें शामिल हैं। हर ग्रुप की शीर्ष 2 टीम सीधे नॉकआउट चरण में प्रवेश करेगी। प्रतियोगिता में कुल 104 मुकाबले खेले जाएंगे। इसमें 72 ग्रुप स्टेज और 32 नॉकआउट मुकाबले शामिल होंगे। फाइनल 19 जुलाई को खेला जाएगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: मौसम विभाग ने शनिवार तक देश के उत्तर पश्चिमी भाग में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आज और कल तेज हवाओं के साथ गरज और ओलावृष्टि की संभावना है। अगले 5 से 7 दिन तक उत्तर पूर्वी भारत और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र में तेज बारिश होने की आशंका है, जबकि केरलम, कर्नाटक और तमिलनाडु में भी तेज बारिश हो सकती है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में दिन के दौरान गरज के साथ आंधी और ओलावृष्टि की संभावना है। 13 तारीख तक देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है। इस बीच दिन के दौरान पश्चिमी राजस्थान में लू की स्थिति बनी रहेगी। घरेलू शेयर बाजारों में आज मामूली बढ़त दर्ज की गई। ताजा जानकारी मिलने तक सेंसेक्स 116 अंक बढ़कर 74,099 और निफ्टी 18 अंकों के उछाल के साथ 23,233 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, केंद्र और राज्य सरकारों के सामूहिक प्रयास विकसित भारत के दृष्टिकोण की भावना को साकार करने में महत्वपूर्ण। उन्होंने आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासित परिषद बैठक की अध्यक्षता की। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों में आकाशवाणी और दूरदर्शन की पहुंच मजबूत करने के प्रयास कर रही है। राजस्थान के जैसलमेर में 20 किलोवाट के FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया। सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ किया। और फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आज रात

0: मेक्सिको सिटी में शुभारंभ। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलोहर्ट्स और एफएम के 110.1 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो घड़ी में दोपहर बाद के 2:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से। कार्यक्रम के आरंभ में हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म आरजू का गीत। आवाज़ है लता मंगेशकर की।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: आंखें फिल्म का गीत सुनिए लता मंगेशकर से।

0: का देवी का नाम सुना है तुमने? तिलका मांझी का नाम सुना है?
1: तिलका मांझी तो बहुत।
0: बख्शी जगबंधु का नाम सुना है?
2: बख्शी जगबंधु तो
1: हमने तो सुना है, लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो फिगर नॉट।
3: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियाँ दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे क्रिश ट्रिश और बाल्टी बॉय।
4: हीर रांझा फिल्म का गीत सुनिए लता मंगेशकर से।

आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से। हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलोहर्ट्ज़ पर इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर बाद के 3:01 हुए हैं। नीचे सुनिए सुगम संगीत का कार्यक्रम तरंग। आज के हमारे कलाकार हैं जगजीत सिंह। आइए आरंभ में उनसे सुनते हैं ये नदीम परमार का कलाम।

आप सुन रहे थे सुगम संगीत का कार्यक्रम तरंग। आज के हमारे कलाकार थे जगजीत सिंह। हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलोहर्ट्ज़ पर। लीजिए सुनिए देशभक्ति गीत।

0: आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलोहर्ट्स और एफएम के 110.1 मेगाहर्ट्स पर। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर बाद के 3:25 हो चुके हैं। अब से लेकर शाम 5 बजे तक आप सुनेंगे विविध भारती की राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। इसके लिए आइए शामिल होते हैं विविध भारती की राष्ट्रीय प्रसारण सेवा में।
1: नींव है इसे भी वो रखते हैं और बहुत सारी जगहों पर बच्चों के लिए स्वतंत्र और अनौपचारिक खेल के जो अवसर हैं वो कम हो रहे हैं क्योंकि सार्वजनिक स्थान है वो कम है। अगर कहीं है तो वो सुरक्षित नहीं है। हर बार बच्चे के साथ कोई जाएगी जरूरी नहीं हो पाता, तो माँ बाप भी ये चाहते हैं कि बच्चा घर पर ही खेले। तो ये सुरक्षा भी अगर बच्चों के लिए दी जाए, एक सिक्योरिटी गार्ड हर बगीचे में वहां होना चाहिए जो बच्चों की सुरक्षा का ध्यान रखे। माता पिता में से कोई एक सदस्य तो जाता ही है लेकिन फिर भी वो सुरक्षित हो, इन चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी
2: है। और बच्चे सीखते हैं कि किस तरह हमें साथ मिलके काम करना है, साथ मिलके खेलना है, टीम वर्क क्या होता है, ये सब चीजें खेल के जरिए ही आती हैं। जब वो साथ मिलके खेलते हैं और बच्चों के साथ में खेलते हैं, उनसे सीखते हैं, शेयर करना सीखते हैं, है ना, ध्यान रखना सीखते हैं। बहुत
1: अभी जैसे बारिश का जब मौसम आएगा पेड़ों पर झूले पड़ेंगे तो सब बच्चे एक साथ मिलकर हैं, जो बहुत छोटे बच्चे हैं अपने आप लंबी पेंग नहीं ले पाते हैं झूले की, तो जो बड़े बच्चे हैं उनको थोड़ा सिखाते हैं झूला कैसे जाता है, उनके साथ बैठकर उनके साथ खड़े होकर, तो झूलना भी एक खेल हो गया। तो इस तरह से आप साथ लेकर कैसे चलेंगे ये भावना विकसित होती है।
2: बिल्कुल। और एक श्रोता जो लिखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस पर यही कहना चाहता हूं कि मनुष्य के जीवन में खेल का बहुत बड़ा महत्व है। खेल से मनुष्य का शारीरिक और मानसिक विकास होता है। जब हम खेलते हैं तो सोशल मीडिया से हमारी दूरी बनी रहती है और स्वास्थ्य के लिए हमारे लिए बहुत लाभदायक होता है।
1: और जब बात खेलने की आती है तो हमें किसी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस का इंतजार ही क्यों करना है।
2: बिल्कुल।
1: हम जो भी हमारे मस्ती भरे पल हैं उन अवसरों की तलाश करें और हल्की फुल्की जो गतिविधियां होती हैं हमारी हम उन्हें भी खेल में बदल सकते हैं।
2: और हमें रोज ही कम से कम इतना समय निकालना चाहिए और बच्चों के लिए भी इतना समय निकालना चाहिए कि उनके साथ हम खेल सकें, ना कि हम मोबाइल पे या उनके साथ में कुछ इस तरह से डिस्कस कर रहे हैं बैठे हुए मोबाइल पे देख रहे हैं या हम टीवी में लगे हुए हैं या मूवी देख रहे हैं, ये सब चीजें चलती रहती हैं। लेकिन एक इतना समय जरूर होना चाहिए हर दिन कि बच्चों के साथ बाहर खेला जाए। जो बाहर आप खेलते हैं ना उससे वो पूरी तरह से एक्टिव होते हैं, उनका पूरा शरीर एक्टिव होता है, तो वो उससे उनके उनका विकास होता है, उनका दिमागी विकास बहुत अच्छा होता है, शारीरिक विकास बहुत अच्छा होता है।
1: बिल्कुल। जब बच्चों को धूप में जाने से रोकना है, बारिश में भीगने से रोकना है, ऐसा कोई मौसम की अगर समस्या है जब बच्चे बाहर नहीं जा सकते हैं, उस वक्त आप उन्हें चाहे कार्टून देखने में व्यस्त करिए या घर में कोई इंडोर गेम खिलवा सकते हैं, लेकिन ज्यादातर जो बच्चों के विकास की हम बात कर रहे हैं वो बाहर खेलने से ही होता।
2: बिल्कुल। और थोड़ा बहुत भीग जाना भी जरूरी है कभी कभी।
1: भाई बारिश में नाव चलाना एक बड़ा अच्छा खेल होता है।
2: बिल्कुल।
1: तो चल रही गाना सुने।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। इस समय कार्यक्रम चल रहा है सखी सहेली। मैं हूं आपके साथ चंचल वर्मा
1: और मैं आरती श्रीवास्तव।
0: और देखिए, हम बात कर रहे थे बच्चों के खेल की। बच्चे खेलकर कितने खुश हो जाते हैं और बच्चे कोई दिखावा भी नहीं करते।
1: नहीं,
0: अगर वो खुश हैं तो खुशी दिखाई देगी, अगर वो किसी से नाराज हैं, गुस्सा है, तो वो गुस्सा भी अपना साफ दिखा देते हैं। लेकिन ये चीजें हम बड़ों में बहुत ज्यादा होती हैं आरती, कि खुश हैं या नहीं, कई बार सिर्फ दूसरे को हमारी तकलीफ का अंदाजा ना हो इसलिए हम खुश रहने का दिखावा भी करते हैं।
1: बिल्कुल, अक्सर ही होता है ऐसा कि दिखावा ज्यादा होता है, खुशी उतनी नहीं होती है।
0: खास तौर पर जब सोशल मीडिया की बात आती है तब ये दिखावा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और आज का दौर ऐसा है जहां बहुत से लोग वास्तव में खुश रहने से ज्यादा खुश दिखाने पर ध्यान देने लगे हैं। सोशल मीडिया पर जो मुस्कुराती तस्वीरें होती हैं, शानदार यात्राएं, महंगे सामान, चमकदार जीवन शैली को देखकर कई बार हमें भी ऐसा लगता है कि भाई ये जो सामने वाला है ना, ये सबसे ज्यादा खुश व्यक्ति यही है और हमारे जीवन में कोई खुशी पता नहीं है भी कि नहीं। लेकिन अक्सर इन तस्वीरों के पीछे की जो सच्चाई है
1: उसको खुश देखकर हम लोग साथ में आ जाते हैं कि वो इतना खुश है हमसे, कहते हैं ना कि हमारे मतलब तुम्हारे उसके कपड़े हमारे कपड़े सफेद कैसे हो सकते हैं, तो वही चीज है, वो हमसे ज्यादा खुश कैसे हो सकता है।
0: हाँ, तो उन तस्वीरों के पीछे की जो सच्चाई है इसके बारे में हम नहीं जानते हैं ना, इसलिए ऐसा होता है। और जब जीवन का उद्देश्य दूसरों को प्रभावित करना बन जाता है तब व्यक्ति अपनी वास्तविक भावनाओं से थोड़ा दूर होने लग जाता है।
1: बिल्कुल, और हर कोई ये सोचने लगता है कि लोग उसके बारे में सोचेंगे क्या, बजाय इसके कि उसे वास्तव में क्या अच्छा लगता है, कि उसे मुझे पसंद किया है, वो क्या करता है, वो ये करने लगा लगता है कि वो दूसरे क्या पसंद करेंगे, मुझे उस तरीके से अपने आप को तैयार करना है। तो परिणाम क्या होता है उसका, तुलना और तनाव, तुलना से क्या होता है, तनाव और असंतोष, क्योंकि उसको कभी भी सेटिस्फेक्शन होता ही नहीं है कि मैं सही लग रहा हूं या मैं सही हूं, वो सिर्फ दूसरों की नजर से खुद को देखने लगता है।
0: बिल्कुल, इसीलिए अगर सच्ची खुशी आप चाहते हैं अपने जीवन में तो क्या करना है, जो लाइक्स और फॉलोअर्स हैं ये दिखावे से नहीं आती। आजकल इसी के पीछे बस सब भाग रहे हैं कि अगर हमने कोई पोस्ट डाली है, कोई पिक्चर है, कोई वीडियो है जिसमें हम नजर आ रहे होते हैं, तो वहां हमें बहुत सारे लाइक मिले।
1: बस आप क्या करते हैं ना, थोड़ी थोड़ी देर में देखते रहते हैं कितने लाइक्स हो गए,
0: वो लाइक कमेंट बढ़ गए,
1: वो उसी में लगे रहते हैं।
0: और बस इसी से हम है ना, तो ये अच्छे रिश्ते और आत्मसंतोष, स्वस्थ जीवन शैली और अपने काम में आनंद खोजने से मिलती है, इन चीजों से नहीं मिलती। ये चीज हमें समझनी है आरती। और व्यक्ति खुद से संतुष्ट होता है, अपनी खुशी का प्रमाण दुनिया को दिखाने की हमें जरूरत ही नहीं। क्यों हम सबूत दिखाएं कि हम खुश हैं, इस बात की हमें दिखावा करना ही क्यों है। बल्कि हमें ये समझना है कि कोई जीवन में प्रदर्शन नहीं चाहिए, बस जो वो अंदर हमारी खुशी है वो सबसे जरूरी है।
1: बिल्कुल, और सच्ची खुशी किसी भी दिखावे की तो मोहताज होती नहीं है कि हमें दिखाना पड़े कि हम खुश हैं कि नहीं खुश हैं, कि कब हम हंस रहे हैं, कब हम रो रहे हैं, एक एक चीज को उस पर डालने की जरूरत भी नहीं है। तो वो चीजें होती हैं जो खुशी होती है ना, वो होती है छोटे छोटे पलों में। हम बहुत बड़े पलों का इंतजार करते रहते ना कि चलो ये त्योहार आएगा तो हम बहुत खुशी से ये पहनेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो अभी क्यों नहीं खुश हो जाते।
0: बिल्कुल,
1: हर जो खुशी छोटे छोटे पलों में मिलती है ना, वो खो जाती है उसे इंतजार में कि बहुत बड़ा पल हमारे पास में आए।
0: और जो लोग खुशियों के लिए बहाने ढूंढते हैं ना, इस तरह से उनकी खुशियां जिंदगी में पूरी कभी नहीं होती। ये मिलेगा तब खुश होंगे, उससे मिलेंगे तब खुश, यहां जाएंगे तब खुश होंगे, ये आएगा तब खुश होंगे, ये तो सिर्फ एक बहाने हैं। लेकिन वो खुशी छोटे छोटे पलों में, जैसा आप बता रहे हैं,
1: जीवन है, कोई ऐसा मंच नहीं है कि हमें दूसरों को प्रभावित करना है, बस कि वो हमसे प्रभावित हो जाए, वो हो जाए। भाई हमें अपने लिए जीना है ना, हमें दूसरे के लिए इतनी दूसरे की नजर से नहीं जीना, हमें अपनी नजर से जीना है कि हम कब संतुष्ट हैं, हमें कब अच्छा लग रहा है, वो देखना है।
0: तो देखो हमारे श्रोता क्या लिखते हैं कि खुश होना दिल की बात है और खुशी दिखाना चेहरे की आदत है। दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि एक में हम

0: अपने लिए जीते हैं और दूसरे में दुनिया के लिए जीते हैं। जब हम असल खुशी में होते हैं तब मन को एक सुकून और संतुष्टि होती है, लेकिन जब खुश होने का हम दिखावा करते हैं तो चेहरा तो मुस्कुराता है पर कंधे थके हुए होते हैं। दिन भर लोगों को दिखाते हैं कि सब ठीक है पर रात को हम तकिया भी खोते हैं। कभी कभी गिरकर संभलने में थोड़ा दिखावा ही सहारा बनता है, पर दिखावा ही अगर जिंदगी बन जाए तो अंदर का जो बच्चा है वो मर जाता है जो सच में हंसता था। लेकिन दिखावा वहीं तक सही है जहां तक खुद से झूठ ना बोलना पड़े। ये इतना प्यारा संदेश है और हम श्रोता ने जिसने भी लिखकर भेजा है उसे बहुत धन्यवाद देते हैं।
1: बिल्कुल। और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि खुश रहना या दिखावा करना, सच बताऊं तो जब हम खुश होते हैं तो हमारे हाव भाव हमें बता देते हैं कि आज हम बहुत खुश हैं, और अगर हम परेशान होते हैं तो हम कितना भी खुश रहने की कोशिश करें वो दिख ही जाता है। ऐसा ही कुछ हम सबके साथ में होता है, क्योंकि समाज में रहने के लिए हम सभी को कभी ना कभी दिखावा करना ही पड़ता है, क्या करें। लेकिन अक्सर लोगों की आदत होती है कि कुछ ज्यादा ही दिखावा करते हैं खुश रहने का, लेकिन मुझसे ये सब नहीं होता। खुश रहने का एक उपाय है, वो बताते हैं वो, कि सबकी करो और मतलब सुनो सबकी, करो अपने मन की, क्योंकि मन से किए गए काम खुश करते हैं।
0: तो चलिए अभी हमें खुश करेगा और हमारे सभी सुनने वालों को खुश करेगा ये प्यारा सा गाना।

0: बहुत मीठा बहुत सुरीला गीत हमने सुना और इसके बाद हम लौटते हैं अपने विषय पर। हम बात कर रहे थे खुश रहना और खुशी का दिखावा करना। जी
1: बिल्कुल। और वैसे भी चंचल अपनी खुशियों को महसूस करना, उन्हें जीना और उनके लिए आभारी होना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बजाय इसके कि हम उन्हें केवल प्रदर्शित करते रहें, क्योंकि खुश रहने और खुश दिखने में बहुत अंतर होता है। खुश दिखने के लिए मुखौटा लगा सकते हैं, लेकिन खुश रहने के लिए हमें मन का संतुलन बहुत जरूरी होता है और हमारे अंदर संतोष होना चाहिए, जैसे कि हाँ हमें जो भी चीज है हम खुश है इसमें, वो चीज होनी चाहिए।
0: और कई बार ऐसा होता है ना कि कोई सामने वाला व्यक्ति है वो बात बात पर आपको उकसाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप अपने अंदर की अच्छाई को और खुशी को आप ज्यादा उजागर करके लेकर आइए, अपने सकारात्मक भाव को लेकर आइए, तो सामने वाले के जो भी नकारात्मक भावनाएं हैं वो आपको कभी प्रभावित नहीं करेंगे।
1: बिल्कुल।
0: और देखिए अब मैं एक अच्छा सा संदेश पढ़कर आपको सुनाती हूँ। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में खुश रहना या खुशी का दिखावा करना दोनों पहलू शामिल हो चुके हैं। सोशल मीडिया के इस दौर में लोग अक्सर अपनी परफेक्ट तस्वीरों को और स्टेटस के जरिए अपनी खुशियों का दिखावा करने में बहुत ज्यादा लगे हुए हैं, जबकि असल जिंदगी उनकी कुछ और ही होती है। जो अलग अलग सोशल मीडिया की साइट्स हैं वहां पर अपने स्टेटस, अपना घर, अपने कपड़े, आउटिंग की फोटो डालकर बस लोगों को दिखाना चाहते हैं कि वो कितने खुश हैं और कितने कामयाब हैं, और इस बेहतरीन दिखने की वहां पर होड़ सी मची हुई है। खुशी मांगे जो हो और मांगे सामानों से महंगे पलों में नहीं, बल्कि अपनों के साथ बिताए गए समय में होती है, शांति में होती है, छोटी छोटी सफलताओं का जश्न मनाने में छिपी होती है। बहुत सही बात लिखी है।
1: बहुत सही बात। और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि खुश रहना और खुश रहने का दिखावा करने में जमीन आसमान का अंतर होता है। असल में खुशी आंतरिक शांति और संतुष्टि से आती है, जबकि जो दिखावा होता है वो सिर्फ एक मुखौटे की तरह होता है, जिसमें सामने वाले को प्रभावित करते हुए अपनी वास्तविक भावनाओं को छिपाना होता है और कुछ नहीं। क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे। कुछ लाइन्स उन्होंने भेजी है गाने की,
0: और इस गाने के माध्यम से इस बात को बहुत सटीक तरीके से समझा जा सकता है।
1: बिल्कुल।
0: एक आगे के संदेश में हमारे श्रोता का कहना है कि आज के समय में लोग अपनी खुशी से ज्यादा उसकी नुमाइश करने में व्यस्त दिखाई देते हैं। सोशल मीडिया पर जो प्रदर्शन है उसके बारे में इन्होंने भी लिखा है, और आगे लिखते हैं कि दिखावा कुछ समय के लिए ही प्रभावित कर सकता है, लेकिन मन का संतोष, मन की शांति कभी नहीं दे सकता। रिश्तों में अपनापन, जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अगर है तो चेहरे पर मुस्कान खुली रहती है और यही सच्ची खुशी है।
1: बिल्कुल। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि जीवन का उद्देश्य खुश दिखना नहीं है बल्कि खुश होना चाहिए, क्योंकि दिखावा कुछ समय के लिए लोगों को प्रभावित कर सकता है, लेकिन वास्तविक खुशी मन को संतोष और जीवन को अर्थ देती है। जब इंसान अपने भीतर की सच्चाई के साथ जीना सीख जाता है तब उसे खुशी का प्रदर्शन नहीं करना पड़ता, उसका जीवन ही खुशी का प्रमाण बन जाता है। बहुत सही बात कही उन्होंने।
0: एक छोटा सा बड़ा प्यारा सा संदेश है कि जीवन में दिखावे की अहमियत इतनी बढ़ गई है कि खुश दिखना अब खुश रहने से ज्यादा आवश्यक हो गया है। जहां वास्तविक खुशी मन की शांति और संतुष्टि देती है, वहीं दिखावा ऊर्जा को खत्म करता है और मानसिक तनाव का कारण बनता है।
1: बिल्कुल
0: सही बात है।
1: बिल्कुल। एक श्रोता लिखते हैं कि खुश रहना और खुश दिखना ये दो अलग यात्राएं हैं। खुश रहना भीतर का अनुभव है, ये सस्ता है क्योंकि इसका लेन देन बाहर की दुनिया से नहीं भीतर से होता है, लेकिन खुश दिखना दिखावे की दुनिया का खेल है। ये सब महंगा है, जेब से, दिल से, शांति से भी। असल में कठिनाई खुश रहने की नहीं, खुश दिखने की मजबूरी छोड़ने में है। सुख हमेशा भीतर से शुरू होता है, बाहरी चमक सिर्फ एक नकली रोशनी है। बहुत बहुत गहरी बात कही है इन्होंने।
0: और भी संदेश है।
1: तो एक और जो मैच होता है जो कहते हैं कि

0: भाई दुनिया तो दिखावटी तो है ही, अपितु उसके पोषक भी है। फिर खुश रहना चाहते तो सभी हैं, क्योंकि वो आनंद के सच्चित स्वरूपांश हैं, किंतु खुद में खुश रहना एक कला है, और खुशी का दिखावा करते रहने वालों में अक्सर इसका अभाव ही देखा जाता है, क्योंकि वस्तुतः वो खुशी प्राप्त करने की कला को अपने दिखावेपन के माध्यम से सीख रहे होते हैं।
1: ऐसी बहुत से मिलती जुलती बातें हमारे सभी श्रोताओं ने लिखी है, कुछ संदेश जिन्हें हम शामिल नहीं कर पाए हैं उनसे क्षमा चाहते हैं, और सुनते हैं ये वाला गीत।

0: आरती, हम बात कर रहे थे ना खुशी रहने की, खुश रहने के बारे में और उसका दिखावा करने के बारे में। एक बड़ा अच्छा संदेश हमें मिला है, खुश रहना दिल की बात है और खुश दिखाना दुनिया को। जो सच में खुश होता है उसे मुस्कुराने की वजह ढूंढनी नहीं पड़ती, उसकी मुस्कान अपने आप ही चेहरे पर आ जाती है। दिखावे की खुशी कुछ पल चमकती है, लेकिन सच्ची खुशी मन को लंबे समय तक रोशन रखती है। इसीलिए खुश दिखने से ज्यादा खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। एक और छोटी सी बात ये आगे लिखते हैं, जिंदगी में सबसे सुंदर बात ये नहीं कि लोग हमें खुश समझें, बल्कि ये है कि हमारा मन सचमुच खुश हो।
1: बहुत अच्छी बात लिखी इन्होंने। और इसी साथ एक और हमारे श्रोता है, वो लिखते हैं कि जीवन में जब भी मौका मिले खुशी रहना चाहिए। खुश रहने का दिखावा करने से हम आंतरिक रूप से खुश नहीं रह सकते। दूसरों को खुशी दिखाकर हमें कुछ भी हासिल नहीं होता। और मुझे विश्वास है कि विविध भारती मुंबई की श्रोता, जिसे मैं स्वयं भी हूं, अगर कभी किसी कारण से दुखी भी हूं, तो आप सभी शक्की शानदार जो सदाबहार प्रस्तुति होती है और लाजवाब गीत होते हैं, उनको सुनकर हमारे श्रोता, हम सभी श्रोताओं के चेहरों पर सच्ची खुशी झलकती है, तो दिखावा करने का कोई सवाल ही नहीं उठता।
0: बिल्कुल सही बात है। और अगर आपको विविध भारती सुनकर खुशी मिलती है, तो इसके गाने भी आपको पसंद आते होंगे। और जब बात सुनने की आ रही है, तो भाई कानों का ध्यान रखना बड़ा जरूरी है,
1: बहुत जरूरी है।
0: और इसी बारे में हम बात करने वाले हैं। कान हमारे शरीर का एक सबसे महत्वपूर्ण अंग कहा जा सकता है, और ना केवल सुनने में मदद करता है आरती, बल्कि शरीर का संतुलन बनाए रखने में भी अपनी जो महत्वपूर्ण भूमिका है उसे निभाता है। इसीलिए कानों की देखभाल बहुत जरूरी है,
1: बहुत जरूरी है। और कानों में इसलिए क्या करना है, हमें कभी भी कोई नुकीली चीज या माचिस की तीली, जैसे अक्सर हम ना कुछ नहीं तो अरे कान में कुछ ली हो रही थी, बस माचिस की तीली लेके करने लगे, तो वो बहुत खतरनाक।
0: और महिलाएं हेयर पिन घुमाती
1: हैं, हेयर पिन, चाबी ले लेता कोई, कोई तो चाबी से करने लगता है, कोई कॉटन बड्स जो होते हैं वो भी, लेकिन क्योंकि वो बहुत पुराने भी कभी कभी बने हुए होते हैं, तो हो सकता है उसमें फंगस हो या कुछ हो, तो कभी इस तरीके की चीजों को यूज नहीं करना चाहिए, प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनका जो अधिक उपयोग है वो कानों को नुकसान पहुंचा सकता है। और लंबे समय तक हमें तेज संगीत भी नहीं सुनना चाहिए, और जो शोरगुल का वातावरण रहता है ना, बहुत समय तक ऐसे उसमें भी नहीं रहना चाहिए कि बहुत तेज आवाज आ रही हो जहाँ पे, उसमें भी रहने से, क्योंकि एक वो एक अलग फ्रीक्वेंसी पे रहता है ना जो हमारे कानों की होती है, वो एक लिमिटेड होती है, उससे ज्यादा हम अगर शोर में रहेंगे तो वो हमारे कानों को नुकसान पहुंचाएगा।
0: देखो जिस तरह से आंखों में जब गंदगी आती है, कोई कचरा जाता है, तो आंखों में जो नमी है वो अपने आप आंख उसे निकालकर कुछ देर बाद बाहर फेंकती है, और हम बस हल्के से इशारे से उस गए हुए तिनके को बाहर निकाल सकते हैं। इसी तरह कान में जो एक वैक्स बनता है, जो मोम जैसा होता है, वो अपने आप धीरे धीरे स्वतः ही साफ होते रहता है। कई बार उसे जबरदस्ती निकलवाने की कोशिश में हम कान की सफाई करवाने कहीं कहीं चले जाते हैं, बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे औजार बना लेते हैं। तो अगर आपको कभी लगे कुछ खुजली आ रही है, तो जो सॉफ्ट वाले ईयरबड होते हैं आप उनका इस्तेमाल करें, जो चाबी नुकीली चीजें, हेयर पिन, इनका तो कभी ना करें।
1: आप इसको बहुत हल्के हल्के हाथों से ही करें, बल्कि अपने आप जितना आपका ये कहते हैं ना, जितनी आपकी उंगली जो आपके हो सके जा सके उस हिसाब से आप करिए, वो सब चीजें प्रयोग मत करिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना, ये पुराने जो होते हैं वो बर्ड्स, उसमें वो फंगस भी होती है, तो वो अंदर जाके नुकसान पहुंचाता है, इसलिए ये सब चीजें आप ना प्रयोग करें तो ज्यादा अच्छा है। और दूसरी चीज ये है कि अपने कानों का बहुत ध्यान रखिए, और जो ईयरफोन वगैरह रहता है ना, उसका बहुत कम से कम इस्तेमाल करिए, क्योंकि ना आजकल लोगों को बहुत समस्या हो रही है, कि बहुत सारे लोग ये समस्या बताते हैं कि कानों में तेज आवाज सुनाई दे रही है, मतलब हर समय 24 घंटे एक आवाज सी आती रहती है, तो बहुत परेशानी इसलिए हो रही है क्योंकि अब आजकल लोग ये ईयरफोन का बहुत इस्तेमाल करने लगे हैं, तो अब बहुत ज्यादा घंटों आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो वो आपको कानों को नुकसान तो पहुंचाएगा ही,
0: क्योंकि जब इस चीज का प्रचार हो रहा था कि घंटों कान पर मोबाइल लगा के रखने से, बात करने से मोबाइल के जो गर्म होता है वो हीट हमें नुकसान करती है, तो भाई घंटों अगर आपको कान पर फोन नहीं लगाना है, तो बहुत देर तक अगर आप ईयरफोन लगाकर बात करेंगे या गाने सुनेंगे बहुत तेज आवाज में, तो इससे कानों को नुकसान तो होगा ही। एक और नुकसान, अगर आप सड़क पर चलते समय ईयरफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो पीछे से आने वाले वाहन की आवाज या अन्य कोई आपको आवाज भी दे रहा है, तो आपका जरूरी काम छूट सकता है, दुर्घटना कोई भी हो सकती है, तो ईयरफोन का इस्तेमाल कम से कम करना है।
1: सबसे बड़ी चीज है, आप अगर आपको सुन ही रहे हैं, उसको बहुत जरूरी है आपको कान में लगाना, तो आप 50 उसको कम से कम 50 पे रखिए, 50 से ऊपर मत करिए, बहुत ज्यादा फुल साउंड में मत सुनिए उस चीज को, कि आपको बाकी आवाजें ना आए। और दूसरी चीज, अपने एक कान में ही लगाइए, अगर आप बाहर जा रहे हैं उसको लगाएं, एक कान में लगाइए, आप ये करिए ना, एक कान में लगा लिया, थोड़ी देर बाद आपने दूसरे कान में लगाया, इससे क्या होता है ना, कान आपका ऐसे पर्दे पे उस पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, वो खराब नहीं होगा। और साथ ही अगर आपकी बहुत ज्यादा खुजली हो रही है या दर्द हो रहा है, तो आप डॉक्टर के पास जाइए, रहे कृपया करके, अपने आप कोई दवाई मत करिए। कई लोग होते ना कि कुछ हम ये चलो ये डाल लें, ये वाला तेल डाल लें या इस तरह से डाल लें, तो वो चीज आप अपना स्वयं का इलाज मत करिए। आप विशेषज्ञ से के पास जाइए, उनसे दवा लीजिए, उन्हें बताइए जो भी चीजें, तो वो उसका पूरा एग्जामिन कर अच्छे से उसकी जांच करेंगे, उसके बाद आपको दवाई देंगे। और मतलब कानों की जो नियमित जांच होती है वो भी जरूर करवाइए।
0: हमारे श्रोता ने लिखा है कि नहाने के बाद कान सुखाएं, साफ तौलिए से कोने का प्रयोग करते हुए इसे सफाई करें और स्विमिंग प्लग का उपयोग करें। इसके बारे में मेरी जानकारी कम है आरती। आगे लिखते हैं कि तैरते समय पानी को अंदर जाने से रोकें, गलत घरेलू नुस्खे कभी ना आजमाएं, डॉक्टरी सलाह के बिना कान में तेल या कोई अन्य चीज ना डालें, पानी को झुकाकर अगर चला गया है तो उसे बाहर निकाल दें, और कान में पानी जाने पर एक तरफ झुकाकर ही इसको निकाला जा सकता है। ये बहुत अच्छी जानकारी है। और अब हम सुनते हैं कार्यक्रम का आखिरी गीत।

0: से तो प्यार।
1: आरती कार्यक्रम का समय हो चला है पूरा, लेते हैं इजाजत। चंचल वर्मा,
2: आरती श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
1: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक।

0: फरमाइश के सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हेलो फरमाइश के इस सफर में बहुत सारे श्रोताओं से हमारी बातचीत होती है और इस बातचीत से हम एक दूसरे को जान पाते हैं विचारों से और भावनाओं से। और हेलो फरमाइश एक ऐसा मंच है जहां पर हम एक दूसरे से जुड़ते हैं, अपना संदेश, अपनी भावनाएं प्रेषित करते हैं। तो आज भी ऐसा ही कुछ हुआ है, तो प्रस्तुत है आपके लिए आपका अपना कार्यक्रम हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती
1: जी, नमस्कार।
0: नमस्कार, नाम बताइए अपना।
1: मैं अभिजीत प्रयागराज से बात कर रहा हूँ। मैम, कैसी हैं आप?
0: मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताइए कैसे हैं?
1: बहुत अच्छे हैं, आपका कार्यक्रम सुनते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं विविध भारती के कार्यक्रम। और हम लोग दिन भर जितने कार्यक्रम आपके यहाँ से प्रसारित किए सारे कार्यक्रम से जुड़े रहते, बहुत अच्छा लगता है आपका कार्यक्रम, चाहे वो हेलो फरमाइश हो, हेलो सहेली हो, सखी सहेली का कार्यक्रम हो, गीत माला हो, गीतों भरी कहानी हो, छाया गीत हो, आज के फनकार, ये सारे कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं।
0: बिल्कुल। तो अभिजीत जी, हमें एक बात बताइए, हम थोड़ा सा आज बात करना चाहते हैं खेलों के बारे में। अपने बचपन की ओर लौटिए और बताइए बचपन में कौन सा खेल खेलते थे आप अपने दोस्तों के साथ?
1: सबसे ज्यादा हम लोग गेंदे जो मैच होते हैं वो ज्यादा खेलना पसंद करते थे। गेंदा जैसे बैट बल्ला है, वो हम लोग जब कभी भी स्कूल से आते थे वो अक्सर हम लोग खेल खेला करते थे, बहुत अच्छा लगता था वो खेल खेलने में, खेल बहुत अच्छा होता था उस टाइम का।
0: कभी बिल्कुल घर में बताते हो अपने बच्चों को या अपने घर में जो परिवार के अन्य सदस्य उनके बच्चे हैं, कभी बात होती है इस खेल के बारे में?
1: बिल्कुल होती है मैम। आज के समय में क्या हो गया है, लोग सबसे ज्यादा मोबाइल का जो इस्तेमाल करते हैं, ये तकनीक, इसी वजह से लोग कोई अभी तक कोई खेल ये जानते ही नहीं है आज के दिन। लेकिन हमारा तो यही कहना है सभी लोगों से कि मोबाइल से ज्यादा अगर कोई ऐसा खेल खेला जाए तो ज्यादा ही कुछ अच्छा होता है।
0: बिल्कुल। तो चलिए, आपसे अच्छी बातचीत हो गई है, अब बताइए कौन सा गीत सुनवाएं आपको?
1: चमत्कार फिल्म का नाम है और गाने का बोल है इस प्यार से मेरी तरफ ना देखो।
0: तो सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम।
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम सलाम।
1: मैं कश्मीर से बोल रहा हूँ मैडम
0: जी। नाम बताइए अपना।
1: जलाल अहमद
0: जी। कैसे हैं आप?
1: बस ठीक है, आप कैसे हो मैडम?
0: हम भी अच्छे हैं।
1: मुझे एक गाने की फरमाइश है आज।
0: बिल्कुल, हम आपको गाना सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले चंद बातें कीजिए हमारे साथ। कैसे हैं, क्या करते हैं आप कश्मीर में?
1: जी हम शॉल काम करते हैं।
0: किस तरह का? पश्मीना शॉल?
1: हाँ, पश्मीना हम बनाते हैं।
0: उसके बारे में बताइए थोड़ा हमको, क्या खासियत है पश्मीना शॉल की, लोग क्यों पसंद करते हैं शॉल को?
1: कश्मीरी शॉल तो बहुत पसंद है, बाहर स्टेट में भी वो जाते हैं, वहाँ भी पसंद करते हैं लोग, यहाँ भी। यहाँ तो बहुत इसके कारीगर है, हाथों से बनाते हैं हम, वो बहुत मेहनत उस पे लगते हैं, तो बहुत बढ़िया बनते हैं मैडम।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत सुंदर होते हैं और गर्म भी होते हैं, है ना
1: जी? इसका मुख्तलिफ साइज है।
0: चलिए बताइए हम आपको कौन सा गीत सुनवाएं?
1: फिल्म है साथी, उसका कुमार सानू गा रहे हैं, जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए।
0: बहुत गहरा गीत है ये तो, है ना?
1: हाँ हाँ, बहुत
0: बहुत सुंदर गाया है कुमार सानू ने, और बहुत ही सुंदर इसके जो शब्द हैं बहुत ही सुंदर है, गहरे शब्द हैं
1: जी। बिल्कुल बिल्कुल,
0: आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम
1: जी। नमस्कार मैम।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं, नाम बताइए अपना।
1: फैसल इमाम।
0: अच्छा, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: बिहार के अररिया डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ।
0: कैसे हैं फैजल साहब?
1: मैम

0: क्या हूँ मैं, आप कैसी हैं? ठीक है,
1: बिल्कुल ठीक है। क्या करते हैं आप?
0: मैम मैं यूडीसी पोस्ट पे हूँ, डिवीजन क्लर्क पे हूँ कॉलेज में।
1: तो नौकरी के साथ साथ विविध भारती को भी सुनना पसंद करते हैं?
0: बिल्कुल बिल्कुल, विविध भारती तो बचपन से, ये सौगात तो मेरी मम्मी से मिला, सुनते आ रहे थे और कई बार पहले भी बात हुई है विविध भारती में फरमाइश में।
1: अच्छा ये बताइए, आपने कहा कि बचपन से सुनते आ रहे हैं, तो बचपन में आप स्पोर्ट्स भी करते होंगे, खेलते होंगे बहुत सारे खेल?
0: जी जी बिल्कुल, क्रिकेट खेलना बहुत शौकीन है हमारा।
1: कैसे खेलते थे, कितने रन बनाए, बताइए अपने बारे में, क्रिकेट की दुनिया कैसी थी आपकी?
0: क्रिकेट की दुनिया बहुत अच्छी थी, हम तो ज्यादातर बैटिंग करते थे, बॉलिंग दोनों थे, बचपन में तो खैर बहुत कम ही खेल पाते हैं।
1: अब तो नहीं खेलना होता है ना?
0: अब खेलना होता है, सुबह सुबह फुटबॉल खेल लेते हैं।
1: अच्छा,
0: खेलने का मौका नहीं मिल पाता है।
1: अच्छा, तो किस खिलाड़ी से ज्यादा प्रभावित रहे आप क्रिकेट खेलते समय?
0: हमारे तो टारगेट खिलाड़ी रोहित शर्मा और सचिन तेंदुलकर रहे हैं।
1: अरे वाह क्या बात है, तो आपने अपनी बैटिंग में कितने रन बनाए होंगे ज्यादा से ज्यादा?
0: मैंने ज्यादा 70-80 बनाए हैं।
1: कभी सेंचुरी नहीं बना पाए?
0: बनाना था, वो तो खैर क्रिकेट हम लोग खेलते थे 10 ओवर 20 ओवर, तो ज्यादातर पता नहीं था हम लोग उस टाइम में। ये है कि फुटबॉल में बहुत गोल किया मैंने।
1: अच्छा अच्छा,
0: तो मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी फुटबॉल खेला।
1: बहुत अच्छी बात, बताइए क्या
0: खेलने की बहुत चाहत थी, फिर जिम्मेदारी हमारी गुजर गई, जिम्मेदारी घर पे आ गई तो सब चीज से छोड़ना पड़ा।
1: ये होता ही है जिंदगी में कि हम बहुत सारी चीजें करना चाहते हैं लेकिन घर की जिम्मेदारियां, पारिवारिक जिम्मेदारियां, सामाजिक जिम्मेदारियां कई बार हमको रोक देती हैं वो काम करने के लिए, और हम एक जिम्मेदार व्यक्ति बन जाते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: अच्छा बताइए, तो आप कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
0: आपकी सफाई फिल्म का गाना है, वादा कर ले साजना।
1: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
2: वादा

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
1: जी नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: जी मोहम्मद हारून बोल रहा हूँ, ग्राम अकबरपुर, तहसील सिरौंज, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश, MP से।
0: क्या बात है, आपका स्वागत है बहुत बहुत अरुण साहब।
1: जी और आप कैसी हो?
0: अच्छे हैं, आप बताइए कैसे हैं?
1: बस हम बहुत अच्छे हैं, मौसम अच्छा है, खुशनुमा है, बादल हो रहे हैं, थोड़ी सी हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी हो रही है, हवाएं भी चल रही है।
0: अच्छी कंपेयरिंग की आपने मौसम पर।
1: जी जी, और आपके इधर मौसम कैसा है?
0: हमारे इधर तो भी गर्मी है भाई, बहुत उमस है।
1: जी जी।
0: पसीना आता है।
1: जी।
0: परेशान हो जाते हैं, बस बारिश का इंतजार है।
1: जी जी,
0: बताइए अरुण साहब अपने बारे में बताइए, क्या करते हैं आप?
1: खेती बाड़ी करते हैं, रेडियो का भी शौक करते हैं, क्रिकेट का भी शौक है, कबड्डी का भी शौक है, हर चीज का शौक है।
0: क्या बात है, क्या बात है, आज तो हम खेल के बारे में ही बातें कर रहे थे, हमारे श्रोताओं से जानना चाह रहे थे कि आपके जीवन में खेलों का क्या स्थान है, खेलते हैं कि नहीं? आपने तो खुद ही कह दिया कबड्डी खेलते रहे, कबड्डी का शौक है।
1: कबड्डी का हर चीज का शौक है, लेकिन खेलते नहीं है, सुनने का है, कमेंट्री आती है ना, कमेंट्री सुनते हैं।
0: तो कभी बचपन में गांवों में खेला तो होगा आपने? ग्रामीण अंचल में तो बहुत सारे खेल होते हैं हमारे, ग्रामीण खेल।
1: नहीं, ग्रामीण में तो खेले हैं बचपन में, गिल्ली डंडा भी खेले हैं, फुटबॉल भी खेले हैं, भूत रंजा, टीप टीप, चोर सिपाही, हर चीज खेलने की तो कुछ बात ही अलग है।
0: लेकिन आपने कौन सा खेला, गिल्ली डंडा खेला या कबड्डी खेली? आप कह रहे हैं फुटबॉल भी?
1: गिल्ली डंडा खेले हैं, आंटी भी हर चीज खेली है हमने।
0: आंटी क्या होता है?
1: आंटी वगैरह खेलते है ना, आंटी रहती है ना, कौन में रखते हैं, काटते हैं उसको, उंगली से मिलाते हैं, उसको मारते हैं।
0: अच्छा अच्छा
1: जी,
0: तो बहुत अच्छा लगा कि आप बचपन में ये खेल खेला करते थे, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बताइए आपकी पसंद का गीत।
1: अंदाज से सुना देना, आएगा मजा बरसात का।
0: अरे वाह, क्या बात है, अभी तो बरसात आई नहीं, मजा कहाँ आएगा।
1: जी जी, लेकिन बरसात तो आने वाली है, कम कम तो बारिश भी हो रही है।
0: बिल्कुल सही कहा, कई जगह बारिश हो रही है, तो चलिए हम भी इंतजार करते हैं उस बारिश का आपके गीत के।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
1: हाँ जी नमस्कार।
0: नमस्कार, नाम तो बताइए अपना।
1: मैं ग्राम बड़ा गाँव जिला गुना मध्य प्रदेश से मांगी लाल धाकड़ बोल रहा हूँ।
0: मांगी लाल जी, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप?
1: मैं अच्छा हूँ मैम, आप कैसे हो?
0: हम भी अच्छे हैं, और आपसे बात करके और अच्छे हो गए हैं
1: जी। काफी दिनों के बाद कॉल लगी है, बहुत खुशी है मुझे।
0: अरे खुशी तो होगी, क्यों नहीं होगी, लगातार आपने प्रयास किया होगा।
1: जी जी।
0: कैसा लग रहा है अब आपको, जब आपकी कॉल लग गई है तो?
1: मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मैम, और आपके पूरे कार्यक्रम सुनता हूँ मैं, और कार्यक्रम में मनचाहे गीत सुनता हूँ।
0: मनचाहे गीत के लिए खत लिख रहे हैं हमें?
1: जी जी भेजे हैं।
0: ठीक है।
1: और हेलो सहेली सुनता हूँ, साथी सहेली सुनता हूँ, और आपके पूरे कार्यक्रम सुनता हूँ मैं।
0: बहुत अच्छी बात है मांगीलाल जी। और क्या करते हैं आप?
1: मैं खेती बाड़ी करता हूँ, मैं हम किसान हूँ।
0: मौसम भी अभी आपके अनुकूल हुआ कि नहीं हुआ, खेती बाड़ी के अनुकूल?
1: अभी नहीं, 25 तारीख तक बारिश आ जाएगी।
0: यानी इंतजार है, सब कुछ अच्छा होगा ना?
1: जी जी मैम।
0: तो बताइए, हम थोड़ा सा आज अपने श्रोताओं से ये जानना चाह रहे हैं कि बचपन में वो कौन सा खेल खेलते थे, क्या उन्हें याद है कि वो खेल खेला करते थे अपने ग्रामीण इलाकों में? हमारे कुछ पारंपरिक खेल हैं जिन्हें हम सभी खेला करते थे, आपको याद है कोई ऐसा खेल जो आपने बचपन में अपने दोस्तों के साथ खेला है?
1: जी मैम, मैच का शौकीन हूँ, मैच भी खेलता हूँ।
0: अरे बैटिंग करते हैं बॉलिंग?
1: बॉलिंग भी कर लेते हैं, बैटिंग भी कर लेते हैं।
0: क्या बात है, हरफन मौला है फिर तो आप
1: जी।
0: तो सबसे ज्यादा कितने लिए आपने, विकेट कितने लिए हैं बॉलिंग में?
1: विकेट जो मिल जाते हैं जो ले लेते हैं, 10-12 विकेट ले लिए थे मैंने एक बार।
0: फिर तो आप मैन ऑफ द मैच हो गए।
1: जी जी मैम, बहुत शौकीन है मैं, रेडियो का बहुत शौकीन हूँ।
0: अच्छा, कौन सा गीत सुनवाए आपको
1: आज? मुझे खुदा गवाह फिल्म का गीत सुनना चाहता हूँ मैम, रब को याद करूं पिछड़ा याद मिला दे वो रब्बा।
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम।
1: नमस्ते मैडम।
0: नमस्ते नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं मोहम्मद रफीक नागपुर कुतुब शाह नगर नागपुर से बोल रहा हूँ मैडम।
0: स्वागत है आपका, कैसे हैं?
1: जी बढ़िया मैडम, आप कैसे
0: हैं? हम भी बढ़िया हैं। बताइए अपने बारे में, क्या करते हैं आप?
1: जी मैडम मैं कुछ खास नहीं कर रहा हूँ, घर में छोटी दुकान है किराना, वही चलाता हूँ मैडम।
0: अच्छा एक बात बताइए, दिन भर तो आप किराने की दुकान में काम करते हैं है ना, तो कभी रेडियो के लिए समय तो निकालते ही हैं, विविध भारती के लिए समय निकालते हैं आप?
1: हाँ इससे तो पुराना रिश्ता है मैडम मेरा रेडियो से।
0: तो खेल में रुचि है आपकी?
1: स्कूल में मैडम फुटबॉल खेलते थे मैडम, हम लोग कबड्डी चलता था मैडम।
0: अच्छा कैसे खेलते थे, अच्छा लगता था, गोल कर पाते थे?
1: ज्यादा तो मुझे गोल की बनाते थे कि हाई रुचि थी ना।
0: हम आज ना अपने श्रोताओं से ही जानना चाह रहे थे कि अगर हम उन्हें बचपन की ओर लौटाएं तो उन्हें क्या याद आता है कि क्या वो खेला करते थे। हम जब छोटे थे कितना खेल खेला करते थे ना।
1: हाँ मैडम सही बात है, तो बचपन होता ही है, बेफिक्री का रहता है मैडम, जवानी तक बुढ़ापा ही कठिन जाता है मैडम, बचपन और जवानी अच्छी रहती है मैडम।
0: हाँ जब आप युवावस्था में आए तब भी आपका ये खेल जारी था फुटबॉल का, या फिर काम में लग गए?
1: हाँ मैडम क्या बोलते, सरकारी जॉब लगा था, पार्टी में ही था, जब जॉब लग गया था मतलब सरकारी महाराष्ट्र साधन का, लेकिन मैंने फिर 2.5 महीने छोड़ दिया, यानी 2 महीने छुट्टी के लिए किया था मैंने, जब खर्चे के लिए।
0: अच्छा छोड़ा क्यों
1: मैडम? क्योंकि मैं तो आगे पढ़ाई करना था मैडम, उस जमाने में 10वीं पास करना लोहे के चने जमाना जैसा था। पहली से 10वीं तक पढ़ाई किया हूँ, बिगर टेंशन से पास हुआ हूँ।
0: अरे वाह,
1: मैंने कसम खाया था कि मैं 10वीं पास होकर दिखाऊंगा, चैलेंज दिया था दो भाइयों ने,
0: क्या
1: आगे पढ़ना नहीं था 10वीं पास करके, क्योंकि उस ट्रेंड में तो 10वीं बहुत काफी था उस जमाने के साथ।
0: बहुत अच्छी बात है कि आपने जज्बा रखा ना पढ़ाई का, और आज आप अपना घर चला रहे हैं दुकान के जरिए।
1: जी मैडम।
0: तो बताइए अब कौन सा गाना सुनेंगे आप?
1: झुक गए आसमान का मैडम, कौन है जो सपना में आया है, कौन है जो दिल में समाया है, लो झुक गए आसमान भी इसको मेरा
0: रंग लाया। चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत। कौन है?

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: मैं बडनेरा जिला अमरावती पद्माताई सिंगारे बात कर रही हूँ, मंदाकिनी दीदी।
0: अरे आपको पता है कि मंदाकिनी बोल रही है इधर?
1: मैं आवाज से पहचान रही हूँ दीदी आपको।
0: अरे क्या बात है,
1: कैसे हो दीदी आप?
0: अच्छे हैं, आप बताइए।
1: मैं भी अच्छी हूँ दीदी।
0: क्या करती हैं आप?
1: मैं तो घर पे रहती हूँ दीदी।
0: घर पे घर के काम करती हैं?
1: घर का काम करती हूँ, घर पे रहती हूँ और अमित भारती के कार्यक्रम में सुनती हूँ दीदी।
0: और क्या शौक है आपके ये बताइए।
1: मेरे को शौक तो गाना सुनने का शौक है दीदी, और रात दिमाग को सवेरे से हेलो फरमाइश में जो कार्यक्रम रहता है वो भी सुनती हूँ मैं। आपका झमकर सुनकर मन चाहे चालू जो करे वो, उसके बाद मैं खूब धन्यवाद देना चाहती हूँ दीदी आपको।
0: तो मन चाहे गीतों के लिए आप हमें पोस्ट कार्ड में अपना नाम पता भेज रही है, पसंद का गाना
1: भेजिए मैंने।
0: अच्छा मुझे एक बात बताइए, आज हम सबसे ये जानना चाह रहे हैं कि आपके जीवन में कभी स्पोर्ट्स आया, खेल आया? बचपन में हम खेला करते थे ना, युवावस्था में भी खेलते थे। आपने अपने बचपन में कौन सा खेल खेला था? लंगड़ी टांग, कबड्डी, खो खो, कुछ खेला था?
1: मैं तो सबसे ज्यादा लंगड़ी खेलती थी दीदी, मैं छोटेपन में अभी खो खो खेलती थी। और मेरी जो बहन है वो ज्यादा मेरे को खेलने के लिए देती थी दीदी, लड़की थी ना मैं।
0: अच्छा, लेकिन बचपन तो खेलने का ही नाम होता है ना, बचपन में तो हम दुनिया भर के खेल खेलते हैं। तो अपने बहन के साथ कभी कंचे खेले फिर बैठ के? क्या करती थी बहन के साथ बैठ के? कंचे खेले होंगे, गट्टे खेले होंगे?
1: कंचे खेलती थी मैं अपने बहन के साथ, खेत में जाती थी तो मट्टी खेलती थी, वो मट्टी के बर्तन बनाती थी, मेरे बहन बना के देती थी मेरे को।
0: याद आया ना आपको अपना बचपन, कितना सुंदर होता है हमारा बचपन, है ना। चलिए अपनी पसंद का गीत बताइए हमें, कौन सा गीत सुनना चाहती है?
1: फिल्म का नाम तो है खानदान, और गाने के बोले दिल गर्दन के उड़ते बादल।
0: आ आ आ, चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम है ये विविध भारती से।
1: हेलो मैडम नमस्कार, विविध भारती।
0: नमस्कार, नाम बताइए अपना।
1: नजीर डोंगरे बोल रहा हूँ।
0: कहाँ से?
1: सोलापुर बारसी से।
0: अच्छा, स्वागत है आपका नजीर साहब, कैसे हैं आप?
1: अच्छा हूँ मैडम।
0: अरे वाह, क्या बात, हम भी अच्छे हैं।
1: बहुत अच्छे कार्यक्रम होते हैं मैडम।
0: अच्छा, अच्छे लगते हैं आपको कार्यक्रम?
1: सुहाना सफर अच्छा लगता है। आदमी नहीं चाहो करे ना तुम कार्यक्रम, सुहाना सफर 1 बजे से 2 बजे तक
0: सुनते हैं आप सारे कार्यक्रम ना?
1: अच्छा लगता है। हेलो फरमाइश, और अच्छे कार्यक्रम है
0: वो आपका मन चाहे गीत कार्यक्रम के लिए हमें पत्र लिख रहे हैं आप?
1: नहीं मैडम, नहीं लिखा, अभी लिखूंगा इनसे आगे।
0: अरे क्यों नहीं लिखा भाई, आपके लिए तो है वो प्रोग्राम।
1: लिखता अभी इनसे आगे, बहुत पत्र लिखता हूँ।
0: हाँ बताइए, गाना कौन सा सुनवाए आपको?
1: बिल्कुल ये का वो प्रिया प्रिया क्यों भूला गया, ये गीत सुनना है मुझे।
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश का कार्यक्रम है ये।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार
1: जी, मैम हम धेमाजी असम से विमल बसुंतर बोल रहा हूँ। मैम
0: विमल जी, स्वागत है आपका, कैसे हैं आप?
1: जी मैम हम ठीक है, मेरा सिलाई का काम करता हूँ, मेरा दुकान है, दुकान से फोन कर रहा हूँ। मैम
0: कितने बजे तक सिलाई करते हैं?
1: जी मैम हम तो सिलाई करते हो, घर में काम करके आके दुकान खुलता हूँ, फिर सिलाई करके जल्दी चला जाता हूँ 4 बजे 5 बजे तक।
0: क्यों जल्दी क्यों चले जाते हैं, लोग तो देर रात तक काम करते हैं।
1: जी मैम हम लोग का ये थोड़ा बस्ती इलाका है ना मैम।
0: हाँ
1: इसीलिए थोड़ा बस्ती का अंदर का दुकान है ना, इसीलिए इसे चलता है।
0: अच्छा।

0: अच्छा, समय रहते घर पहुंच जाते हो?
1: जी मैम जी।
0: अच्छे से हो जाता है काम जितना आप चाहते हैं?
1: जी मैम, हम लोग का इधर चल जाता है, थोड़ा मोरा ऐसे करते रहता है, और सिलाई का अलावा दूसरा सब में रखता हूँ, दुकान और दूसरा है।
0: हाँ, और विविध भारती के लिए कब समय निकालते हो?
1: जी मैम, विविध भारती तो सुनते रहता हो, लेकिन पहली बार आज फोन लगाया मैम।
0: कैसा महसूस कर रहे हो?
1: सुनते रहता हूँ, अच्छा लगता है सुन के मैम।
0: अच्छा, क्या फील हो रहा है अभी जब फोन लग गया आपका तो?
1: जी मैम, आज पहली बार फोन मिला, इतना अच्छा लगा है, फिर आप लोग से आज बातचीत हो गया, इतना अच्छा लग रहा है मैम।
0: बताइए कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगे आप?
1: जी मैम, हमको सुनना है करण अर्जुन का बंधन तो प्यार का बंधन, ये गाना सुनना है मैम।
0: अरे वाह, बहुत सुंदर गीत सुनना चाहते हैं, चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: जी नमस्ते मंदाकिनी मैडम।
0: नमस्ते। अरे आपको पता है कि आज हम बैठे हैं मंदाकिनी जोशी,
1: बिल्कुल देश की सुरीली धड़कन प्रसारण सेवा में जब आपकी आवाजें पहुंचती है कार्यक्रम सखी सहेली हेलो फरमाइश जैसे कार्यक्रमों में, तो बिल्कुल मन आनंदित उठता है, हो उठता है मैडम जी।
0: अरे क्या बात है, आप इतने सारे कार्यक्रम सुनते हैं।
1: जी मैम।
0: अपना नाम तो बताइए हमें।
1: मैं आपका नियमित श्रोता बात कर रहा था, संतोष कुमार राव फ्रॉम उमरिया मध्य प्रदेश से।
0: स्वागत है आपका संतोष जी, कैसे हैं आप बताइए।
1: मैडम बहुत अच्छे हैं, लगातार आपके कार्यक्रमों से जुड़ाव रखते हैं।
0: अच्छा बताइए क्या करते हैं आप।
1: मैडम मैं एक कृषक हूँ, साथ में वार्ताकार हूँ।
0: अच्छा तो आप वार्ता लिखते हैं।
1: जी मैम।
0: तो अच्छा मैं आपसे दो या तीन लाइन में एक वार्ता लिखवाती हूँ अभी। ये बताइए अगर आपको कबड्डी का खेल दे दिया जाए कि इसके बारे में लिखना है और हमें प्रोत्साहित करना है कि जीवन में खेलों का महत्व होना चाहिए, और कबड्डी जो कि हमारा ग्रामीण खेल है कैसा खेल है इसके बारे में बताइए, तो क्या कहेंगे।
1: कबड्डी एक ऐसा खेल होता है जिसे मानसिक शारीरिक परिवर्तन गतिविधियां हमारी प्रभावित करते हैं, खास करके युवाओं में अगर देखा जाए तो कबड्डी का एक अच्छा जज्बा होता है। और कबड्डी न केवल उत्साह का प्रेरणा देता है बल्कि कबड्डी शारीरिक रूप से भी मानसिक रूप से भी आपको ताजगी से भर देता है।
0: अरे वाह क्या बात है, बहुत सुंदर। अच्छा आपसे अगर हम पूछें तो आप क्या बताएंगे, आप कौन सा खेल खेला करते थे जब आप छोटे थे या युवा हुए किशोर हुए।
1: खेलों की बात की जाए तो रस्सा कस्सी का जो खेल हुआ करता था वो सबसे ज्यादा हमें भाता था, और जो मैच होते थे खास करके पुराने दौर में जब हम लोग बच्चे थे तो खेला करते थे, तो वो सारी यादें हमें आज भी याद आती हैं और खेलने का मन होता है।
0: लेकिन जी मैम आज बच्चों की दुनिया केवल कंप्यूटर गेम तक सीमित हो गई है। स्कूल्स में तो खैर गेम्स होते ही हैं, लेकिन घर में अगर देखा जाए तो बच्चे ना के बराबर खेलने लगे हैं।
1: जी मैम बिल्कुल सिमट करके रह गए हैं बच्चे, लेकिन बच्चों की परिभाषा जो होती है, व्यक्तित्व होती है, वो माँ और पिता से शुरुआत होती है। यदि बच्चों की अच्छी आदत डालनी है तो माता पिता को भी सजग बनना चाहिए, अपने आसपास मोबाइल कंप्यूटरों को थोड़ा सा दूरी रखें और खेलों का विषय जरूर चूज करवाएं ताकि बच्चे अपने आप को मेंटेन रख पाए।
0: बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके संतोष जी। चलिए आपकी पसंद का गीत बताइए हमें।
1: बिल्कुल मैम, एक बहुत ही प्यारा सा गाना है, फिल्म खलनायक का गाना है, ऐसी तेरी याद आती है।
0: क्या बात है, चलिए सुनते ही ये गीत।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
1: मैं अमल बसमटारी बात कर रहा है, रंगापाड़ा सोनितपुर असम से।
0: स्वागत है आपका। कैसे हैं अमल जी आप?
1: बहुत अच्छी है, आज तो बारिश हो रहा है इसलिए थोड़ा सा राहत मिल चुका है गर्मी से।
0: बहुत अच्छी बात है ये तो।
1: आप कैसे हैं मैडम? बहुत दिन से विविध भारती सुन के आ रहा है लेकिन कॉल नहीं लगा पा रहे थे, आज कॉल लगा पा रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सारी ट्रैफिक होता है आपके प्रोग्राम में लेकिन उसको तोड़ के आपके पास आ चुका है मैडम।
0: क्या बात है, चलिए अच्छी बात है ना, आज आपका कॉल भी लग गया, आप खुश नजर आ रहे हैं। क्या करते हैं आप?
1: जी मैं खेती बाड़ी करते हैं, धान का खेती लगाया जाते हैं और चाय का खेती है हमारा, और सुपारी वगैरह लगाता है और सब्जी का भी खेती लगाता है।
0: चाय का खेती भी करते हैं?
1: जी जी, असम में तो चाय का ही खेती ज्यादा करता है हमारे असम लोग।
0: बिल्कुल, असम की चाय। कौन सी चाय? खुशबूदार पत्तियाँ?
1: जी जी जी।
0: अरे हम भी चाय के बहुत शौकीन है, काश आपके पास होते तो आपके खेत पे ही बैठकर चाय बनाते और पी लेते।
1: नहीं, हमारा चाय का तो ऐसे सिर्फ पार्ट निकलता है और इस पार्ट को फैक्ट्री में भेज देता है।
0: अच्छा, बहुत अच्छी बात है। चलिए अमल जी एक बात बताइए, और क्या करते हैं इसके अलावा? खेती बाड़ी तो करते हैं।
1: और मैं बांसुरी बनाता है, बांसुरी बजाता है और पंखा बनाता है, हाथ वाला पंखा, ये भी बनाने अच्छा लगता है।
0: अच्छा, बांसुरी बजाते हैं या बनाते हैं?
1: बनाती भी है और बजाती भी है।
0: खेतों से मिलती है आपको ये लकड़ी?
1: बम्बू से बनाता है।
0: अच्छा, बहुत अच्छी बात है, आपके अंदर एक कलाकार भी है, तो बताइए। चलिए कभी आपसे सुनेंगे बांसुरी, फिलहाल तो बताइए आपकी पसंद का गीत।
1: हीरो हिंदुस्तानी फिल्म का जो चांद नजर आ गया, ये वाला गाना सुनना है।
0: सुनवाते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
1: नमस्ते मैडम।
0: नमस्ते, कौन जनाब फरमा रहे हैं?
1: जी मैं दीपक जाधव बात कर रहा हूँ मैडम, महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले से।
0: स्वागत है आपका दीपक जी, कैसे हैं?
1: जी हम बहुत मजे में मैडम, आप कैसे हैं?
0: हम भी अच्छे हैं, आप लोगों से बात करके और अच्छे हो गए हैं आज। कैसे हैं आप, क्या करते हैं?
1: जी मैं किसान हूँ मैडम, खेती करता हूँ।
0: क्या है आपके खेत में अभी?
1: अभी तो कुछ नहीं, लेकिन बरसात का इंतजार चालू है।
0: अच्छा, कैसा मौसम हो रहा है आपके शहर में?
1: अभी तो फिलहाल धूप निकल रही है।
0: हाँ, तो दीपक जी और क्या करते हैं, इसके अलावा कोई और शौक है आपके?
1: मैं खेती की सारी करता हूँ खाली,
0: बस और कुछ नहीं।
1: और रेडियो सुनता हूँ।
0: रेडियो सुनते हैं, तो रेडियो में कभी आपको कुछ और पसंद आता है? जैसे गाने तो सुनते ही हैं, खेलों पर कभी बात करते हैं आप? खेलों की कमेंट्री सुनना पसंद करते हैं?
1: जी बिल्कुल, हम सुनते हैं रेडियो पे क्रिकेट की कमेंट्री।
0: क्रिकेट की कमेंट्री, तो जब आप छोटे थे तो आप कौन सा खेल खेलते थे, याद है आपको? स्पोर्ट्स क्या करते थे, क्या स्पोर्ट्स था?
1: थोड़ा हम खो खो खेलते थे और क्रिकेट खेलते थे।
0: अरे
1: पसंद है जरा।
0: अच्छा, पसंदीदा खेल कौन सा है?
1: खो खो।
0: खो खो, बहुत मजा आता था खो खो खेलने में तो।
1: जी
0: है ना, कभी आपसे ऐसा हुआ कि खो कहा और आप नहीं उठ पाए हो?
1: बहुत बार हुआ मैडम, मजेदार किससे होते थे वो।
0: फिर बड़े होने के बाद सीधा खेती बाड़ी करी आपने, काम में लग गए?
1: घर में खेती थी ना मैडम, और शिक्षा का आगे चल के खेती करने वाला कोई नहीं था।
0: अच्छा, पढ़ाई की आपने?
1: पढ़ाई 12वीं तक की।
0: अच्छी बात है, चलिए अभी बताइए कौन सा गीत सुनवाए आपको?
1: हमें तेरे नाम का गाना सुनना है मैडम, क्योंकि किसी को वफा के बदले वफा नहीं मिलती।
0: क्या बात है, कितना गहरा गीत सुनना चाहते हैं, चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम जिन श्रोताओं की कॉल आज लगी है उनसे हमारा करबद्ध अनुरोध कि आगामी 2 माह तक हमें कॉल न करें ताकि अन्य श्रोताओं को इसमें सहभागिता का अवसर प्राप्त हो सके। हेलो फरमाइश के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं प्रत्येक सोमवार दिन में 11 बजे। इसके लिए हमारे फोन नंबर्स नोट कर लें। हमारे फोन नंबर्स हैं 0222867 0288। हमारा दूसरा नंबर 0224002462। चलते चलाते हम आपको ये भी बता दें कि आज का ये सफर आपने तय किया अपने दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, संपादन सहयोग सुशीला वेंगुर लेकर, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। और अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: हेलो फरमाइश।

मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं, हाजिर हैं हम लेकर युवा श्रोताओं का अपना कार्यक्रम युववाणी।

असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। इसी के साथ हाजिर हूँ मैं आपका रेडियो दोस्त विकेश, आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में।

साथियों, आइए आज के कार्यक्रम की रूपरेखा जानते हैं। सबसे पहले हम अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साप्ताहिक स्तंभ बाहरी प्रसारण यानी आउटसाइड ब्रॉडकास्टिंग में हम आपको सुनवाएंगे कुछ युवा साथी से बातचीत को। विषय होगा खेल कूद में युवाओं की भागीदारी, खेलो इंडिया के संदर्भ में। हमारे दूसरे साप्ताहिक स्तंभ में हमने शामिल किया है सेगमेंट इतिहास दर्पण को। दोस्तों, हमारे डेली सेगमेंट डेली ट्रिविया और फन फैक्ट में आपको रेडियो और आकाशवाणी से जुड़ी रोचक जानकारियां भी बतलाएंगे। साथ ही कार्यक्रम के दौरान फिल्म संगीत का सिलसिला भी चलता रहेगा। हमारे दैनिक स्तंभ समसामयिकी में हम आपको देश विदेश की घटनाओं से भी अवगत करवाएंगे। आइए साथियों, सुनते हैं फिल्म गजनी से जावेद अली की आवाज़ में ये खूबसूरत गीत।

स्वागत है साथियों इस खूबसूरत गीत के बाद आपके पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में। अब बढ़ते हैं चर्चा के विषय की ओर। चर्चा का विषय है अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस प्रत्येक वर्ष दो प्रमुख रूप से मनाया जाता है। पहला 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, और आज के दिन यानी 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस प्रमुख रूप से मनाया जाता है। साथियों आज का दिवस विशेष रूप से बच्चों के अधिकार, उनकी शारीरिक क्षमता के विकास और खेल के जरिए उनके मानसिक एवं सामाजिक विकास पर केंद्रित है। दोस्तों इस विषय को यूनिसेफ द्वारा बच्चों के खेलने के महत्व को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। आपको बता दें साथियों संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार अधिसमय यानी UNCRC के अनुच्छेद 31 के तहत खेल को हर बच्चे का एक मौलिक अधिकार माना गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के अनुसार शारीरिक रूप से सक्रिय ना रहने के कारण वैश्विक स्तर पर बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। भारत के संदर्भ में बात करें तो खेलो इंडिया और फिट इंडिया जैसे अभियान इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर भारत के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बच्चों को पारंपरिक खेल जैसे गिल्ली डंडा, खो खो और कबड्डी खेलने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है। 11 जून को मनाया जाने वाला यह दिवस हमें याद दिलाता है कि एक स्वस्थ और खुशहाल समाज के निर्माण के लिए खेल कितना ज़रूरी है। यह दिन केवल बच्चों के लिए नहीं बल्कि बड़ों के लिए भी अपनी व्यस्त दिनचर्या से बाहर निकलकर खेल को अपनाने का संदेश देता है। इसी के साथ चर्चा के विषय अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस में बस इतना ही। बात करेंगे किसी खास विषय पर अगले युववाणी एपिसोड में। बढ़ते हैं हमारे डेली सेगमेंट डेली ट्रिविया की ओर। आज के सेगमेंट डेली ट्रिविया में सवाल है, FM रेडियो का आविष्कार किसने किया था? इस सवाल का सही जवाब हम आपको कार्यक्रम के अंत में बता देंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए कार्यक्रम युववाणी। दोस्तों वक्त हो चला है फिल्म संगीत का, तो आइए सुनते हैं फिल्म टू स्टेट से अरिजीत सिंह और चिन्मया श्रीपदा की आवाज़ में ये खूबसूरत गीत, और गीत के बाद हम अंतरा लेकर आपसे फिर जुड़ेंगे।

0: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: स्वागत है साथियों आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में। अब बढ़ते हैं हमारे साप्ताहिक स्तंभ बाहरी प्रसारण यानी आउटसाइड ब्रॉडकास्टिंग की ओर, जिसमें आप सुनेंगे कुछ युवा साथी से बातचीत को। विषय है खेल कूद में युवाओं की भागीदारी खेलो इंडिया के संदर्भ में। तो आइए साथियों सुनते हैं इस ज्ञानवर्धक विषय के बारे में और बातचीत करते हैं कुछ युवा साथी से। आइए पहले युवा साथी से बातचीत करते हैं। आपका शुभ नाम क्या हुआ?
6: मेरा नाम समीर राज हुआ।
5: अच्छा समीर राज जी, आप अभी क्या कर रहे हैं?
6: मैं अभी BSc फिजिक्स का छात्र हूँ TNB कॉलेज में।
5: जी, तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि खेलो इंडिया, आपके अपना नाम सुना होगा।
6: जी,
5: ठीक है। तो उससे मेरा सवाल है कि युवाओं की खेल में भागीदारी क्यों आवश्यक है आपके अनुसार?
6: देखिए, शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार जो है वो खेल के से हो सकती है। खेल शरीर को स्वस्थ और फिट रखता है।
5: सही है।
6: फिर आप चाहे मेंटली फिट रहना है, हाँ मेंटली फिट रहना है, मानसिक स्वास्थ्य उससे बेहतर होता है। तनाव व चिंता व अवसाद व उसको कम करने में मदद मिलता है।
5: सही।
6: आप जितने भी परेशान हो, अगर आपको ये खेल अगर आपको अच्छा लगता है खेलना, वो अगर आप आधा एक घंटा भी खेल लीजिए तो आपको मेंटली रूप से खुश कर देता है।
5: हाँ।
6: फिर उसका जो है खेल आत्मविश्वास बढ़ाता है। चाहे आप प्रतियोगिता में कोई भाग ले, उसमें अगर कोई जीत जाए या हार जाए उससे मतलब नहीं है, पर आप अगर उसमें पार्टिसिपेट करें और कुछ अगर बेटर कर दें, अपनी एक्सपेक्टेशन को पार करें, तो उससे आपको और आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा।
5: मतलब आपने कहा कि पार्टिसिपेशन हो जाए स्पोर्ट्स में तो हमारा मेंटल फिटनेस, फिजिकल फिटनेस इंप्रूव होगा और प्लस सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा।
6: जी जी।
5: तो मेरा दूसरा सवाल है कि खेलो इंडिया जैसा इनिशिएटिव है, जैसे कि हमारी गवर्नमेंट लाई है, तो उस पर एजुकेशन पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है? जैसे कि मैं आपको मैं विशेष तौर पे बतला दूं कि अगर खेलो इंडिया से इवेंट है, अगर उसमें कोई बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा है, तो क्या उसके एजुकेशन और फिजिकल लाइफ में बैलेंस जरूरी है या कैसे है, वो आप बता सकते हैं?
6: नहीं नहीं, देखिए सिंपल बात है कि जो स्पोर्ट्स है वो देखिए डिसिप्लिन लाता है बच्चों में।
5: बिल्कुल।
6: ठीक है, डिसिप्लिन लाता है, टाइम मैनेजमेंट स्किल सिखाता है कि कैसे आप एक समय पे अलग अलग चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं।
5: yes.
6: आपका कंसंट्रेशन बढ़ाता है कि आप, वरना पढ़ाई में बच्चे क्या होते हैं, ध्यान नहीं दे पाते हैं, इससे क्या है आप ध्यान दे पाए।
5: और आज के युग में तो मोबाइल फोन वगैरह भी आ गया तो उसके कारण डिस्ट्रैक्शन होता है, तो स्पोर्ट्स खेलेंगे तो हम लोग अच्छे तौर पे कंसंट्रेट कर पाएंगे।
6: जी जी। और टीम स्पिरिट बढ़ाता है, जो सबसे ज़्यादा जरूरी है अभी के भारत के लिए, जहाँ पे हर लोग एक दूसरे से हेट करते हैं जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, वहाँ पे टीम स्पिरिट और बढ़ाने में एक बहुत अच्छा मतलब भागीदारी रखता है।
5: और मेरा तीसरा सवाल है समीर जी की खेलो इंडिया हो गया या फिट इंडिया से आप इनिशिएटिव को देख रहे हैं, मूवमेंट को देख रहे हैं, तो इसमें क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारे यूथ पे आप देख

0: पा रहे हैं।
1: मैंने तो देखा है कि युवाओं में इसकी मतलब भागीदारी बढ़ रही है, बहुत ज्यादा बढ़ रही है। लोग अब जाना चाहते हैं स्पोर्ट्स में, मोटिवेशन मिल चुका है उन लोगों को कुछ जीतने का, चाहे कोई भी हो। मान के चलिए नीरज चोपड़ा ने जीता, वो भी एक तरीके से इसको मोटिवेट,
0: तो पूरे एक सोसाइटी के, पूरे एक देश को पता चला कि भाई अगर वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं ओलंपिक में, नहीं तो ये तो स्टेट या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
1: और अब उन लोगों को पता भी चला कि स्पोर्ट्स में भी करियर बन सकता है, वरना बस सब सोचते थे बस क्रिकेट है उसी में करियर बनता है, नहीं बनता है। बट अब लोग जान गए कि अलग अलग खेलों में भी करियर बन सकता है,
0: ये इन्हीं सब इनिशिएटिव के कारण भी।
1: जी, स्कॉलरशिप भी अब मिलती है जो कि उनके लिए लाभदायक हो।
0: और इसमें ऐसा हम लोग भी जानते हैं कि अगर कोई आप इस इनिशिएटिव से जुड़े रहेंगे तो आपको कई तरह के सर्टिफिकेशन ही मिलते हैं जो आपका करियर में भी आपको बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है, तो उस पर आपको क्या कहना है?
1: देखिए, सर्टिफिकेट मिलना ये एक चीज़ को बढ़ावा देता है
0: जी।
1: अगर आपको मतलब कोई काम करने का या कुछ करने का अगर आपको एक सर्टिफिकेट मिल रहा है, मतलब उससे आपको फायदा हो रहा है
0: जी,
1: तो आप वहाँ से गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाए
0: जी। और मेरा चौथा सवाल है, मेरा अगला सवाल है समीर जी आपसे, कि आप देख रहे होंगे खेल के प्रभाव को, तो खेल के प्रभाव ग्रामीण युवाओं पर क्या असर डालता है?
1: देखिए, स्पोर्ट्स लेवल पर जो है, गांव के लेवल पर जो है, मतलब यूथ को जो है एक नेशनल लेवल पहुंचाने का एक मौका देता है। वो जो स्पोर्ट्स है ये युवाओं को एक अपनी पहचान देती है कि अपना कुछ पहचान बनाए,
0: डिस्ट्रिक्ट लेवल से, फिर स्टेट लेवल से, फिर नेशनल लेवल
1: जी। और अगर अच्छे फैसिलिटी मिलेगा तो इससे और बढ़ावा मिलेगा और बेटर होगा।
0: अच्छे फैसिलिटीज के साथ अगर उससे अच्छा एनवायरनमेंट भी आप कहना चाहें तो मिलेगा
1: जी। और स्पोर्ट्स खेल के करियर बन सकता है ये तो दिखाना ही पड़ेगा, वरना फिर प्रॉब्लम हो सकती
0: है। प्रॉब्लम है क्योंकि आप गांव के बच्चे को देख रहे हैं, अगर गांव का बच्चे को अगर कुछ मिला नहीं हाथ में तो फिर उसके लिए भी वो दिक्कत है, क्योंकि
1: फेलियर ही होगा,
0: क्योंकि स्पोर्ट्स तो हर किसी के लिए बना नहीं है
1: जी।
0: लेकिन अगर वो गांव का बच्चा अगर खेल रहा है, कुछ अच्छा कर रहा है फैसिलिटीज के साथ, तो मतलब उसमें करियर बनने की संभावना
1: ज्यादा है।
0: ठीक है।
1: और रोजगार और सम्मान भी मिलना चाहिए, ये नहीं कि अगर वो फेल हो गया तो उसको ऐसे छोड़ देना चाहिए। सबका कुछ ना कुछ वैल्यू होता है और वो वैल्यू दिखाना चाहिए सब,
0: वो मेहनत का वैल्यू हुआ
1: वो मिलना चाहिए सब
0: जी। बिल्कुल। मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि खेलो इंडिया या फिट इंडिया जैसे इनिशिएटिव को फ्यूचर में और बढ़ावा देना चाहिए या फिर और इसके इनिशिएटिव जैसे और आने चाहिए या नहीं?
1: देखिए, मैं सीधा बोलूँगा कि जो खेलो इंडिया पहले आप इसको भी बेटर कर सकते हैं, अगर आप इसको बेटर करिएगा तो इससे ज़्यादा फायदा होगा। मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट लेवल हुआ, स्टेट लेवल हुआ, वहाँ पर इसको बढ़ावा देना चाहिए। और ऐसे अगर आएंगे इनिशिएटिव तो और अच्छी बात ही है, बच्चों के लिए अच्छी बात है
0: जी।
1: और इससे इंडिया का ही, इंडिया के युवाओं पे ना पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और वो खेल के प्रति कुछ कर पाएंगे
0: और एक स्टेज भी उन्हें मिल पाएगा कि भाई अगर कोई अच्छे इवेंट हो रहे हैं तो उसमें स्पॉन्सरशिप वगैरह मिलता है तो एक स्टेज भी देता है वो।
1: जी जी
0: जी। ये थी हमारी बातचीत हमारे पहले साथी समीर राज से, धन्यवाद समीर राज आपका।
1: थैंक यू सर।
0: आइए हमारे दूसरे युवा साथी से बातचीत करते हैं। आपका नाम क्या हुआ?
2: मेरा नाम निखिल कुमार।
0: निखिल जी, आप अभी क्या कर रहे हैं? अभी
2: मैं बीसीए की पढ़ाई कर रहा हूँ TNV महाविद्यालय से।
0: जी निखिल, तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि युवाओं की खेलों में भागीदारी क्यों आवश्यक है, तो इस पर आपका क्या विचार है?
2: देखिए, युवाओं की भागीदारी खेल में कोई एक चीज निर्धारित नहीं करती, उनमें बहुत सारे चीज़ें हैं जो कि स्पोर्ट्स को युवाओं के जीवन में
0: पॉजिटिव इम्पैक्ट लाता है।
2: जैसे कि फिजिकल हेल्थ प्रमोट करना, आजकल का लाइफ स्टाइल ऐसा हो चुका है जो कि फिजिकल हेल्थ को डिग्रेड कर रहा है, गिरा रहा है। अगर युवाओं को स्पोर्ट्स में रुचि है तो वो उनके रुचि के साथ साथ उनकी फिजिकल हेल्थ को भी हेल्प, अगर अच्छे स्पोर्ट्समैन या अगर आप मजे के लिए भी खेल रहे हैं तो डिसिप्लिन और करेक्टर बिल्ड करता है।
0: बिल्कुल।
2: और अगर आप टीम गेम्स लाइक क्रिकेट,
0: हॉकी,
2: फुटबॉल खेलते हैं तो टीम वर्क प्रमोट करता है और उनमें कुछ लीडरशिप भी प्रमोट करता है
0: जी।
2: इम्प्रूव मेंटल वेलनेस, इनकरेज सोशल इंटरेक्शन। जैसे कि आजकल शहरों में लोग अपने ही एक एरिया में रह रहे हैं, कोई एक दूसरे जानता नहीं
0: जी,
2: कौन किसका क्या पड़ोसी है कोई नहीं जानता।
0: तो एक स्पोर्ट्स हमें लाता है कि भाई एक भावना हो कि भाई हमारा नेबर भी है तो हमारा एक टीम ही है,
2: समाज को एकजुट करता है,
0: टीम है, यूनिटी है हम लोग के पे।
2: जी।
0: मेरा दूसरा सवाल है कि आपके अनुसार खेलो इंडिया जैसे इनिशिएटिव इंडिया हमारे देश में और आने चाहिए या नहीं?
2: जैसे कि आपने देखा खेलो इंडिया का असर समाज पे है, खासकर छोटे जगहों पे,
0: जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो गया, स्टेट लेवल पे, कोई गांव लेवल पे हो गया।
2: जी।

0: ये पहले तो हमारे देश को एक स्पोर्ट के क्षेत्र में जो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स होते हैं, ओलंपिक्स, फीफा, इन चीज़ों में प्रमोट किया जा रहा है, हमारे
1: जी
0: देश को ज़्यादा रिप्रेजेंट किया जा रहा है,
1: जी
0: जो कि हमारे देश के लिए बहुत अच्छा है। दूसरा, पब्लिक हेल्थ और टैलेंट डिस्कवरी। इंडिया में करोड़ों लोग हैं, फिर भी हम लोग आज तक एक फीफा का वर्ल्ड कप नहीं ला पाए।
1: हाँ, और
0: और
1: ये सब
0: खेलो,
1: इनिशिएटिव के कारण ही हो सकता है।
0: हाँ, हमें वो नौजवान मिल सकते हैं, वो स्पोर्ट्समैन मिल सकते हैं जो कि इंडिया को फीफा वर्ल्ड कप ला के दे सकते हैं।
1: अच्छे लेवल पे रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं।
0: ये इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। बहुत सारे जॉब्स लाइक कोचेस, ट्रेनर, इवेंट मैनेजर, इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, इस तरह के बहुत से छोटे बड़े जॉब भी बनते हैं।
1: यानी कुल मिलाकर ये कहें तो, अगर हम खेलो इंडिया जैसे इनिशिएटिव को अगर लाते हैं देश में और अच्छे इसको बेहतर करते हैं, तो हो सकता है कि और अच्छे स्पोर्ट्समैन आए। ये थी हमारी बातचीत निखिल के साथ, और हमें अच्छा लगा निखिल आपके साथ बात करने में, और आपने बिल्कुल सटीक जानकारियाँ दी। शुक्रिया आपका।
2: स्वागत है साथियों, अभी आपने सुना हमारे युवा साथी निखिल और समीर से खास बातचीत को। विषय था खेल कूद में युवाओं की भागीदारी, जो कि खेलो इंडिया के संदर्भ में था। दोस्तों, वक्त हो चला है हमारे दूसरे साप्ताहिक स्तंभ इतिहास दर्पण की ओर बढ़ने का। आज के दिन का इतिहास कुछ इस प्रकार है। भारत पर आक्रमण करने के बाद वापस लौटते समय 323 ईसा पूर्व में 32 वर्ष की आयु में बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु आज के ही दिन हुई थी। इसराइल और अरब देशों के बीच चल रहा प्रसिद्ध सिक्स्थ डे वॉर आज ही के दिन समाप्त हुआ था। इसी के साथ हमारे साप्ताहिक स्तंभ इतिहास दर्पण में बस इतना ही। बात करेंगे इस सेगमेंट पर अब अगले सप्ताह। आइए साथियों, सुनते हैं फिल्म दिल्ली सिक्स से मोहित चौहान की आवाज़ में ये खूबसूरत गीत।

स्वागत है साथियों इस खूबसूरत गीत के बाद। अब एक नज़र हमारे दैनिक स्तंभ समसामयिकी की ओर। नीति आयोग की 11वीं बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास थीम पर बैठक आयोजित की गई। केरल में महिलाओं के लिए राज्य परिवहन बसों में प्रियदर्शनी मुफ्त यात्रा योजना को मंजूरी मिली। इसी के साथ हमारे दैनिक स्तंभ समसामयिकी में बस इतना ही। दोस्तों बढ़ते हैं हमारे डेली सेगमेंट फन फैक्ट की ओर। आज का फन फैक्ट है, क्या आप जानते हैं शुरुआती दौर में रेडियो को वायरलेस टेलीग्राफी कहा जाता था? साथियों कार्यक्रम के शुरुआत में हमारे डेली सेगमेंट डेली ट्रिविया में हमने आपसे सवाल पूछा था, एफएम रेडियो का आविष्कार किसने किया था? इस सवाल का सही जवाब है एडविन हॉवर्ड आर्मस्ट्रांग। तो साथियों आज का कार्यक्रम कैसा लगा आपको, आप हमें अवश्य लिख भेजिए। हमारा पता है युववाणी अनुभाग द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी भागलपुर, पिन कोड है 812001। हमारा ईमेल आईडी है phairbhagalpur@gmail.com। तो दोस्तों मिलेंगे फिर इसी वक्त इसी प्रोग्राम इसी फ्रिक्वेंसी पर। तब तक के लिए दीजिए अपने रेडियो दोस्त विकेश को इजाज़त। नमस्कार।

युवावाणी कार्यक्रम संपन्न हुआ। प्रसारण आपकी सेवा में आकाशवाणी भागलपुर से किया गया। मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलो हर्ट्ज और FM 100.1 मेगा हर्ट्ज पर शाम के 5:30 हुए हैं। आइए सुने फिल्म संगीत। पहला गाना हमने फिल्म अंदाज से लिया है। उदित नारायण एवं अलका यागी की युगल आवाजें हैं। गीत के बोल समीर के और संगीत तैयार किया है नदीम श्रवण ने।

कुमार शानू एवं अलका याग्निक को अब आइए सुनते हैं फिल्म हम हैं राही प्यार के में। गीतकार समीर, संगीतकार हैं नदीम श्रवण।

0: आपको पता है, जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
1: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव
0: विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: हर हर महादेव।
3: जानते हैं इन वीरों की वीर गाथाएं लेकर कौन आ रहे हैं? हम यानी
4: क्रेश,
5: क्रेश
3: और बाल्टी बॉय।
6: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय।
7: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
8: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत बहुत बड़ी सफलता।
7: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

आइए अब सुनते हैं आशा भोसले एवं कुमार शानू का गाया फिल्म बलमा का एक नगमा। गीत के बोल समीर के हैं और संगीत तैयार किया है नदीम श्रवण ने।

आप सुन रहे थे फिल्म संगीत, आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्थानीय सूचनाएं एवं कार्यक्रम विवरण, आइए डालते हैं एक नज़र हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले आज की शेष तथा कल के कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा एवं उनके प्रसारण समयों पर।

अब से थोड़ी देर बाद शाम 6 बजे ग्रामीण श्रोताओं को संबोधित आप हमारा दैनिक कार्यक्रम सुनेंगे ग्राम जगत खेती गृहस्थी। इसमें पुष्पलता सिन्हा की वार्ता आप सुनेंगे गर्मी के पेय पदार्थ, साथ ही किसान श्रोताओं के लिए डॉक्टर अमित कुमार की वार्ता होगी, विषय होगा देसी नस्ल की गायों का संवर्धन। शाम 7:10 पर लोकगीतों के कार्यक्रम में आज गायक कलाकार होंगे बासुकी प्रसाद। शाम 7:52 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम सुरलहरी में आज गायक कलाकार होंगे अभय कुमार सुमन। 8 बजे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा रजनीगंधा। रात्रि 9:30 आप सुनेंगे फिल्म संगीत। रात 10 बजे शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुनेंगे उस्ताद विलायत हुसैन खां का गायन राग गौर मल्हार में। और रात 10:30 हम आपके लिए लेकर आएंगे आपके फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुहाना सफर। ये थे आज के शेष कार्यक्रम और अब कुछ जानकारियां कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में।

कल हमारी प्रातःकालीन प्रसारण सभा आरंभ होगी। प्रातः 5:48 पर, 5:55 पर खेत खलिहान कार्यक्रम में किसान श्रोता सुनते हैं सामयिक कृषि

वार्ता 6:05 का समय है दैनिक चिंतन मनन के लिए। 6:10 पर होता है भक्ति संगीत का हमारा दैनिक कार्यक्रम वंदना। 6:35 पर आप सुनते हैं स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम। 6:40 पर रामचरितमानस गान की क्रमिक कड़ी सुनवाई जाएगी। प्रातः 7 से 7:55 तक आप सुनते हैं मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन का कार्यक्रम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। इसमें प्रातः 7 सुगम संगीत के कार्यक्रम रसरंग में कल गायक कलाकार होंगी प्रतिभा सिन्हा। 7:20 पर गांधी कथा कार्यक्रम होगा। इसमें आप सुनेंगे डॉक्टर चंद्रभूषण प्रसाद सिंह की वार्ता। विषय होगा गांधी और बा। 7:30 पर होगा फिल्म संगीत। 9:06 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा नगमे नए पुराने। 9:30 पर सुगम संगीत का कार्यक्रम में आप सुनेंगे ज्ञानी लक्ष्मण सिंह बेदी को। 10 फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा पुरानी फिल्मों से। 10:30 पर लोक गीतों के कार्यक्रम में गायक कलाकार होंगे कपिल देव ठाकुर। 11 फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा नई फिल्मों से। 11:30 पर कंपेयरिंग आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा गुलदस्ता। 12 महिला श्रोता सुनती हैं अपना कार्यक्रम नारी लोक। 12:30 पर NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम होता है उमंग। दिन के 1 लोक गीतों के कार्यक्रम लोक रंग में कल गायक कलाकार होंगे तेज नारायण चौधरी एवं साथी। 1:30 ग्रामीण महिलाओं के लिए हमारा कार्यक्रम होगा घर आंगन। 2:30 पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा चित्रपट से। 3 मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज पर हमारा प्रसारण संपन्न होगा। FM 100.1 मेगाहर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR एप्लीकेशन पर आप सुनेंगे विविध भारती के राष्ट्रीय प्रसारण सेवा का अनुप्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से। शाम 5 हम आपकी सेवा में एक बार फिर उपस्थित होंगे लेकर युवा श्रोताओं का अपना कार्यक्रम युववाणी। शाम 5:30 पर होता है फिल्म संगीत। शाम 6 ग्रामीण श्रोताओं के लिए आप हमारा दैनिक कार्यक्रम सुनते हैं ग्राम जगत खेती गृहस्थी। शाम 7:10 पर हमारा स्वास्थ्य कार्यक्रम में कल आप सुनेंगे उमाकांत चौधरी की वार्ता। विषय होगा स्वस्थ जीवन के लिए योग। शाम 7:52 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम सुरलहरी में गायक कलाकार होंगे अनिल कुमार आनंद। 8 फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा रजनीगंधा। रात्रि 9:30 आप सुनेंगे साहित्यिक रेडियो पत्रिका कार्यक्रम शतदल। प्रस्तुतकर्ता होंगे अतुल कुमार प्रियदर्शन। रात 10 शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुनेंगे उस्ताद बिस्मिल्ला खां का शहनाई वादन राग शंकरा में। और रात 10:30 आपके लिए होगा कार्यक्रम पसंद आपकी। कार्यक्रम विवरण में अभी आप हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले आज की शेष तथा कल के कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा एवं उनके प्रसारण समयों की जानकारियां प्राप्त कर रहे थे। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। शाम के 6 हैं। प्रस्तुत है ग्रामीण श्रोताओं को संबोधित हमारा दैनिक कार्यक्रम ग्राम जगत खेती गृहस्थी।

0: सुबह की पहली किरण के साथ जब गांव की पंगडंडियों पर जीवन जागता है, खेतों की मेड़ों पर किसान अपने सपनों को लेकर निकल पड़ता है, बैलों की घंटियों की मधुर ध्वनि वातावरण में गूंजती है और दूर कहीं पेड़ों पर बैठे पक्षियों की कलवर एक दिन का संदेश देते हैं। यही है हमारा गांव, यही है हमारी पहचान और यही है भारत की तस्वीर और यही है हमारा कार्यक्रम ग्राम जगत खेती गृहस्थी।
1: सभी को सुनने वाले सभी श्रोता भाई बहनों को सोना का प्यार भरा नमस्कार।
0: सभी को पूर्व का भी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सोना बहन।
1: नमस्कार पूर्व भाई। और बताइए क्या हाल समाचार है।
0: बस एकदम सब हाल समाचार बढ़िया ही है, लेकिन ये मौसम अभी आप देखे होंगे कि सुबह में एकदम पानी वानी पड़ गया,
1: बारिश हो रही थी,
0: लेकिन दिन में उसी तरह धूप का जो किरण एकदम
1: तो
0: लग रहा था
1: कि महीना है तो वो अपनी तपिश तो दिखाएगी नहीं, तो पता कैसे चलेगा कि ये जेट का महीना
0: जी। लेकिन इसके बीच में जो हो रहा है ना सोना बहन, कि मौसम परिवर्तन के कारण हमारे शरीर में हमारे स्वास्थ्य में जो परिवर्तन आ रहा है इसका भी तो हमें विशेष ध्यान देना होगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन पूर्व भाई जो होना होता है वो तो हो ही जाता है, आप कितना भी ध्यान रखिएगा लेकिन अगर सावधानी नहीं बरतिएगा तो दुर्घटना तो घटेगी ही। और सावधानी तो हम बरतेंगे नहीं, क्योंकि हम धूप से आके ठंडा पानी पिएंगे ही। और जल्दी जल्दी धूप से आकर गांव घर में भी देखिएगा कि लोग पोखर में झप्पा झप कूद जाते हैं, नहा लेंगे। तो ये सब छोटी छोटी गलतियां तो होती रहेंगे और हमें सर्दी खांसी बुखार भी होता ही रहेगा। तो क्या है कि पूर्व भाई सावधानी तो बरतेंगे ही, और कहीं अगर सर्दी खांसी हुई भी है तो वो हमारे शरीर के कुछ विकारों को बाहर भी तो निकालती है।
0: विकारों को बाहर निकालती है सोना बहन, लेकिन ये लगातार जो मौसम का परिवर्तन है ये दिक्कत दे देता है। अगर आप छोटे बच्चों के साथ ये समस्या बार बार होगी तो ये समस्या बढ़ जाती है, और बड़े जो
1: बुजुर्ग है और जो गर्भवती महिलाएं हैं
0: जी उन पर विशेष असर पड़ता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बुरा असर पड़ता है। और सावधानी तो हर जन को बरतनी ही चाहिए।
0: बिल्कुल सोना बहन, इसमें होता क्या है ना कि जैसे अगर आपका इम्यूनिटी सिस्टम जो हमारा रोग प्रतिरोधक है, अगर वो मजबूत ना होना तो फिर लगातार बीमारियां आपके ऊपर अटैक करती हैं। सर्दी खांसी हुआ तो हो सकता है कि आपको और भी जो छोटी छोटी बीमारियां
1: भाई देखिएगा बताते हैं तब बात। गांव घर में छोटे छोटे बच्चे बारिश में भींगते हैं, घर काफी दूर होता है, पैदल सड़क पर चल रहे होते हैं, पगडंडी में चल रहे होते हैं, कपड़ा बदन में सूख जाता है
0: जी।
1: और ऐसे ही ये छोटे बच्चे ना मजबूत हो जाते हैं। कहते हैं कि हम कष्ट में अगर पड़ते हैं तो हम खुद को मजबूती लाते हैं, मजबूती प्रदान करते हैं। सोना को तपाते हैं तभी वो कर्णफूल बनता है, लोहे को भी हम तपाते हैं तभी वो मजबूत बनता है। तो अगर बचपन से किसी चीज को बहुत प्यार से रखेंगे तो वो मजबूत नहीं बन पाएगा। गांव घर में छोटे छोटे बच्चे देखिएगा खाली पैर में काफी किलोमीटर चल लेते हैं, धूप उन्हें बहुत ज्यादा नहीं सताती, और बारिश में तो कई जगह विद्यालयों के बच्चे भी छाता तो लेते ही नहीं है, बोलते क्या होगा वो तो बारिश में भींगे फिर तो हम हवा में सूख जाएंगे। तो ये उनके घर का नहीं, उनके जो जेनेटिक बोले जीन में है, वो धूप में सूखना और फिर बारिश में भींगना और उसके बाद उनका वो मजबूत शरीर बनना फौलाद की तरह
0: जी, जी,
1: तो
0: जी।
1: ये अपने बचपन से अगर घर आंगन में वैसा चलन है तब तो ठीक है, लेकिन शहर के बच्चे को देखिए जो जिन्हें हम बहुत बहुत प्यार से बहुत हर चीज से बचा बचा के रखते हैं तो उनकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है ना वो कमजोर पड़ती चली जाती है।
0: कई बार सोना बहन ये ना गांव और शहर को ना लेकर कई बार बच्चों के अनुवांशिक गुण पर, कई बार बच्चों के रखरखाव में स्वास्थ्य पर ये बात निर्भर करती है कि बच्चा कितना स्ट्रांग बन रहा है या फिर बच्चा कितना मजबूत और या फिर कितना कोमल
1: है।
0: ये कई बार खान पान पर भी विशेष असर डालता है। जब तक हम बच्चों को संतुलित भोजन ना दे तब तक उनका स्वास्थ्य तो ठीक रह ही नहीं सकता।
1: संतुलित के साथ साथ पौष्टिक भी हो और वो जो ताजगी भरा हो, जैसे गांव में खेत से चलकर आती है फल, जो सब्जियां हैं बगान से, आम है, लीची है, अमरूद है,
0: बिना केमिकल के,
1: गुहाल से जो अपने गुहाल के जो दूध मिलते हैं बच्चों को वो उनके शरीर को बहुत मजबूती प्रदान करता है।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: लेकिन ये शहरों में ये बहुत ही नदारद होता है, नहीं के बराबर मिल पाता है, और यही एक बहुत बड़ा कारण है जो शहरों में बच्चों को मजबूती प्रदान नहीं कर पाता है
0: जी। लेकिन सुना बहन हम अपने श्रोताओं को ये भी बता दें कि अगर शरीर के साथ मतलब अगर व्यायाम किया जाए, संतुलित भोजन हो
1: किया जाए
0: और साथ में हम साफ सफाई रखें तो इससे हमारा शरीर एकदम हिष्ट पुष्ट रह सकता है, चाहे वो गांव हो या फिर शहर हो, दोनों जगह पे ये बात बराबर रूप से
1: साफ सफाई तो हर जगह जरूरी है
0: जी।
1: और दूसरी बात है कि आज एक बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि ऐसे तो हमारा सारा दिन ही बहुत खास होता है
0: जी जी,
1: भाई, लेकिन आज जो है 11 जून बहुत खास इसलिए है कि आज ही के दिन मतलब 11 जून 1897 को शाहजहांपुर में जो अमर शहीद राम प्रसाद बिस्मिल जी का जन्म हुआ था।
0: अच्छा।
1: और इनके पिता थे मुरलीधर तिवारी और माता का नाम था मूलमती देवी।
0: अच्छा,
1: और
0: अच्छा।
1: वे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी धारा के एक प्रमुख सेनानी थे, एक प्रमुख स्तंभ थे, जिन्हें 30 वर्ष की आयु में ही ब्रिटिश सरकार ने फांसी दे दी। अद्भुत साहस, अटूट देशभक्ति और महान त्याग के प्रतीक थे बिस्मिल जी। उन्होंने मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए अपना समस्त जीवन समर्पित कर दिया।
0: जी, होता है सोना बहन, कई बार अभी हम बचपन की बात कर रहे थे। हाँ। कि बच्चों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। लेकिन 30 वर्ष कोई बहुत बड़ा उम्र नहीं होता है। 30 वर्ष में तो मम्मी पापा के लिए, माँ पिता के लिए तो हमेशा
1: शुरू ही करते हैं कि हमारा जीवन क्या है, जीवन के चढ़ाव उतार

0: जो सभी युवाओं को प्रेरित करते हैं कि हमारा जीवन काल भले छोटा रहा हो लेकिन वो सफल रहा हो
1: और महत्वपूर्ण रहा हो और पूरे देशवासियों के लिए सब दिन के लिए वो एक अमिट छाप छोड़कर चले गए हैं।
0: बिल्कुल।
1: और उनका जो जीवन था ना पूरो भाई, भारतीय भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक प्रेरणादायक अध्याय था जिसने असंख्य देशवासियों के भीतर राष्ट्र प्रेम की अलख प्रज्वलित कर दी। और उन्होंने जब जेल वाला जीवन भी जापन कर रहे थे उस समय जेल में रहते हुए गुप्त रूप से अपनी आत्मकथा बिस्मिल की आत्मकथा लिखी थी।
0: अच्छा।
1: यह 1929 में प्रकाशित तो हुई लेकिन तुरंत ही इस पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया। बाद में यह भारत के स्वतंत्र होने पर इसे दोबारा प्रकाशित भी किया गया था।
0: अच्छा।
1: इनका जो पैतृक गांव था वो बरबई जिला मुरैना मध्य प्रदेश जो आज भी है। और इन्होंने एक नारा दिया था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है,
0: देखना है जोर कितना
1: बाजुए कातल में है। मतलब उनके मन में ये जो सरफरोशी की तमन्ना थी, अपने देश के लिए जो भक्ति थी, वह कूट कूट के उनके अंतर हृदय तक थी। और उनके अंदर से यही एक आवाज आती थी कि देखते हैं उस कातिल के बाजू में कितना दम है, किस तरह वो हमारा शमन कर सकते हैं, हमारा दमन कर सकते हैं, हमारा शोषण कर सकते हैं।
0: बिल्कुल।
1: हम कभी भी नहीं झुकेंगे, कभी भी नहीं रुकेंगे।
0: जी सुनो बहन, आजादी का जो समय था ना, उस समय सबके ऊपर एक तरह का संकट आन पड़ा था। और ऐसे संकटों में, ऐसे मैं जिन्हें आइडियल मानता हूं, मैं जिन्हें आइकॉन कहता हूं कि आज के युवाओं का वो आइकॉन बने हैं, और वो अपने पूरे समाज को एकजुट करके रखना और अंग्रेजों के प्रति विद्रोह करना, अंग्रेजों के प्रति सवाल खड़े करना, क्योंकि वो हमारे भारत में ही आकर हम ही पे शासन करना चाह रहे थे, तो उसके प्रति आवाज उठाना ये एक बहुत बड़ी बात थी उस समय के लिए। और वो साथ साथ तो उन्होंने अपना जीवन काल तो जिया ही, वो माता पिता के भी बहुत प्यारे रहे और भगवान से भी उनको उतनी ही भक्ति थी, वो भगवान राम के भी आराधक माने जाते हैं।
1: और देखिये 9 अगस्त 1925 को बिस्मिल के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने हथियार खरीदने के लिए ब्रिटिश सरकार का जो खजाना ले जा रही थी ट्रेन, उसे वो लूटा। यही काकोरी कांड था। इस घटना के बाद उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया और उन पर मुकदमा भी चलाया गया। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें अन्य क्रांतिकारियों अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी और ठाकुर रोशन सिंह के साथ मौत की सजा सुना दी।
0: जी।
1: फांसी पर जाने से पहले उनकी आखिरी इच्छा जब पूछी गई, पता है उन्होंने क्या कहा था?
0: क्या कहा?
1: उन्होंने कहा कि मैं ब्रिटिश साम्राज्य का पतन चाहता हूँ। कि सबसे बड़ी बात है कि आखिरी इच्छा बहुत कीमती होती है, बहुत महत्वपूर्ण होती है, जो कि एक मौत के आगोश में सोने वाले व्यक्ति से पूछा जा रहा है कि उनकी आखिरी इच्छा क्या है। तब उन्होंने ये बताया कि ब्रिटिश साम्राज्य का पतन ही उनका आखिरी ख्वाहिश है, आखिरी इच्छा है। फांसी के बाद उन्हें गोरखपुर जेल में ही शहीद कर दिया और उनकी याद में आज भी उस जेल के बैरक को बिस्मिल कक्ष कहा जाता है।
0: बिल्कुल।
1: उन्होंने अपनी कई कविताएं भी हिंदी में लिखी थी।
0: जी।
1: सरफरोशी की तमन्ना, जिंदगी का राज मिट गया जब मिटने वाला, फिर कुछ अशआर, न चाहूं मान दुनिया में और हे मातृभूमि। उनकी जो भी रचनाएं हैं वो बहुत ही कीमती है, बहुत महत्वपूर्ण है।
0: बिल्कुल।
1: उन्हें पढ़कर आज के समाज में जो भी युवा हैं, हम सभी को चाहिए कि हम उन्हें पढ़कर और प्रेरित हो और अपने देश के प्रति हम नतमस्तक होकर, जो जहाँ भी जिस पद पर ही कार्यरत है, वहाँ अपने मन में देश प्रेम की भावना को लिए और समाज सेवा की भावना को लिए सत्य के राह पर अडिग होकर चलकर देश की सेवा करें।
0: बिल्कुल। और आज का दिन उनको डेडिकेटेड है कि हम सभी स्कूल में भी, क्योंकि अभी तो छुट्टियां चल रही हैं, लेकिन बहुत सारे जो कार्यशालाएं चल रही हैं, जो ग्रीष्म अवकाश में जो कार्यशाला चलती है, वहां पर इनके बारे में विशेष तरह के कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। स्कूल में बच्चों को निबंध लेखन से लेकर इनका चित्रकारी
1: प्रतियोगिता होती है,
0: आयोजन होते रहते हैं,
1: जिससे कि बच्चों में इन सारी चीजों के, इन सारे क्रांतिकारियों के बारे में जानकारी मिले, उन्हें भी प्रेरणा मिले, अपने देश के प्रति, राष्ट्र प्रेम के प्रति उनके अंदर भी कोई भावना जगे। इस वजह से उनके अंदर भावना जागृत करने के लिए निबंध प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है, चित्रकारी प्रतियोगिता आयोजित की जाती है, कई जगह अभिनय भी कराया जाता है पूरा भाई,
0: और खेल जैसे कार्यक्रम तो होते रहते हैं।
1: लेकिन
0: सुना बहन, आज का जो दिन है ना, आज अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस भी है।
1: अच्छा।
0: और आपको क्या लगता है, आपका सबसे पसंदीदा खेल कौन सा था जो आप बचपन में खेला करते थे?
1: भाई क्या बताएं, बचपन में तो छत पर हम लोग बहुत खेले हैं। घर का जो घरेलू खेल होता था, गांव घर में आज भी होता है, उठा बैठी, कित-कित खेलना, छुपन छुपाई खेलना।

0: कबड्डी खेलना
1: जी
0: और
1: जी
0: भाई लोगों के साथ बहुत, उस समय तो टीवी नहीं होता था और
1: जी
0: होता भी था तो हम लोगों को बहुत प्रतिबंध था टीवी देखने में,
1: जी
0: ठीक है
1: जी
0: ना। तो उस समय हम लोग क्या करते थे, भाई बहन सब एक मोहल्ले के जुट होकर के क्रिकेट ले लिए, कोई बॉल कर रहा है, कोई बैट मार रहा है,
1: जी जी
0: बैडमिंटन खेल रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा चलन जो अपने गाँव गाँव घर के जो खेल थे
1: जी
0: उस, जब बहुत छोटे थे तो हम लोग कोना कोनी कोन कोना खेलते थे, तो
1: जी
0: शाम के बाद सारे मोहल्ले के बच्चे एक फील्ड में जमा हो जाते थे,
1: जी
0: एक मैदान, किसी का छत, किसी का घर, और वहां सभी बच्चे जमा होंगे और तय होता था पहले से कि आज कौन सा वाला खेल खेलना है।
1: जी
0: इससे
1: जी
0: क्या होता था कि दिन भर की थकान भी जाती थी, बहुत मजा आता था, और कहा जाए तो जो व्यायाम होता है वो भी हो
1: बिल्कुल
0: जाता
1: बिल्कुल।
0: था।
1: और क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस है सोना बहन, तो अभी देखिएगा कि खेलों को ना सिमट कर हम उसे मोबाइल फोन पर ले आए हैं। मोबाइल फोन पर बहुत सारे बच्चे आजकल
0: बहुत
1: गेम
0: दुख
1: खेल
0: की
1: रहे
0: बात
1: हैं।
0: है पूरो भाई,
1: जी
0: क्योंकि हम लोग जब बच्चे थे तो उसमें मोबाइल उपलब्ध नहीं था,
1: जी
0: टीवी था, वो लैंडलाइन की व्यवस्था थी, लेकिन ये जो एंड्रॉयड फोन की व्यवस्था तो थी नहीं,
1: जी जी
0: और बच्चों के हाथ तक तो ये बहुत दूर की बात है।
1: जी जी
0: तो बच्चे सब एक दूसरे से मिलकर अंताक्षरी भी खेलते थे, इस तरह से संगीत का माहौल भी बनता था, और घरों में शाम मेला में भजन संध्या भी हो जाता था,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: एक
1: बिल्कुल
0: दूसरे के प्रति सद्भावना की जो भावना जागृत होती थी, एक दूसरे के लिए दया भावना भी जागृत, कोई खेलते खेलते गिर गया तो सभी बच्चे वहां जमा होकर उसका सहयोग भी करते थे।
1: जी
0: और
1: जी
0: खेल ऐसा चीज है ना पीरो भाई, कि जब छोटा बच्चा होता है वो स्वयं खेलना शुरू कर देता है, तो
1: जी
0: कहिए कि ये भगवान की देन है कि बच्चे खेलते हैं और माँ उन्हें हंसाती है, खिलाती है, और इस तरह से वो बच्चे बड़े होते हैं खेल खेल में,
1: जी जी
0: है ना। लेकिन क्या हो जाता है आज के जमाने में कि बच्चे थोड़े बड़े होकर माता पिता से तो अलग होने ही लगते हैं, साथ ही साथ समाज के अन्य बच्चों से भी कटने लगे हैं,
1: जी जी
0: और
1: जी
0: एक अलग सा अपना दुनिया बना लेते हैं, कमरे में एक छोटा सा बेड और उस पर एक छोटा सा मोबाइल, और वो
1: जी
0: कमरा बंद करके मोबाइल के अंदर
1: जी
0: पता नहीं कौन से अंधेरी दुनिया की तलाश में लगे रहते
1: बिल्कुल सोना
0: हैं।
1: बहन। इसी चिंता को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 25 मार्च 2004 को एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किया। 11 जून को आधिकारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस घोषित किया गया। और आज के दिन के महत्व इसी में है कि हम ज्यादातर मोबाइल गेम, कंप्यूटर गेम में ना जाकर हम जब तक मैदान में उतर कर खेल ना
0: पूरा
1: खेले
0: भाई
1: तब
0: एक
1: तक।
0: बात अभी बताएंगे, अभी वैभव सूर्यवंशी की बात बहुत चल रही है,
1: जी
0: तो वैभव सूर्यवंशी आखिर इतना बड़ा क्रिकेटर अगर आज सामने आया है तो कहीं ना कहीं उनके माता पिता का योगदान है,
1: बिल्कुल
0: और
1: बिल्कुल
0: अगर हर माता पिता अपने बच्चों के साथ 2 घंटा 1 घंटा समय दे खेलने के लिए,
1: जी
0: बच्चा जो भी खेल रहा है माता पिता उसके साथ उठा बैठी खेलने लगे, छुपन छुपाई खेलने लगे, बैट बॉल खेलने लगे, थोड़े बच्चे बन जाते हैं ना अपने बच्चों के लिए, है ना, तो इससे क्या होगा कि बच्चों में खेल के प्रति एक आसक्ति पैदा होगी
1: बिल्कुल
0: और बच्चे
1: बिल्कुल
0: मोबाइल से दूर हो पाएंगे,
1: दूर होंगे और
0: उन्हें
1: उनके
0: खेलने
1: स्वास्थ्य
0: के
1: पर
0: लिए
1: भी
0: ना
1: विशेष असर
0: मित्र नहीं
1: पड़ेगा।
0: मिल पाता है,
1: जी
0: खेल मित्र मिलना बहुत जरूरी होता है।
1: जी जी जी जी तो अब तो हो गई कि अब खेल भी हम लोगों ने खेल लिया।
0: हाँ
1: अब थोड़ा सा अपने श्रोताओं को एक देवी गीत सुनवाते हैं। आइए
0: बिल्कुल,
1: हम लोग
0: थोड़ी
1: मिलकर
0: भक्ति भाव में
1: जी
0: डूबते हैं और सुनते हैं एक प्यारा सा
1: गायक
0: देवी गीत,
1: कलाकार हैं
0: रेणु भारतीय।

0: They say some cars blend in, but what if yours always stand out? But what if yours always stood out? The Maruti Suzuki Fronks. Experience the thrill of the 1.0-liter turbo engine built for those who crave performance. Join over 4 lakh proud Fronks owners starting at just rupees 6.85 lakh. So, why follow when you can lead? Visit your nearest Nexa showroom today. Nexa.
1: सुनो ना,
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे?
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
1: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
3: जी संदेश के बाद एक बार फिर से

0: अपने श्रोताओं का स्वागत करते हैं अपने कार्यक्रम ग्राम
1: और इसके
0: जगत।
1: पहले हम लोग बहुत ही ऐसा भक्तिभावपूर्ण देवी गीत सुन रहे थे।
0: जी सुना बहन, अभी जो आप देखिएगा कि जो गर्मी का मौसम आ रहा है ना, जो गर्मी का दिन आ रहा है, तो इसमें जो है ना, हमें हमेशा सब कोई कहते हैं, अपने बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि पानी पीते रहना चाहिए।
1: बिल्कुल पीते रहना चाहिए, क्योंकि कंठ सूखता है, जीभ भी सूखता है और प्यास बहुत ज्यादा लगती है, क्योंकि हमारे अंदर का जो पानी होता है ना, वो पसीने के माध्यम से बाहर निकल जाता है।
0: जी जी।
1: और ऐसे में अगर हम अपने शरीर के जो पानी का संतुलन नहीं बना के रखेंगे, तो उस पानी का संतुलन असंतुलित हो जाएगा और हम पेट की बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं। तो अब साफ पानी पिए और बार बार पानी पिए, नींबू नमक चीनी का पानी अवश्य पीते रहें, और साथ ही अगर आपके घर के आसपास बेल का शरबत मिलता हो, तरबूज का पानी है, खीरा, ककड़ी, गाजर, ये सब जो चीजें हैं वो लेते रहना चाहिए। आइए इसी विषय पर विस्तार से जानते हैं कि गर्मी के पेय पदार्थ कौन कौन से हैं। वार्ताकार है
0: पुष्पलता सिन्हा।
2: ग्रीष्म ऋतु में सूरज की प्रचंड गर्मी की वजह से जगत एवं शरीर का जलयांश शुष्क होने लगता है। पाचन शक्ति पहले से घट जाती है, लोगों की सामर्थ्य में कमी आती है, लेकिन वायु में बढ़ोतरी होने से शरीर में उष्णता बढ़ जाती है। गर्मी के मौसम में सेहत को ठीक रखने के लिए कुछ न कुछ उपाय करना जरूरी हो जाता है। गर्मी व धूप के असर का शमन करने के लिए कोई शीतल पेय पीता है तो कोई शीतल जल पीकर अपनी अकुलाहट को दूर करता है। बेहतर है कि सवेरे कोई भी ठंडा पेय पदार्थ उपयोग करना चाहिए। प्रातःकाल नाश्ते के बाद कोई भी पेय पदार्थ या शरबत बिना बर्फ के सिर्फ शीतल और ताज़ा जल के साथ लेना चाहिए। ऐसा संभव न हो पाए तो शाम को 4-5 बजे के लगभग कोई भी पेय पदार्थ अवश्य लेना चाहिए। ग्रीष्म ऋतु अनेकों तरह के फलों का एक ऐसा मौसम है जिसमें अपने अपने पसंद के पेय पदार्थों का भी उपयोग कर सकते हैं। इस मौसम में नींबू का शिकंजी, पुदीने की शरबत, नारियल पानी, गन्ने का रस, शहतूत, फालसा, संतरा, अनार, खस, चंदन, आम, लीची, तरबूज, खरबूजा, जामुन, बेल, अनानास, सूखे आंवले का शरबत तैयार करके अपने बच्चे, परिवारों और आने वाले अतिथियों को गर्मी से निजात, शरीर की शीतलता, मन की शांति, दिमागी ताकत, दिल को सुकून दे सकते हैं। नींबू का शरबत 1/2 kg चीनी की 2 तार की चाशनी बनाकर उसमें दूध डालकर मैल निकाल लें। चाशनी जब साफ हो जाए तो छानकर उसमें नींबू का रस मिलाकर शीशी में भरकर रखें। यह शरबत अधिक समय तक खराब नहीं होता है। अब इसे 1 गिलास पानी में 2 चम्मच मिलाकर जरूरत के अनुसार उपयोग कर सकते हैं। जायके के लिए इसमें जरा सा सेंधा नमक, 1-2 काली मिर्च पाउडर मिलाकर पी सकते हैं। गर्मी में यह स्फूर्ति तथा शीतलता देने वाला ठंडा पेय है जो कम खर्चीला और शुद्धता में बेहतर है। नींबू में निहित प्रचुर मात्रा में विटामिन सी रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ाता है। यह अस्कर्वी रोग में प्रतिबंधक का काम करता है। शरीर के विष को नष्ट करने के लिए नींबू में अद्भुत क्षमता है, इसलिए नींबू का शरबत किसी भी प्रकार से लाभदायक ही है। इसका खट्टापन शरीर को हानि नहीं करता है। पुदीने की शरबत 50 ग्राम पुदीने की पत्ती का रस निकालकर छान कर रख लें। अब 1/2 kg चीनी की 2 तार की चाशनी बनाकर पुदीने के रस को मिला दें। स्वाद के लिए 1 या 2 नींबू का रस भी मिला दें। अब इसे शीशी में भरकर फ्रिज में रखें और जरूरत पर इसे ताजे जल में मिलाकर शरबत बनाकर पी सकते हैं। यह पेट के लिए बहुत उपयोगी पेय पदार्थ है। इससे कब्ज, वायु, अजीर्ण, शरीर की दाह जैसे व्याधियों को दूर करने में अत्यंत उपयोगी है। बेल का शरबत पके बेल का गुदा 1 kg, चीनी 2 kg, पानी 2 लीटर लें। बेल के गुदे को 1 kg पानी के सहारे मसलकर उसका बीज और रेशा अलग कर दें। अब इस गुदे को धीमी आंच पर 15 से 20 मिनट तक पकाएं। इसे उतारकर अब 1 लीटर जल में चीनी का 2 तार की चाशनी बनाकर पकाए हुए बेल को डालकर 5 मिनट तक चलाएं। इसे उतारकर ठंडा होने पर बोतल में भरकर रखें। यह शरबत गाढ़ा होता है, इसलिए सेवन करते वक्त पानी का इस्तेमाल जरूरत के अनुसार करें। ग्रीष्म ऋतु में बेल का शरबत जीवनदायिनी है। यह शरीर की गर्मी को शांत और पेट को साफ करता है। तरबूज 200 ग्राम पके लाल तरबूज का रस निकालकर उसमें पीसी अदरक 1/4 चम्मच, शक्कर 1 चम्मच, सेंधा नमक चुटकी भर लेकर सभी को मिलाकर एक सार कर दें। थोड़ी ठंडाई करने के लिए इसे फ्रिज में रखें, लेकिन फ्रिज में रखा पानी न मिलाएं। 1 गिलास तरबूज का रस दिलो दिमाग में नव स्फूर्ति लाने वाला स्वादिष्ट पेय है। इसमें विटामिन ए, बी, सी काफ़ी मात्रा में है। इससे अधिकतम फायदा उठाने के लिए गुदे के बदले इसके रस ही को पीना चाहिए। यह मूत्राशय के रोग को दूर करता है।

गैस के रोग, रक्तचाप, जोड़ों का दर्द, मूत्राशय की जलन को दूर करने में सहायक है। इसमें फल शर्करा अधिक होने से शक्ति एवं स्फूर्ति बढ़ती है। दमा के रोगियों को तरबूज का रस नहीं पीना चाहिए। खरबूजे का शरबत। खरबूजे के गुदे को निकालकर सौंफ, काली मिर्च और गुलाब की पंखुड़ी के साथ मिक्सी में पीस लें। अब इसमें थोड़ा दूध और केवड़ा के कुछ बूंद मिलाकर पिएं। यह दिमाग के लिए बहुत ही लाभदायक है। सूखे आंवले का शरबत। 10 ग्राम सूखे आंवले को रात भर भिगोकर रखें। बीज को अलग कर देना चाहिए। अब मिक्सी में आंवले को कुछ पुदीने के पत्तियों के साथ पीसकर रख लें। आधा किलो चीनी की 2 तार की चाशनी बनाएं और उसमें पीसी हुई आंवले और पुदीने को मिलाकर थोड़ी देर आग पर चढ़ावें। 2-3 मिनट तक पकने के बाद उतार लें। ठंडा होने पर शीशी में भरें, फ्रिज में रख दें। इसे रोज 1 गिलास पानी में मिलाकर पिएं। शरीर में स्फूर्ति, चेहरे में चमक, बालों में स्वस्थता, आँखों की रोशनी तेज होती है, हृदय को बल मिलता है, शरीर को स्वस्थ रखने, रक्त को शुद्ध करने, बाहरी कृमियों के आक्रमण से बचाता है। आंवले में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। लीवर और पित्ताशय के कार्य में समुचित सहायता करता है। पके आम का शरबत। पके आम का गुदा निकालकर इसमें थोड़ी मात्रा में चीनी और इलायची मिलाकर मिक्सी में पीस लें। अब इसे शीतल जल में मिक्स करके या गर्म किया हुआ ठंडा दूध में मिलाकर पिएं। दूध के साथ इसका सेवन औषधि का काम करता है। कमजोर आंतें, पुरानी पेचिश, संग्रहणी, रक्तचाप, पुरानी कब्ज, आमाशय के विकार इस प्रयोग से दूर होता है। पेट को साफ करने का अद्भुत कार्य करता है। आम रक्तवर्धक है। हृदय, मस्तिष्क तथा फेफड़ों को बल मिलता है। कच्चे आम का पना। कच्चे आम को प्रेशर कुकर में उबालकर या आग में पकाकर छिलका उतार लें। साफ ताज़ा जल में हाथ से मसलकर गुठली अलग कर दें। अब इसमें सादा नमक, काला नमक, जीरा पाउडर, थोड़ी मात्रा में चीनी मिलाकर अच्छी तरह से घोल। इस प्रकार आम का पना तैयार हो जाता है। यह लू का अति उत्तम दवा है। इसे पीने से लू के मरीज ठीक हो जाते हैं और इसके सेवन करते रहने से लू भी नहीं लगता है। साथ ही ग्रीष्म ऋतु में उभरने वाली व्याधियों से राहत देता है। बादाम का शरबत। बादाम 7 दाने, मुनक्का 7 दाने, काली मिर्च 7 दाने, बड़ी इलायची के 7 दाने, धनिया 7 दाने। सभी को भिगोकर बादाम के छिलके और मुनक्के के बीज को अलग कर दें। सभी को पीस कर मिला लें। अब इसे ताजे जल में मिलाकर थोड़ी शक्कर मिलाकर पिएं। यह दिमाग को ताजगी तथा देह में स्फूर्ति प्रदान करता है। गन्ने का रस। बाजार में गन्ने का रस आसानी से मिल जाता है। इसमें पुदीने का रस, नींबू का रस मिलाकर पीना चाहिए। ज़्यादा ठंडई के लिए थोड़ी मात्रा में बर्फ मिला सकते हैं, लेकिन बर्फ का उपयोग कम से कम मात्रा में करना चाहिए। नारियल का पानी। नारियल को शीतल माना जाता है। नारियल के जल में नींबू का रस निचोड़ा जाए तो वह उत्तम औषधि बन जाती है। सुबह सुबह चाय के बदले नारियल के पानी में नींबू का रस मिलाकर पीने से शरीर की सारी गर्मी मूत्र एवं मल के साथ निकल जाती है और रक्त शुद्ध होता है। नारियल के पानी में पोटेशियम और क्लोरीन प्राकृतिक रूप में है। हृदय, फेफड़ा और किडनी के रोगी के लिए इसे पीना लाभप्रद है। हैजे में नारियल पानी अत्यंत ही उपयोगी औषधि है। नारियल पानी बाजार में आसानी से उपलब्ध है। इसे पीने से ताजगी और शरीर में शक्ति मिलता है। लीची का शरबत। लीची के छिलके और बीज को हटाकर गुदे को शक्कर के साथ मिक्सी में पीसकर निकाल लेना चाहिए। अब इसे ताजे पानी के साथ मिलाकर शरबत के रूप। छिले हुए अनानास को टुकड़े करके मिक्सी में पीस लें। अब इसे निकालकर छानकर इसमें थोड़ी मात्रा में नमक, काली मिर्च पाउडर, 1 चुटकी थोड़ी मात्रा में शक्कर मिलाकर शीतल जल में डालें और पिएं। यह प्रोटीन युक्त पदार्थों को पचाने का अद्भुत क्षमता रखता है। अनानास के रस में थोड़ी मात्रा में पानी मिलाकर जरूर पीना चाहिए। यह पचने में थोड़ा भारी है, अतः इसे पीने के 2-2.5 घंटे तक कुछ भी भोजन के रूप में नहीं लें। अनानास का रस खूब स्वादिष्ट शीतल पेय है। शरीर की अंतःस्रावी ग्रंथियों को पुष्ट रखता है। महिलाओं की मासिक संबंधी अनियमितता भी दूर करता है। इसमें फॉस्फोरिक एसिड, लौह, मैग्नीशियम, सोडियम क्लोराइड, पोटाश के क्षार, विटामिन ए और सी होता है। यह ब्रोंकाइटिस, कफ, दमा, अजीर्ण, उच्च रक्तचाप से पीड़ितों के लिए गुणकारी है। 1 अनानास का रस, सेब का रस, 1/2 बूंद अदरक का रस, 1 चम्मच शहद मिलाकर अनानास की स्वादिष्ट कॉकटेल तैयार की जा सकती है। कब्ज, पीलिया, पेट के जीर्ण रोगों के लिए अनानास का रस लाभप्रद है। अनार का रस। लाल अनार के दाने को निकालकर मिक्सी में पीसकर रस निकाल लें। इसे छानकर थोड़ी शक्कर

0: नमक काली मिर्च पाउडर मिलाकर पानी के साथ ले सकते हैं। अनार का रस कृमिनाशक होता है। अनार का शरबत शीतल, दिमाग को ताकत देने वाला, लीवर की शक्ति बढ़ाता है। यह रक्त शक्तिवर्धक होता है। अनार के रस में दुगुना गाजर का रस मिलाने से स्वादिष्ट शरबत तैयार हो जाता है। अनार के रस में शहद मिलाने से पित्त का शमन होता है। मधुर अनार त्रिदोषनाशक, शुक्रवर्धक एवं बलप्रद है। ग्रीष्म ऋतु में प्यास का शमन करता है। सेब का रस, 2 सेब का ताज़ा रस निकालकर इसमें कुछ मिलाए बगैर ही पीना चाहिए। इसे खाली पेट पीना चाहिए। यह अमाशय एवं यकृत में पहुँचते ही ताजगी और स्फूर्ति की अनुभूति जगाता है। सेब के रस में विटामिन एवं खनिज तत्व अधिक मात्रा में होते हैं। विटामिन ए, B1, B2, B3, पी और सी से युक्त सेब हृदय रोग एवं उच्च रक्तचाप के रोगियों के लिए बेहद उपयोगी है। हर सुबह खाली पेट लगभग 200 से 250 ग्राम ताज़ा सेब का रस पिया जाए तो वह शरीर को समस्त प्रकार के विष से मुक्त कर देता है। सेब के रस से पीलिया से बिगड़ा हुआ लीवर भी कार्यशील हो जाता है। इस रस को पचाने की आवश्यकता नहीं है। यह प्री डाइजेस्टेड आहार है। इन सब पेय पदार्थों का इस्तेमाल हमारे देश में पुरातन काल से है। यह लाभकारी पेय पदार्थ है जो दिलो दिमाग को शीतलता तथा तरावट महसूस कराती है।
1: जी, पुष्पलता सिन्हा जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने गर्मी
2: बहुत
1: में
2: अच्छी
1: जो
2: जानकारी
1: जी जी अपने
2: और बहुत कारगर सिद्ध होगी तभी जब हम अपने घर में इन पेय पदार्थ को बना के हम इनका सेवन करें और लाभान्वित हो
1: जी। और सुना बहन कुछ मौसम सूचना सुनेंगे, लेकिन उससे पहले सुन लेंगे कुछ संदेश, फिर हम लोग मौसम सूचना पे।
2: बिल्कुल।
3: Choose a diesel SUV for the power, the pull, the road presence. Now experience all of it without the noise, the smoke, the vibration. Meet the electric SUV, the e-Vitara. Get instant acceleration at every tap. Smooth, silent drives on every road with ADAS level 2, 7 airbags, a range of 534 km and running costs of under rupee 1 per kilometer. This is everything you love about an electric SUV. Upgrade to the electric SUV, the e-Vitara today. Visit your nearest Nexa showroom.
4: Nexa.
5: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा तब कितना कष्ट घटा होगा।
6: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
5: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: अंतराल के बाद एक बार फिर आप सभी श्रोता भाई बहनों का स्वागत है आप ही के स्प्रे कार्यक्रम ग्राम जगत खेती गृहस्थी में। और अब कुछ सूचना मौसम विज्ञान विभाग के तरफ से। पूर्वानुमान अवधि 11 से 14 जून के दौरान जिले में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने एवं हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान है। 13 जून को भारी वर्षा होने की भी संभावना है। अधिकतम तापमान 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75 प्रतिशत और दोपहर में 20 से 25 प्रतिशत रहने की संभावना है। अगले 2 दिनों तक 12 से 18 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दक्षिण पूर्वी हवा चलने का अनुमान है। लंबी अवधि वाले अब कुछ सलाह समसामयिक सुझाव। धान के विषय में लंबी अवधि वाले धान की किस्में जैसे सवौर श्री, स्वर्णा सब, 1 राजेंद्र मंसूरी, राजेंद्र श्वेता, स्वर्णा एवं बीपीटी 5204 की नर्सरी आसमान साफ रहने पर स्थापित करें। स्वस्थ पौध के लिए नर्सरी में सड़े हुए गोबर की खाद का व्यवहार अवश्य करें। नर्सरी में क्यारी की चौड़ाई 1.25 से 1.5 मीटर तथा लंबाई सुविधानुसार रखें। 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में रोपाई हेतु 800 से 1000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की नर्सरी अवश्य तैयार करें। बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से करें। बीज गिराने के पूर्व बीजोपचार अवश्य कर ले। जितने क्षेत्र में धान का रोप करना हो उसके दशांश हिस्सों में बीज गिराएं। बीज को गिराने से पहले 1.5 ग्राम बॉबस्टिन प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। खरीफ मक्का की बुआई आसमान साफ रहने पर ही करें। खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टर की दर से व्यवहार करें। और थोड़ी जानकारी, लीची तोड़ने के बाद खासकर बरसात शुरू होने के पहले बगीचे की जुताई करें। खाद उर्वरक का प्रयोग आसमान साफ रहने पर ही

0: करें। और पशुपालन भाइयों के लिए है, गलाघोटू एवं लंगड़ी रोग से बचाव के लिए टीकाकरण कराने की आवश्यकता है। सभी दुधारू पशुओं में टीकाकरण अवश्य कराएं। नए गेहूं में भूसा को खिलाएं, पूर्व करीब 2 घंटा पानी में फुला लें और 50 ग्राम खनिज मिश्रण, 50 ग्राम नमक, चारा दाना अवश्य मिलाकर।
1: बिल्कुल सोना बहन, ये तो हो गई हमने मौसम सूचना अपने श्रोताओं को दे दी। अब सुनते हैं कुछ संदेश और फिर उसके बाद हम एक झूमर सुनेंगे। गायक कलाकार होंगी रेनू भारतीय।
0: जी
1: सोना बहन, तो अब एक हम लोग सबसे पहले छोटा संदेश सुन लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग एक झूमर सुनने
0: की बात कर रहे थे आप पूरा भाई। तो हम लोग संदेशों को सुनते हैं और फिर हम लोग झूमर सुन लेंगे।
2: Future feels effortless with the Grand Vitara, because some journeys deserve more than just movement. They deserve comfort, presence and peace of mind. This is your opportunity to bring home the Grand Vitara at just ₹8,999 per month. Yes, ₹8,999 per month. Step into a world of refined performance and hybrid technology, along with 6 airbags as standard. Less fuel stress, more driving pleasure. Visit your nearest Nexa showroom today. TNC apply.
3: Nexa. जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
4: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: जी, तो ये थी झूमर। और अब श्रोताओं, समय हो चुका है प्रायोजित कार्यक्रम का। आइए प्रायोजित कार्यक्रम सुनते हैं, आयुष्मान।
1: आयुष्मान ये कार्यक्रम हम लेकर आ रहे हैं नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी, जमुआर सासाराम के सौजन्य से।

0: पाक्षिक स्वास्थ्य रेडियो पत्रिका आयुष्मान में आप सबों का एक बार फिर से राजेश, जी हाँ मेरा नाम राजेश है, स्वागत करता है। ये कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आते हैं, आपके घर आंगन में लेकर आते हैं कि आप स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और जिंदगी का भरपूर मजा लेते रहें। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा करते हैं आपके इस कार्यक्रम में। बड़े हों, बुजुर्ग हों, बच्चे हों, महिलाएं हों, कोई भी हो, सारे लोगों की बात होती है, हेल्दी रहने की बात होती है। विशेषज्ञ डॉक्टर आते हैं, जानकारियां दिलवाते हैं। जी हाँ, ये कार्यक्रम हम लेकर आते हैं गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय के मातहत चलने वाला मेडिकल कॉलेज, नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल जमुआर सासाराम रोहतास बिहार की तरफ से। बहुत ही उम्दा अस्पताल, 1200 बेड का ये अस्पताल है और NMCH अपने आप में पूरे इलाके के हेल्थ सेक्टर को संभाले है। जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, आप भी इसका लाभ उठा सकते हैं। आयुष्मान कार्ड पर भी यहां इलाज किया जाता है। ऐसे इस अस्पताल की एक विशेषता बताएं कि यहां से पैसे के लिए कोई वापस नहीं जाता। नोट करें नंबर कि अगर आपके पास कोई समस्या है, घर में, बाहर, उसके बाहर, उसके बाहर, यानी जहां भी समस्या है, इस फोन नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, पूछताछ कर सकते हैं और सही लगे तो जाकर अपना इलाज भी करवा सकते हैं। नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का नंबर है 6206803040। जी हाँ, हम एक बार फिर से रिपीट करते हैं 6206803040। आप दिल खोलकर, हाँ, कहीं से संकोच नहीं कीजिएगा कि हाँ क्या इस समय फोन करें कि कब फोन करें। नहीं नहीं, हमने आगे से आपके लिए ये नंबर दिया है, फोन करने के लिए नंबर दिया है, तो शर्माने की या सकुचाने की या संकोच करने की या आहा इफ बट ये सोचने की जरूरत नहीं है। आप स्वस्थ तंदुरुस्त रहें, हमारा पहला और अंतिम मकसद यही है। हम बच्चों की भी बात करते हैं, समय समय पर डॉक्टर रजत कालरा को भी लेकर आते हैं क्योंकि बच्चों के इलाज के लिए, उसके हृदय के इलाज के लिए अगर कोई समस्या है बच्चे के हृदय में, तो नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में बहुत ही उम्दा व्यवस्था है। आज हमारे साथ रजत कालरा है, लेकिन हम कहेंगे कि वो खुद से अपना परिचय दें क्योंकि बहुत सारे लोग, हाँ, इस कार्यक्रम से नए नए जुड़ रहे हैं क्योंकि फोन कॉल्स बताते हैं। कोई कहता है पहली बार मैंने सुना, कोई दूसरी बार सुना, कोई कहता है हमने आपको फोन किया था। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है और आप अपना परिचय पहले खुद से दीजिए पूरे बिहार और झारखंड के लोगों को।
1: सभी श्रोताओं को नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रजत कालरा है। मैं एक हार्ट सर्जन हूँ, यानी मैं हार्ट के ऑपरेशन करता हूँ, खासकर बच्चों को जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, उसका हम नारायण मेडिकल कॉलेज सासाराम में अब इलाज कर रहे हैं। मैंने अपनी ट्रेनिंग दिल्ली एम्स से करी थी और उसके बाद खासकर बच्चों की ट्रेनिंग के विषय में मैं अमेरिका से ट्रेनिंग लेके वापस इंडिया आया और नारायण मेडिकल कॉलेज सासाराम में हम बच्चों के हार्ट का फ्री इलाज कर रहे हैं।
0: डॉक्टर साहब, बातचीत की शुरुआत करते हैं और बच्चों की बात होगी, उसके हार्ट की बात होगी, हृदय की बात होगी, लेकिन कुछ अटपटा सा नहीं लगता है कि बच्चों में हार्ट की बीमारी, हाँ क्या कहना चाहिएगा इस पर?
1: देखिए, आज से 10 साल पहले तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि बच्चों में हार्ट की प्रॉब्लम होना अविश्वास था, खासकर गाँव जैसे जगहों पर। और अब धीरे धीरे खासकर डिजिटल मीडिया की प्रेजेंस की वजह से लोगों में अवेयरनेस तो आ रही है कि हाँ, रेडियो के वैसे कि भाई ऐसी अवेयरनेस है कि बच्चों को भी हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है, बट अब मेन प्रॉब्लम है उसका डायग्नोसिस करना। तो अब धीरे धीरे जैसे जैसे सुविधाएं बढ़ रही हैं, आउटरीच प्रोग्राम बढ़ रहे हैं, तो अब समय पे डायग्नोसिस हो पाता है जिससे उनको माता पिता को इतला दे पाए कि भाई इस वजह से बीमारी है, और फिर वो सोचते हैं, आगे हिम्मत करते हैं, कुछ इलाज कराते हैं, कुछ ओपिनियंस देते हैं। बट पहले और अब में ये फर्क है कि धीरे धीरे अवेयरनेस आ रही है।
0: क्या लोगों में विश्वास आ रहा है क्या?
1: देखिए, जैसे जैसे बच्चे ठीक होके जा रहे हैं, कम्युनिटी में कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, और पहले हमारे पास लोकल पेशेंट आते थे, अब सीतामढ़ी, मोतिहारी, झारखंड के अलग अलग इलाकों में, बनारस से, यहाँ तक कि दिल्ली NCR से भी पेशेंट आ रहे हैं।
0: कार्यक्रम चल रहा है आयुष्मान, पाक्षिक स्वास्थ्य रेडियो पत्रिका आयुष्मान में राजेश हूँ, आप सबों के घर आंगन में आपके आपके आपके आकाशवाणी केंद्र से ये कार्यक्रम प्रसारित हो रहा है। सारे लोगों तक पहुंचना चाहते हैं, खास करके जब बच्चों की बात आती है, आप बड़ों की भी बात आती है, तो हम चाहते हैं कि आप सेहतमंद रहें, जानकारियां आप तक भरपूर रहे कि कोई समस्या आए तो आप सही जगह जा सकें। एक फोन नंबर भी बताते हैं कि आप इसे डायल करके जानकारियां ले सकते हैं। नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का नंबर है 6206803040। जी हाँ, हम एक बार फिर से रिपीट करते हैं 6206803040। और ये कार्यक्रम हम लेकर आते हैं नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल जमुआर सासाराम रोहतास बिहार की तरफ से। डॉक्टर साहब एक बात बताइए, ये बच्चों के लिए जो हार्ट की समस्या या इस तरीके का जो आपने आपके नारायण मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में जो चिकित्सा दी जाती है, अकेले या आपकी पूरी टीम है, इसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए पूरे बिहार वालों को, क्योंकि विश्वास एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है हेल्थ सेक्टर में, खास करके और खास करके जब बच्चों की बात आती है।
1: कहते हैं ना, प्लेयर इज एज गुड एज अ टीम, है ना। तो ऐसे ही केवल डॉक्टर के अकेले होने से हार्ट का इलाज नहीं हो पाता, तो पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, सुविधा चाहिए, टीम चाहिए, मैन पावर चाहिए, वो सब इस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, तभी हम डिलीवर कर पा रहे हैं। और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि पूरे देश भर में कुछ ही गिने चुने सेंटर हैं जहाँ पे बच्चों का इलाज सब्सिडाइज कॉस्ट या फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है, खासकर जहाँ पे वजन का कोई क्राइटेरिया नहीं है। बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पे 10 किलो के ऊपर के बच्चे, उन्हीं का इलाज हो सकता है, लेकिन हमारे सेंटर में हम वजन पे कोई मायने नहीं रहता, बच्चे की गंभीरता पे देखा जाता है, चाहे 2 किलो का हो, 2.5 किलो का हो, और अगर बहुत सीरियस है जिसको इलाज की जरूरत है, हम लोग वो भी आयुष्मान में फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं।
0: इंफ्रास्ट्रक्चर, हाँ, आपके जो साधन हैं, हाँ, उसमें आप कहाँ स्टैंड करते हैं, क्या क्या है यहाँ?
1: देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज यहाँ पे जो भी रिक्वायरमेंट्स है, मॉडलर ओटी हैं, आईसीयूज में हेपा फिल्टर लगे हुए हैं, मॉडलर आईसीयूज हैं, वेंटिलेटर अप टू डेट है, यानी सारा इक्विपमेंट जो भी एक एडवांस कार्डियक सेंटर में होना चाहिए, देश में नहीं विदेश में, वो भी हमारे पास है। ये एक क्वार्टनरी केयर सेंटर है, यानी यहाँ पे सीरियस मरीजों के इलाज किया जाता है, तो बाय वर्चू ऑफ दैट हम 24 घंटे सेवाओं के लिए उपलब्ध हैं।
0: अच्छा, एक बात डॉक्टर साहब ये बताइए कि बच्चों में हार्ट की समस्या कब आती है, क्या गर्भ में या गर्भ से बाहर जब बच्चा जन्म लेता है, और क्यों क्यों होता है ये ऐसी तरीके की समस्या बच्चों में, कैसे आती है?
1: जो बच्चों को हार्ट की प्रॉब्लम होती है, जब बच्चे पनप रहा होता है गर्भ में, तभी हो जाता है। तो ये पता तभी लगता है ऑफकोर्स जब बच्चा पैदा हो जाता है, लेकिन आजकल एंटीनेटल इकोज होते हैं, यानी जब बच्चा गर्भ में होता है तो इको के जरिए बच्चे के हार्ट की सेहत भी देखी जा सकती है, ताकि ये प्लान करके डिलीवर कर सके। अब दूसरा, ये होता क्यों है? तो हर 3 या 4 बच्चे, हर 1000 में से 3 या 4 बच्चों को ये कंजेनाइटल मैलफॉर्मेशन, यानी हार्ट के बनावट में दिक्कत आ जाती है। तो इसका कोई एक कारण नहीं है, मल्टीफैक्टोरियल बोलते हैं, तो इसीलिए ये केवल भारत में ही नहीं, विकसित देशों से भी हटाई नहीं जा सकती, तो वहाँ पे भी उतना ही इंसिडेंस है जितना हमारे यहाँ है, तो कोई इसका एक विशेष कारण नहीं है। और ये इसलिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अगर बच्चे को हार्ट की प्रॉब्लम हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि माँ बाप में दोष ढूंढा जाए।
0: कोई कारण पता नहीं चल पाया है इसका, डॉक्टर साहब का कहना है। कार्यक्रम चल रहा है पाक्षिक स्वास्थ्य रेडियो पत्रिका आयुष्मान, बच्चों के हृदय रोग क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, क्या इलाज होता है, कार्डियक सर्जरी क्या होती है, ये सारी चीज़ों पर डॉक्टर रजत कालरा से बातचीत चल रही है। और ये कार्यक्रम

0: हम लेकर आते हैं नारायण मेडिकल कॉलेज सासाराम रोहतास बिहार की तरफ से। नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का नंबर है 6206803040। जी हाँ, हम एक बार फिर से रिपीट करते हैं 6206803040। ये नंबर है, इस पर आप डायल करके जानकारियां हेल्थ से संबंधित ले सकते हैं या नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में क्या क्या सेवाएं दी जाती है इसके विषय में भी जानकारियां ली जा सकती है। वैसे हम आपको बताएं कि आयुष्मान कार्ड से यहां इलाज होता है। डॉक्टर कालरा, एक छोटा सा सवाल, क्या मैल न्यूट्रिशन भी इसका कारण हो सकता है? क्या हम ढूंढ सकते हैं क्या?
1: देखिए, मैल न्यूट्रिशन जहां तक बोला जाए, जैसे फोलिक एसिड डेफिशिएंसी है, उसकी वजह से कुछ हद तक हो सकता है। बट बहुत सारे समाज में लोग हैं जो मैल नरिश नहीं है, खासकर माता पिता। हाँ, फॉरेन में भी होता है, तो फिर वहाँ पे क्यों हो रहा है ये, राइट? तो कहीं पे मल्टीफैक्टोरियल बोलते हैं, थोड़ा सा जेनेटिक्स, थोड़ा सा खान पान, थोड़ा सा रहन सहन, तो मल्टीपल चीज़ें बनकर ये कॉज करती है। तो किसी एक चीज़ को एलिमिनेट कर दें तो ऐसा समझ में नहीं आ रहा जिससे इसका इंसिडेंस कम कर सकें। हाँ, ये ज़रूर है कि फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन, कुछ दवाइयाँ जैसे वॉरफरिन हो गया, लिथियम हो गया, इनको अवॉइड करना चाहिए, जिनकी वजह से पता है हमको कि हार्ट के बनावट में प्रॉब्लम हो सकता है। बट बहुत सारे कारण हैं, सबको नहीं, एक पिन पॉइंट से नहीं बोल सकते कि इसकी वजह से ही हार्ट की प्रॉब्लम।
0: अच्छा, एक बात डॉक्टर रजत कालरा, फटाफट, हाँ, लोगों तक जानकारियां पहुंचाना बहुत जरूरी है, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं?
1: अभी हम लोग एक तो आउटरीच ओपीडीज कर रहे हैं, खासकर सीतामढ़ी, मोतिहारी, फिर जमुई, इधर देवघर, बनारस, जौनपुर, तो इन जगहों पे जाकर कम्युनिटी में लेवल पे जाकर स्क्रीनिंग करके वो कर रहे हैं। फिर दूसरा ये है कि जगह जगह एडवर्टाइजमेंट्स यानी पोस्टर्स लगा रहे हैं ताकि लोगों को पता लगे कि यहाँ पे सुविधा उपलब्ध है। और तीसरा है कि ऑडियो मीडिया जैसे रेडियो या प्रिंट मीडिया, अखबार में एडवर्टाइजमेंट्स, इनके जरिए कोशिश कर रहे हैं। बट आई थिंक बेस्ट इज कम्युनिटी मैसेज, जितने बच्चे ठीक होकर जाएंगे वो एक दूसरे को बताएंगे, माउथ पब्लिसिटी, उसी से ही कॉन्फिडेंस। और
0: बहुत अच्छी पहल है डॉक्टर रजत कालरा, आप ओपीडीज में जा रहे हैं, अलग अलग शहरों में जाकर बता रहे हैं एडवर्टीजमेंट, और इस रेडियो कार्यक्रम के माध्यम से भी हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। हमारी रीच हर एक सप्ताह करोड़ों लोगों तक होती है ना, जिसमें हम बताते हैं कि गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय के तहत जो नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल है, क्या क्या सुविधाएं दे रहा है, जन सेवा में खड़ा है। बहरहाल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ढेर सारे सवाल शेष रह गए हैं, अगले एपिसोड में हम आपसे बातचीत कर जानेंगे। पाक्षिक स्वास्थ्य रेडियो पत्रिका में अभी बातचीत चल रही थी डॉक्टर रजत कालरा से, बच्चों के डॉक्टर हैं। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि चिकित्सा का जो स्थान है ना, वो भरोसा है, और आपका भरोसा हमें मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है। और सबसे बड़ी बात है कि नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल जमुआर सासाराम रोहतास में, जी हाँ, आयुष्मान कार्ड से इलाज होता है, पैसे के चलते कोई भी इंसान वापस नहीं लौटता। नंबर नोट करें, नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का नंबर है 6206803040। जी हाँ, हम एक बार फिर से रिपीट करते हैं 6206803040। तो बस आज हमें, यानी अपने दोस्त राजेश को दीजिए इजाजत, अगले सप्ताह नहीं 15 दिनों के बाद फिर से मुलाकात होगी, क्योंकि ये है पाक्षिक स्वास्थ्य रेडियो पत्रिका आयुष्मान। हाँ, संकोच नहीं कीजिएगा, चलें, स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए, और जिंदगी का भरपूर मजा लेते रहिए।
2: आयुष्मान,
0: नमस्कार।
2: ये कार्यक्रम हम लेकर आ रहे थे नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी जमुआर सासाराम के सौजन्य से।
3: श्रोताओं, ये था हमारा कार्यक्रम आयुष्मान प्रायोजित कार्यक्रम। अब समय हो चुका है कि आप लोगों से विदा लिया जाए, सभी को पूर्व का नमस्कार,
4: सबको सोना का भी नमस्कार।

ग्राम जगत खेती गृहस्थी कार्यक्रम संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। शाम के 7 बजने को हैं। अब प्रादेशिक समाचार होंगे हमारे रांची केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने नीति आयोग की बैठक में विकसित राष्ट्र के लिए सामूहिक प्रयास पर दिया बल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र से सहयोग की जताई अपेक्षा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदित्य साहू ने जमशेदपुर में गिनाई केंद्र सरकार की उपलब्धियां। कहा, केंद्र से राज्य को मिल रहा पर्याप्त आर्थिक सहयोग। राष्ट्रीय यक्ष्मा उन्मूलन कार्यक्रम के तहत रांची में 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला शुरू। स्वास्थ्य मंत्री ने टीबी मुक्त झारखंड पर दिया जोर। राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में प्री मॉनसून बारिश से गर्मी से राहत। पड़ोसी राज्य बिहार में मॉनसून की दस्तक, राज्य में 2-3 दिनों में करेगा प्रवेश। और श्रीलंका दौरे के लिए अंडर-19 भारतीय महिला क्रिकेट टीम की घोषणा। झारखंड की कुमारी पलक का चयन। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आज नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक हुई। बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि जैसे जैसे भारत विकसित भारत के लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहा है, ऐसे में केंद्र और राज्य सरकारों की सामूहिक जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्यों के बीच सहयोग, संवाद और विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नीति आयोग की बैठक में झारखंड को केवल खनिज उत्पादक राज्य नहीं बल्कि मैन्युफैक्चरिंग हब और नॉलेज इकोनॉमी के रूप में विकसित करने का संकल्प दोहराया। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, कृषि, खेल और डिजिटल गवर्नेंस के क्षेत्र में राज्य सरकार की पहलों की जानकारी देते हुए केंद्र से विभिन्न परियोजनाओं और संस्थानों के लिए सहयोग की मांग की। मुख्यमंत्री ने जल जीवन मिशन की बाकी राशि जारी करने, कोयला कंपनियों के बकाया भुगतान, मेडिकल कॉलेजों की स्वीकृति तथा भूमि अधिग्रहण प्रक्रियाओं के सरलीकरण का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि झारखंड के संसाधनों को मानव पूंजी से जोड़कर राज्य को विकसित भारत 2047 के लक्ष्य में महत्वपूर्ण भागीदार बनाया जाएगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू ने जमशेदपुर में आज प्रेस वार्ता आयोजित कर केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और निर्देशन में राज्यों को पर्याप्त केंद्रीय सहायता राशि दी जा रही है। श्री साहू ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत झारखंड समेत देश भर के 11 करोड़ किसानों को सालाना 6000 रुपए की सहायता राशि दी जा रही है।
1: 81 करोड़ों को केंद्र द्वारा यहाँ पर राशन भेजा जाता है, क्रियान्वयन करने की जिम्मेवारी राज्य सरकार की है। आज 7 करोड़ लोगों को 5 करोड़ से अधिक की राशि आयुष्मान कार्ड से लोगों को सुविधा दिया जा रहा है। अगर गरीब कल्याण की बात करें तो सरकार ने जन धन योजना के माध्यम से 58 करोड़ से ज्यादा बैंक खाते खोले गए हैं।
0: स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने राष्ट्रीय यक्ष्मा उन्मूलन कार्यक्रम के तहत रांची में नेशनल टास्क फोर्स की बैठक सह टीबी मुक्त भारत पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने भरोसा दिलाया कि जमीनी स्तर पर कार्य करने वालों की मदद से वर्ष 2029 तक टीबी मुक्त भारत अभियान के लक्ष्य को पूरा कर लिया जाएगा।
2: टीबी कैसे दूर करें इस राज्य से, क्योंकि झारखंड में अभी तक लगभग 6000 से अधिक पेशेंट हैं हमारे। तो मैंने तमाम जो हमारे सांसद हैं, विधायक हैं, मंत्रियों से मैंने आग्रह किया है कि आपके गांव में भी यदि कोई पेशेंट है तो उनको आप लोग चिन्हित करें। हम लोग मुफ्त में टीबी की इलाज करते हैं, 1000 रुपये हम लोग हर मंत्री मिलाते हैं, जो पेशेंट आते हैं उनको देते हैं। जहाँ तक कि हम लोग ने एक फ्रेंड जो बीमारी टीबी ठीक हो जाता है तो वैसे मरीज को हम लोग गाँव में भेजते हैं। तो आप प्रसार करो कि कहाँ पर आपका पेशेंट है, ये बीमारी जो है लाइलाज बीमारी है, इसे घबराना नहीं है। और भारत सरकार ने कहा था कि 2025 में टीबी मुक्त करेंगे, लेकिन 2025 हुआ नहीं, हम लोग 2029

0: में हम झारखंड को टीबी मुक्त झारखंड बनाएंगे।
1: राज्यसभा चुनाव के सिलसिले में आगामी 18 जून को मतदान होगा और उसी दिन परिणाम जारी होंगे। नाम वापसी के अंतिम दिन आज किसी भी प्रत्याशी ने नामांकन वापस नहीं लिया। अब झारखंड में दो सीटों के लिए होने वाले चुनाव के लिए झामुमो के वैद्यनाथ राम, कांग्रेस के प्रणव झा और एनडीए समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी के बीच मुकाबला तय है। राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण से पहले मतदाताओं की मैपिंग प्रक्रिया 15 जून तक जारी रहेगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि अब तक राज्य के 2 करोड़ से अधिक मतदाताओं की मैपिंग पूरी हो चुकी है। 23 मई को अनमैप्ड मतदाताओं की सूची प्रकाशित होने के बाद 14 लाख से अधिक मतदाताओं ने अपनी मैपिंग कराई। श्री कुमार ने अनमैप्ड मतदाताओं से जल्द मैपिंग प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राज्य के 3 प्रतिष्ठित लोक कलाकारों को संयुक्त रूप से संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित करेंगी। इन कलाकारों में बूटन देवी, सोमवारी देवी और सरायकेला खरसामा के 6 मुखौटा शिल्पकार सुशांत कुमार महापात्र शामिल हैं। श्री महापात्र ने इस उपलब्धि के लिए केंद्र सरकार का आभार जताया है।
2: मैं एक पारंपरिक घराना का हूँ, ये मुझे तो दुख भी लग रहा है कि मुझे बहुत देर में मिला हूँ। मैं छो के लिए समर्पित हूँ, छो के लिए काम करूंगा। ये हमारा परंपरा है, 3-4 पीढ़ी हो गया। मेरे बड़े चाचा थे जो सरायकेला के जगन्नाथ मंदिर को जितनी भी मूर्तियां हैं वो बनाए हैं।
1: पश्चिम एशिया में उत्पन्न संकट के बीच केंद्र सरकार ने आश्वस्त किया है कि देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और नेचुरल गैस की सप्लाई स्थिर है। पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने आज अंतर मंत्रालयीय प्रेस वार्ता

0: रही है। अफवाहों से बचे, जहां पर भी संभव हो वहां अल्टरनेट सोर्स का उपयोग करने का प्रयत्न करें।
1: प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना जामताड़ा जिले के लोगों विशेषकर गरीब मरीजों के लिए वरदान साबित हो रहा है। जरूरतमंद लोग जन औषधि केंद्र में सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां ले रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार प्रकट कर रहे हैं।
2: प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना माननीय प्रधानमंत्री द्वारा चलाई गई है, जो गरीबों के लिए बहुत फायदेमंद है। यहाँ सस्ती और बहुत अच्छी दवाइयाँ मिल रही है, जो गरीबों को बहुत आवश्यकता अनुसार काम कर रही है। प्रधानमंत्री को धन्यवाद करती हूँ।
1: रांची के नगड़ी मौजा में प्रस्तावित रिम्स 2 के लिए जमीन अधिग्रहण के विरोध में स्थानीय ग्रामीणों ने आज विरोध मार्च निकाला। ग्रामीणों की योजना मुख्यमंत्री आवास घेरने की थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें मोराबादी में रोक दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि राज्य सरकार विकास के नाम पर किसानों की कृषि योग्य भूमि छीन रही है।
3: बने आदिवासी समाज कभी भी विरोध नहीं किया है। पूरे झारखंड में यहाँ पे आदिवासियों का ही जमीन दिया गया है। 11-12 में भाजपा सरकार इस जमीन को छीन रही थी, उसके बाद शिबू सोरेन जी उनके आह्वान पे ये जमीन को बचाया गया है। अगर सच्ची श्रद्धांजलि देना है हमारे विषम गुरु को, तो ये नगरी का जमीन 227 एकड़ खेतीहारी जमीन को पूरे आदिवासी समाज को उपहार देने का काम करे।
1: राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में आज दोपहर बाद तेज हवा और गरज के साथ प्री मॉनसून की मूसलाधार बारिश हुई। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार पड़ोसी राज्य बिहार में आज मॉनसून ने दस्तक दी है। इसके राज्य में 2-3 दिनों में प्रवेश करने की संभावना है। मौसम केंद्र के अनुसार 17 जून तक तेज हवा और गरज के साथ बारिश के आसार हैं। भारतीय क्रिकेट बोर्ड की महिला चयन समिति ने 3 T20 श्रृंखला के लिए आज 19 वर्ष से कम आयु वर्ग के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी। श्रीलंका दौरे के लिए घोषित 15 सदस्यीय इस टीम में झारखंड की कुमारी पलक का भी चयन हुआ है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने नीति आयोग की बैठक में विकसित राष्ट्र के लिए सामूहिक प्रयास पर दिया बल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र से सहयोग की जताई अपेक्षा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदित्य साहू ने जमशेदपुर में गिनाई केंद्र सरकार की उपलब्धियां, कहा केंद्र से राज्य को मिल रहा पर्याप्त आर्थिक सहयोग। राष्ट्रीय यक्ष्मा उन्मूलन कार्यक्रम के तहत रांची में 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला शुरू। स्वास्थ्य मंत्री ने टीबी मुक्त झारखंड पर दिया जोर। राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में प्री मॉनसून बारिश से गर्मी से राहत। पड़ोसी राज्य बिहार में मॉनसून की दस्तक, राज्य में 2-3 दिनों में करेगा प्रवेश। और श्रीलंका दौरे के लिए अंडर 19 भारतीय महिला क्रिकेट टीम की घोषणा, झारखंड की कुमारी पलक का चयन। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सवेरे 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
4: आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 7:11 हुए हैं। लोकगीतों के कार्यक्रम में आज गायक कलाकार हैं बासुकी प्रसाद यादव। आरंभ में इनके स्वर में आपको सुनवाते हैं एक देवी गीत।

लोकगीतों का यह कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आज गायक कलाकार थे बासुकी प्रसाद यादव। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे पटना केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: अभी आप सुन रहे थे ग्रामीण कार्यक्रम चौपाल। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी पटना से। कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।
1: और इस गीत के बाद
0: छाया गीत में

is All India Radio. The news read by Anuja Kumar.

AIR at 90. एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली,

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विकसित भारत के सपने को साकार करने में केंद्र और राज्य सरकारों का सामूहिक प्रयास महत्वपूर्ण। विधान परिषद की 10 सीटों के लिए सभी उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित। एनडीए के खाते में 9 और महागठबंधन के खाते में आई 1 सीट। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों में आकाशवाणी और दूरदर्शन की पहुंच मजबूत करने का प्रयास कर रही है। और बिहार में मॉनसून नीति दस्तक। किशनगंज के तैयबपुर में रिकॉर्ड 148 मिलीमीटर बारिश हुई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक अस्थिरता के दौर में भी भारत आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ विकास पथ पर अग्रसर है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश विकसित भारत के लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहा है, ऐसे में केंद्र और राज्य सरकारों की सामूहिक जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। श्री मोदी ने कहा कि राज्यों के बीच सहयोग, संवाद और विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि नीति आयोग इसमें सहयोग के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, ताकि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच विचारों का समुचित आदान प्रदान हो सके और विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में सामूहिक प्रयासों को बल मिले। बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उपराज्यपाल शामिल थे। बिहार विधान परिषद की 10 सीटों के लिए सभी उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। द्विवार्षिक चुनाव के तहत 9 और 1 सीट के उपचुनाव के लिए नामांकन वापसी की समय सीमा समाप्त होने के बाद इन सभी उम्मीदवारों के निर्विरोध निर्वाचन की घोषणा की गई। सभी प्रत्याशियों को जीत

0: का प्रमाण पत्र सौंप दिया गया है। एक रिपोर्ट।
1: 10 सीटों पर हुए चुनाव में एनडीए के खाते में 9 जबकि महागठबंधन के खाते में 1 सीट आई है। भाजपा से भोजपुरी फिल्मों के जाने माने अभिनेता पवन सिंह, संजय मयूख, अनिल कुमार ठाकुर और शीला पंडित को जीत मिली है। जदयू से स्वास्थ्य मंत्री निशांत, भारती मेहता, शिवरानी देवी प्रजापति और ललन प्रसाद विजयी हुए हैं। ललन प्रसाद पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे से रिक्त हुई सीट के लिए उम्मीदवार थे। चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से पार्टी के कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष अशरफ अंसारी को जीत मिली है। महागठबंधन की ओर से 1 सीट पर राजद के सुनील कुमार सिंह विजयी हुए हैं। निधिश्री, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: जीत का प्रमाण पत्र लेने के बाद स्वास्थ्य मंत्री निशांत ने कहा कि वे बिहार को विकसित और समृद्ध बनाने के लिए काम करेंगे।
2: पिताजी की जो नीतियां रही हैं, उनकी जो विचारधारा रही है विकास को लेकर बिहार का, उसको मैं जारी रखने की कोशिश करूंगा। मेरा सौभाग्य है कि जिस सदन में पिताजी बैठे उसमें मैं बैठूंगा और जो भी बिहार के लिए, समृद्ध बिहार, विकसित बिहार बनाने के लिए जो भी उसे हो सकेगा मैं करूंगा। जो भी पिताजी के बिहार को समृद्ध बनाने का सपना उसे पूरा करने की।
0: राजद के नवनिर्वाचित विधान पार्षद सुनील कुमार सिंह ने कहा कि वे पार्टी की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे।
3: मैं पुनः आज वादा करता हूं कि जिस विश्वास के साथ राष्ट्रीय जनता दल ने मुझे सदन में भेजा है उसमें 100% खरा उतरने का काम करूंगा। मुद्दा चाहे किसानों का हो, मुद्दा चाहे बेरोजगारों का हो, मुद्दा चाहे अल्पसंख्यकों का हो, कभी भी राष्ट्रीय जनता दल का झंडा सदन में झुकने नहीं दूंगा।
0: सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार आकाशवाणी और दूरदर्शन के आधुनिकीकरण के लिए प्रतिबद्ध है। जयपुर में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि अगले 1000 दिनों में मास्टर प्लान बनाकर आकाशवाणी और दूरदर्शन का कायाकल्प किया जाएगा।
4: मैं निवेदन करूंगा आकाशवाणी के सभी साथियों से और विशेषकर डीजी साहब से, राजीव जी से और हमारे प्रसार भारती के चेयरमैन श्री प्रसून जोशी जी से कि अब हम एक नए तरीके से सोचें आकाशवाणी के बारे में। हम आज के समय के हिसाब से आकाशवाणी को डिजिटल फर्स्ट और हाइपर लोकल, इन दो सूत्रों में बांधे। जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म हमारे पास आज अवेलेबल है, अपना खुद का वेव्स ओटीटी है, उस प्लेटफॉर्म को यूज करें। लोकल आर्ट, लोकल संस्कृति, लोकल खान पान को आगे लाने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनाए। अगले 1000 दिनों में एक मास्टर प्लान बना के आकाशवाणी और दूरदर्शन का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन करें। आपको पूरा फ्रीडम है, जो आप कहोगे वो पॉलिसी बनेगी। पॉलिसी बनाने वाले आप, इंप्लीमेंट करने वाले आप।
0: राज्य सरकार ने कहा है कि सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों के कोचिंग, निजी ट्यूशन और व्यावसायिक संस्थानों में काम करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सज्जन आर ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र निर्गत किया है। पत्र में कहा गया है कि ऐसे शिक्षकों के खिलाफ कठोर और अनुशासनिक कार्रवाई की जाए। राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने राजस्व महाअभियान के तहत प्राप्त आवेदनों के निपटारे के लिए आज से सभी अंचलों में विशेष अभियान की शुरुआत की है। 17 जून तक चलने वाले इस अभियान के दौरान 46 लाख आवेदनों के निष्पादन का लक्ष्य है। राज्य सरकार ने जल जीवन मिशन 2.0 के तहत केंद्र सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। पटना में आयोजित कार्यक्रम में विभागीय सचिवों ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री संजय कुमार सिंह ने बताया कि इस योजना के तहत जल संकट प्रभावित क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति का विस्तार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार से 18,894 करोड़ रुपए उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। इस राशि से आर्सेनिक, फ्लोराइड और आयरन प्रभावित क्षेत्रों में भी शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। पटना के डुमरी में 100 एकड़ में खेल सिटी का निर्माण किया जाएगा। खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने आज विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अरवल, मधेपुरा और किशनगंज जिले में 15 जून से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस शुरू हो जाएगा। साथ ही सिवान, मुंगेर और जमुई में फुटबॉल के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएंगे। बैठक में BCCI द्वारा चयनित बिहार के खिलाड़ियों को मेडल लॉ नौकरी पाओ योजना के तहत शामिल करने के प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। बिहार में मॉनसून ने दस्तक दे दी है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार दक्षिण पश्चिम मॉनसून किशनगंज, अररिया, सुपौल, पूर्णिया, कटिहार और मधुबनी जिले में पहुंच चुका है। इस बार मॉनसून अपने तय समय से 6 दिन पहले बिहार पहुंचा है। विभाग ने कहा है कि मॉनसून के प्रसार की अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं और अगले 2 से 3 दिनों के दौरान पूरे राज्य में मॉनसून की बारिश शुरू हो जाएगी। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान मॉनसून के प्रभाव से किशनगंज जिले में बहुत भारी बारिश दर्ज की गई। जिले के तैयबपुर में रिकॉर्ड 148 मिलीमीटर बारिश हुई है। विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि कल राज्य के अधिकतर हिस्सों में बारिश की संभावना है।
1: पूर्वी चंपारण, गोपालगंज एवं पश्चिमी चंपारण जिलों में 1-2 स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात तथा भारी वर्षा के साथ तेज हवा 50 से 60 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। सारण एवं सिवान जिलों में 1-2 स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 50 से 60 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। अररिया, दरभंगा, किशनगंज, मधेपुरा, मधुबनी, शिवहर, सीतामढ़ी एवं सुपौल जिलों में 1-2 स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात तथा भारी वर्षा के साथ तेज हवा 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। कटिहार, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, सहरसा, समस्तीपुर एवं वैशाली जिलों में 1-2 स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: इधर बारिश के दौरान वज्रपात की घटना में मधेपुरा जिले के खापुर पंचायत के परेल गांव में एक दंपति की मौत हो गई। ग्रामीणों ने बताया कि दंपति मक्का फसल की तैयारी के लिए खेत में गए थे और उसी दौरान यह घटना हुई। सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसले में कहा है कि गृहिणियों का कार्य केवल घरेलू कामकाज तक सीमित नहीं है, बल्कि वे परिवारों और भावी पीढ़ियों के निर्माण में अतुलनीय योगदान देती हैं। न्यायालय ने कहा कि घर का प्रबंधन करने वाली महिलाओं को केवल गृहिणी कहकर संबोधित नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि यह शब्द समाज में उनके योगदान को कम आंकता है। न्यायमूर्ति संजय करोल और एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि देखभाल और घर के प्रबंधन सहित घरेलू काम अत्यंत महत्वपूर्ण है। आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने हाजीपुर नगर परिषद के लेखापाल मनीष कुमार के 2 ठिकानों पर छापेमारी की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार उनके हाजीपुर के बागमली स्थित आवास और नगर परिषद कार्यालय परिसर स्थित सरकारी आवास पर छापेमारी की गई। आय से अधिक संपत्ति के मामले में यह कार्रवाई की गई है। छापेमारी के दौरान लाखों रुपए मूल्य के आभूषण, आलिशान घर, संपत्ति के कागजात और वाहन बरामद किए गए। केंद्र सरकार की प्रमुख पहल प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत एनटीपीसी पार्ट में 48 प्रशिक्षुओं का प्रशिक्षण प्रारंभ हो गया है। इंडक्शन कार्यक्रम में एनटीपीसी पार्ट के कार्यकारी निदेशक सी सत्यराम कृष्णा ने प्रशिक्षुओं को संबोधित करते हुए उन्हें सीखने और पेशेवर विकास के इस अवसर का भरपूर लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष भवन रावत ने पटना के बोरिंग रोड में मेन होल की सफाई के दौरान एक मजदूर की मौत और एक अन्य के बीमार होने के मामले में राज्य सरकार से 30 लाख रुपए मुआवजे की मांग की है। साथ ही उन्होंने दोषियों पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज करने की भी मांग की। रोहतास जिले के डेहरी स्थित पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में दौड़ के दौरान 5 प्रशिक्षु जवान भीषण गर्मी के चलते बेहोश हो गए। इनमें से एक प्रशिक्षु सिपाही श्रीराम कुमार की पटना एम्स में इलाज के दौरान मौत हो गई। बांका जिले के रजौन थाना क्षेत्र अंतर्गत कठरंग गांव में अवैध बालू खनन के खिलाफ कार्रवाई करने

0: पहुंची खनन विभाग की टीम पर बालू माफिया ने हमला कर दिया। इस हमले में एक जवान घायल हो गए। पश्चिम चंपारण जिले के बगहा पुलिस जिला से फेसबुक पर हथियार संग फोटो वायरल करने के मामले में 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। इनके पास से एक देशी पिस्तौल भी बरामद किया गया। बक्सर जिले के डुमरांव और राजपुर प्रखंड में विशेष धावा दल ने छापेमारी अभियान चलाकर 4 बाल श्रमिकों को मुक्त कराया। मधुबनी जिले के जयनगर में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर 3 अवैध लॉटरी कारोबारियों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। शेखपुरा के एसपी बलिराम कुमार चौधरी ने आज ऑपरेशन मुस्कान के तहत 25 लोगों के गुमशुदा मोबाइल उन्हें सौंपे। मुंगेर के किला परिसर स्थित इंडोर स्टेडियम में आज से 4 दिवसीय पुस्तक मेले की शुरुआत हुई। मेले में विभिन्न प्रकाशकों ने अपने स्टॉल लगाए हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विकसित भारत के सपने को साकार करने में केंद्र और राज्य सरकारों का सामूहिक प्रयास महत्वपूर्ण। विधान परिषद की 10 सीटों के लिए सभी उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित। एनडीए के खाते में 9 और महागठबंधन के खाते में आई 1 सीट। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों में आकाशवाणी और दूरदर्शन की पहुंच मजबूत करने का प्रयास कर रही है। और बिहार में मॉनसून ने दी दस्तक, किशनगंज के तैयबपुर में रिकॉर्ड 148 मिलीमीटर बारिश हुई। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: और इस गीत के बाद

This is All India Radio. The news read by Anuja Kumar.

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: ये आकाशवाणी पटना है, प्रस्तुत है अरवल जिले की हलचल। आलेख हमारे संवाददाता चंद्रभूषण कुमार का है और इसे पेश कर रहे हैं निखिल आनंद गिरी। आज सुबह अरवल जिले के अधिकांश हिस्सों में तेज आंधी के साथ बारिश होने से पिछले कुछ दिनों से अरवल जिला में पड़ रही भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली है। अचानक बदले मौसम ने जहां एक ओर लोगों को गर्मी से राहत दी है, वहीं दूसरी ओर तेज हवाओं के कारण जिले के कई इलाकों में पेड़ और बिजली के खंभे गिर गए, जिससे यातायात बाधित हो गया। इधर आंधी तूफान की वजह से जिले के विभिन्न हिस्सों में बिजली आपूर्ति भी प्रभावित हुई है। गौरतलब है कि इससे पहले पूरा जिला भीषण गर्मी और उमस की चपेट में था। बारिश के कारण जिले के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। इधर रोहिणी नक्षत्र समाप्त होने के बाद अरवल जिले में इन दिनों किसान अपने खेतों में धान के बिचड़े डालने का कार्य युद्ध स्तर पर शुरू कर चुके हैं। जिला कृषि पदाधिकारी ने बताया कि जिले में 46,154 हेक्टेयर में खरीफ की खेती करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके अंतर्गत धान की सबसे अधिक 45,573 हेक्टेयर में खेती का लक्ष्य रखा गया है, जबकि अरहर और अन्य दलहन फसलों की खेती 373 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिला कृषि पदाधिकारी ने बताया कि मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जा रहा है तथा बीज पर अनुदान भी दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिले में 187 क्विंटल धान बीज किसानों को अनुदानित दर पर उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए पंजीकृत किसान बिहार राज्य बीज निगम के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर बीज प्राप्त कर सकते हैं। वहीं जिले में उर्वरक की पर्याप्त उपलब्धता है। इसके तहत यूरिया 3,133 मेट्रिक टन, DAP 713 मेट्रिक टन सहित अन्य उर्वरक किसानों को निर्धारित दर पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली NDA सरकार के 12 वर्ष पूरा होने पर जिला भाजपा कार्यालय में स्थानीय विधायक मनोज कुमार के नेतृत्व में समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सरकार की नीतियों और किए गए कार्यों पर चर्चा की गई। वहीं भारतीय जनता पार्टी जिला इकाई की ओर से बीते दिनों 2 दिवसीय भाजपा प्रशिक्षण अभियान का शुभारंभ किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य पार्टी कार्यकर्ताओं को संगठनात्मक कार्यों, सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं तथा पार्टी की विचारधारा से और अधिक प्रभावी ढंग से जोड़ना बताया गया। भाजपा के वरिष्ठ नेता और सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव, सांसद शिवेश राम तथा विधायक मनोज शर्मा ने संयुक्त रूप से इस अभियान कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर नेताओं ने कहा कि प्रशिक्षण शिविर कार्यकर्ताओं के लिए संगठन की रीढ़ को मजबूत करने का माध्यम है, जिससे वे जनता के बीच सरकार की नीतियों और उपलब्धियों को बेहतर तरीके से पहुंचा सकें। राज्य सरकार के सबका सम्मान जीवन आसान कार्यक्रम के तहत जिले के आम लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए प्रत्येक माह के प्रथम और तृतीय मंगलवार को सहयोग शिविर का आयोजन किया जा रहा है। बीते दिनों जिले के करपी प्रखंड के खजूरी पंचायत में प्रभारी मंत्री दीपक प्रकाश द्वारा सहयोग शिविर का उद्घाटन किया गया तथा प्राप्त आवेदनों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निष्पादन करने का निर्देश दिया गया। वहीं जिले के प्रभारी सचिव अमीशा जैन ने कुर्था प्रखंड के मानिकपुर और निघवा पंचायत में सहयोग शिविर का निरीक्षण किया। जिले में आयोजित शिविरों में कुल 1,328 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 478 आवेदनों का निष्पादन मौके पर ही कर दिया गया। शेष आवेदनों को 30 दिनों के भीतर गुणवत्तापूर्ण निष्पादन करने का निर्देश प्रभारी सचिव द्वारा दिया गया। बीते दिनों उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी द्वारा अरवल शहर को जाम की समस्या से निजात दिलाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण परियोजना का शिलान्यास किया गया। उन्होंने कोरियम से बैदराबाद तक सोन नहर के किनारे लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले बाईपास का विधिवत शिलान्यास किया। इस बाईपास के निर्माण से शहर में यातायात का दबाव कम होने की उम्मीद है, जिससे आवागमन अधिक सुगम और सुरक्षित हो सकेगा। साथ ही यह परियोजना स्थानीय विकास को गति देने और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को मजबूत करने में भी सहायक होगी। इस अवसर पर पूर्व सांसद अरुण कुमार और स्थानीय विधायक मनोज शर्मा सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। जिले में मधुश्रावणी मलमास मेला पारंपरिक धार्मिक आस्था, श्रद्धा और सांस्कृतिक उल्लास के साथ भव्य रूप से आयोजित किया जा रहा है। यह मेला स्थानीय धार्मिक परंपराओं और लोक आस्था का महत्वपूर्ण प्रतीक माना जाता है। जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होकर पूजा अर्चना और विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेते हैं। बीते 17 मई को इस मेले का विधिवत ध्वजारोहण स्थानीय विधायक मनोज शर्मा, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में किया गया। अरवल जिले में महिला विकास निगम द्वारा समाहरणालय स्थित सभागार में बीते दिनों वर्ष 2026 की मैट्रिक और इंटर परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली छात्राओं को प्रशस्ति पत्र और मेमेंटो देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर जिला पदाधिकारी अमृषा वैश ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत महिलाओं का शिक्षित होना समाज के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। अभी आप सुन रहे थे अरवल जिले की हलचल। आलेख हमारे संवाददाता चंद्रभूषण कुमार का था और इसे प्रस्तुत कर रहे थे निखिल आनंद गिरी।
3: हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.1 मेगा

हर्ट्ज पर 7:52 हुए हैं। विश्व सुगम संगीत का कार्यक्रम सुर लहरी। आज गायक कलाकार हैं अभय कुमार सुमन। आरंभ में इनके स्वर में सुनते हैं ब्रह्मानंद की ये भक्ति रचना।

मीराबाई की इस भक्ति रचना के साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम सुरलहरी अब यहीं संपन्न होता है। आज गायक कलाकार थे अभय कुमार सुमन। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। 8 बजे हैं। पेश है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा। पहला गाना हमने फिल्म राम लखन से लिया है। आनंद बख्शी के बोल हैं, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, आवाज़ लता मंगेशकर की है।

लता मंगेशकर का गाया फिल्म दुश्मन का गीत सुनते हैं। गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: जगबंधु का नाम सुना है?
1: बख्शी जगबंधु तो
2: हमने तो सुना है, लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो फिगर नॉट।
3: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियाँ दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय।

मनहर उदास, कंचन एवं आनंद के मिले जुले स्वर में अब आइए सुनते हैं फिल्म कुर्बानी का एक नगमा। गीत के बोल इंदिवर के हैं और संगीत तैयार किया है कल्याण जी आनंद जी ने।

0: Most TVs keep you tied to the city, but you deserve the freedom to explore. Introducing the Maruti Suzuki e-Vitara. With its massive 61 kilowatt-hour battery and a range of 543 kilometer, the horizon is finally yours. Own it for ₹10.99 lakh with a battery EMI of just ₹3.99 per kilometer. Backed by India's largest charging network, India Goes Electric.
1: Nexa. उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: आकाशवाणी भागलपुर से आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा। किशोर कुमार एवं साथियों का गाया फिल्म दूर का राही फिल्म का एक गीत आपको सुनवाते हैं। गीतकार ए इरशाद और संगीतकार हैं किशोर कुमार।

पूनम की रात, यह है फिल्म का नाम जिसका गीत अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। गीत के बोल शैलेंद्र के हैं और संगीत तैयार किया है शलील चौधरी ने।

0: While some just go through the day, you could live the grand life with the Grand Vitara. As you move from city streets to open escapes, the strong hybrid keeps up seamlessly. No matter where the road takes you, you're always breathing in freshness with auto purify and PM2.5 display. And when every moment feels this grand, safety comes standard with 6 airbags. Visit your nearest Nexa showroom to live the grand life with the Grand Vitara Strong Hybrid. Nexa.
1: Pata hai, duniya ke kai viksit desh aise bhi hain jahan muft ilaaj ek sapna hai aur hamare yahan wo aam nagrik ka adhikar. आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां.
2: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है.
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के.
3: सुमन कल्याणपुर, अनवर एवं साथियों का गाया हुआ फिल्म नसीब का ये गीत सुनते हैं. गीतकार आनंद बख्शी और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल.

कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर का गाया फिल्म पड़ोसन का गीत। गीत के बोल राजेंद्र कृष्ण के हैं और संगीत तैयार किया है राहुल देव बर्मन ने।

इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। 8:45 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार संध्या, इवनिंग न्यूज और फिर उर्दू खबरें। इसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं। आइए शामिल होते हैं दिल्ली केंद्र के प्रसारण में।

0: असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए समझौता किया। भारत ने ओमान तट के पास तेल टैंकर पर अमरीकी हमले में 3 भारतीय नाविकों के मारे जाने की कड़ी निंदा की। अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज कराया। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची और फीफा विश्व कप आज रात रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ शुरू होगा। पहले मुकाबले में मेजबान मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका होंगे आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया तथा विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने और लागू करने के महत्व को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ हुआ।
1: The topic for the Governing Council meeting.
2: गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं: बचपन, युवा अवस्था, कामकाजी जीवन और बुढ़ापा।
1: To youth, to working life, to old age.
0: केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया है। ये समझौता नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफियू रियो की उपस्थिति में हुआ। गृहमंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है।
3: आज हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। इससे ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने ओमान तट पर जहाज MT सिटबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमेरिका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज कराया।
3: We attach high importance to the welfare and well-being.
4: हम अपनी नाविकों के कल्याण और सुरक्षा को बहुत महत्व देते हैं। क्षेत्र में जहाजों पर लगातार हो रहे हमले बेहद चिंताजनक हैं। ये हमले तुरंत बंद होने चाहिए। हम संवाद और कूटनीति का भी आह्वान करते हैं ताकि क्षेत्र में जल्द से जल्द शांति और स्थिरता बहाल हो सके।
3: Peace and stability in the region.
2: नाविक कल्याण कोष समिति को प्रत्येक मृतक नाविक के परिवार को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया गया है। इस बीच पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि अधिकारियों को MT सेट्टेबेलो से 21 बचे भारतीयों की जल्द वापसी और मृत नाविकों के शवों को शीघ्र स्वदेश लाने के निर्देश दिए गए हैं। उधर आज उत्तरी ओमान के शिनास बंदरगाह के पास एक वाणिज्यिक टैंकर MT जलवीर में आग लग गई। इस जहाज पर करीब 20 भारतीय चालक दल के सदस्य सवार हैं। मस्कट स्थित भारतीय दूतावास स्थानीय अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और स्थिति पर नजर बनाए हुए है। पिछले 72 घंटों में ओमान के जल क्षेत्र में भारतीय चालक दल वाले जहाजों से जुड़ी तीसरी घटना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए रविवार को फ्रांस और स्लोवाकिया के 5 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने बताया कि प्रधानमंत्री की ये यात्रा अत्यंत उपयोगी और व्यापक होगी। श्री जॉर्ज ने बताया कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर श्री मोदी 52वें G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे।
5: The visit will provide an opportunity.
6: यह दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले विश्व नेताओं के साथ भारत और ग्लोबल साउथ के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने का अवसर प्रदान करेगा। यह G7 शिखर सम्मेलन में भारत की 13वीं भागीदारी और प्रधानमंत्री मोदी की सम्मेलन में लगातार 7वीं भागीदारी होगी।
5: पार्टिसिपेशन एट द समिट।
2: श्री मोदी 14 जून से 16 जून तक स्लोवाकिया में रहेंगे। 1993 में स्लोवाकिया की स्वतंत्रता के बाद ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री का स्लोवाकिया का पहला दौरा होगा। भारत ने मालदीव सरकार को खसरे के टीके की 20,000 खुराक और लगभग 3 टन चिकित्सा सामग्री की खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि यह सहायता मालदीव में खसरे के बढ़ते मामलों से निपटने और सरकार के राहत प्रयासों को मजबूत करने में सहायक होगी। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत ने वर्ष 2025-26 में अनाज उत्पादन का नया रिकॉर्ड बनाया है। इस दौरान चावल और गेहूं का उत्पादन अब तक के सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गया है। श्री जोशी ने कहा कि ये उपलब्धि देश की खाद्य सुरक्षा को और सुदृढ़ करेगी, किसानों को सशक्त बनाएगी और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाएगी। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि भारत का वस्त्र बाजार वर्ष 2014-15 में लगभग 8,50,000 करोड़ रुपए का था, जो वर्तमान में बढ़कर 16,00,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि कृषि के बाद वस्त्र उद्योग देश में सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र है।
7: एक्सपोर्ट भी लगभग 2,33,536 करोड़ का 10 साल में हुआ और मोदी जी के कार्यकाल में 3,25,339 करोड़ का हुआ।
2: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास

0: और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात सरकार द्वारा गरीबों के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों के बारे में।
1: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने गरीबों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की। गरीबों के लिए पक्का घर उपलब्ध कराना मोदी सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए 4 करोड़ से अधिक घर आवंटित किए गए। वहीं खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश भर के 81 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। ओडिशा के कालाहांडी जिले के इंद्रमणि नायक ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस योजना से गरीब लोगों को बहुत लाभ मिल रहा है।
2: गरीब कल्याण योजना जो नरेंद्र मोदी ने जो किया है वो हमारा फैमिली 5 है जो हमको 5-5 किलो दे रहे हैं। जो अभी पहले से बहुत दिक्कत था अभी तो बहुत हम लोग अभी सुखी शांति से सब जी रहे हैं।
1: दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जरूरतमंद परिवारों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जा रहा है। देश भर में अब तक लगभग 10,82,00,000 लोगों ने आयुष्मान भारत योजना के तहत कैशलेस इलाज का लाभ लिया है। जम्मू कश्मीर के बारामूला के रहने वाले फैयाज अहमद ने कहा कि यह योजना आपातकालीन परिस्थितियों में गरीब लोगों के इलाज में बहुत मददगार साबित हो रही है।
3: जब से आयुष्मान भारत का स्कीम मोदी जी ने लॉन्च करा है कभी भी किसी को जरूरत पड़ती है तो उसको भरपूर और एक आला मयारी इलाज बेहतरीन अस्पताल में मिलता है और राइट टाइम पे मिलता है, कोई क्यू में रहना नहीं पड़ता। मोदी जी हिस्ट्री के बेहतरीन कस्टोडियंस में से एक है जो अपने आवाम का एक बेहतरीन कस्टोडियन है।
1: वहीं प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों पर लोगों को सस्ती दरों पर जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की जिसके तहत अब तक 10,55,00,000 से अधिक महिलाओं को मुफ्त LPG कनेक्शन दिए गए। वहीं सड़क किनारे कारोबार करने वाले रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को ऋण देने के लिए शुरू की गई PM स्वनिधि योजना के तहत अब तक 1,12,00,000 से अधिक लोगों को ऋण दिए जा चुके हैं। भारत ने सामाजिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। वर्ष 2015 में 19% लोगों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल रहा था जो वर्ष 2025 में बढ़कर 64% से अधिक हो गया है। सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से लगभग 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारी न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: ये आकाशवाणी है। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है। उद्घाटन मैच में आज रात 12:30 बजे से मेजबान मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका आमने सामने होंगे। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
4: फीफा विश्व कप का ये अब तक का सबसे बड़ा संस्करण है। इसमें पहली बार 48 टीम भाग ले रही हैं। मेजबान देश अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको को विश्व कप में सीधे प्रवेश मिला है। विश्व कप के इतिहास में अब तक ब्राजील, इटली, जर्मनी, स्पेन, अर्जेंटीना, इंग्लैंड, फ्रांस और उरुग्वे ने फीफा ट्रॉफी जीती है। टूर्नामेंट में 12 ग्रुप हैं। प्रत्येक ग्रुप में 4-4 टीमें शामिल हैं। हर ग्रुप की शीर्ष दो टीम सीधे नॉकआउट चरण में प्रवेश करेगी। प्रतियोगिता में कुल 104 मुकाबले खेले जाएंगे।

0: इसमें 72 ग्रुप स्टेज और 32 नॉकआउट मुकाबले शामिल होंगे। फाइनल 19 जुलाई को खेला जाएगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने ईशा रानी बरुआ को और तन्वी ने मालविका बंसोड़ को हराया। मौसम विभाग ने शनिवार तक देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है और कल शाम तक तेज हवाओं और ओलावृष्टि की आशंका व्यक्त की है। पूर्वोत्तर भारत और हिमालय की तराई वाले पश्चिम बंगाल में 17 जून तक मूसलाधार बारिश का अनुमान है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में कल शाम तक बारिश होने का अनुमान है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए समझौता किया। भारत ने ओमान तट के पास तेल टैंकर पर अमरीकी हमले में 3 भारतीय नाविकों के मारे जाने की निंदा की। अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज कराया। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची और फीफा विश्व कप आज रात रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ शुरू होगा। पहले मुकाबले में मेजबान मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका होंगे आमने सामने। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आइए सुनते हैं ये कृषि गीत।
1: हम बनिहार है। अरे

अभी आप सुन रहे थे श्री अरविंद कुमार यादव से अंगिका लोकगीत। कार्यक्रम को जारी रखते हुए आइए अब सुनते हैं श्री श्यामानंद झा से गजल। श्री श्यामानंद झा को आकाशवाणी से शास्त्रीय संगीत तबला वादन में ए ग्रेड प्राप्त है, साथ ही सुगम संगीत गीत भजन एवं गजल में भी ए ग्रेड कलाकार है। कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए बशीर बद्र की ये रचना, यू ही बेसबब न फिराक करो।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री श्यामानंद झा से गजल। इसी के साथ आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित लोक एवं सुगम संगीत का कार्यक्रम सुर संगम अब समाप्त होता है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: आप सुन रहे थे आकाशवाणी के गौरवपूर्ण 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष पर स्थानीय भागलपुर में दिनांक 8 जून 2026 को आमंत्रित श्रोताओं के समक्ष आयोजित म्यूजिक कंसर्ट सुर संगम के रिकॉर्डिंग के संपादित अंश। गायक कलाकार थे लोक गीत गायन में श्री अरविंद कुमार यादव एवं सुगम संगीत गजल गायन में श्यामानंद झा। संगत कलाकार थे नाल पर मोहित नाहर, तबले पर गोपाल कृष्ण मिश्र, कीबोर्ड पर संगत कर रहे थे मोहम्मद सरबालम और ऑक्टापैड पर थे मोहम्मद तबरेज आलम। यह कार्यक्रम आकाशवाणी भागलपुर की प्रस्तुति थी एवं प्रस्तुतकर्ता थे श्री पार्वती के। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। आइए शुरू करते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुहाना सफर।

और आज का यह खूबसूरत सा सफर प्रकृति के सबसे खूबसूरत रचना के बीच है। प्रकृति की वह खूबसूरत रचना जिसे आप और हम महज देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, फिर यदि वह मिल जाए तो बात ही क्या है। जिसके बिना इस प्रकृति का हर विधान मानो फीका है। प्रकृति का क्रम पूरा का पूरा ठहर जाए यदि हमारे आसपास फूल खिलना छोड़ दें। आज हम बातें करेंगे फूलों की, वही फूल जो न केवल अपने रूप आकार और रंग से हमें मोहित कर लेती है, बल्कि उसकी मदमाती सुगंध हमें मदमस्त कर देती है। उसके बिहनी खुशबू हमारी सांसों में एक ताजगी भर जाती है। प्रकृति का ऐसा कोई जीव नहीं है जो फूलों की रस के, गंध के या स्वाद के दीवाना ना हो। यूं ही भंवरा उसकी ताजगी के लिए उसके ऊपर मड़राता नहीं रहता है, या फिर मौसम चाहे कोई भी हो। प्रकृति ने हमें हर मौसम के लिए अलग अलग किस्म के फूलों की उपहार दिए हैं। तभी तो महबूब के आने पर भी फूलों की ही बारिश के कल्पना की जाती है।

फूलों का हमारे जीवन में इतना महत्वपूर्ण स्थान है कि हम उसे पूज्य मानते हैं और पूज्य मानकर ही हम उन्हें अपने इष्ट को अर्पित भी करते हैं। फूल हमारे जीवन के साथ इतना रचा बसा है, इतना घुल मिल सा गया है कि हम हर सुंदर चीज की उपमा उसके खूबसूरती का अलंकार फूलों से ही देते हैं। वो खूबसूरती ही क्या जिसके आगे फूल भी शर्मा न जाएं।

फूल कहीं आँखों के सुंदरतम एहसास का जीवंत स्वरूप है, तो कहीं उसकी साज सज्जा में हमारी अपने मन की भावनाएं पिरो जाती हैं। हम स्वयं को उसके साथ जोड़ कर देखने लगते हैं। तभी तो किसी को फूलों का उपहार देना मानो उसके प्रति अपनी दिली लगाव दर्शाती है। किसी ने महज एक फूल में क्या क्या बातें कह डाली हैं।

ऐसा नहीं है कि फूल केवल कुदरती रूप से खूबसूरती के लिए ही हमारे आसपास मौजूद हैं, बल्कि फूलों से अलग अलग प्रकार के सुगंध का उपयोग करके इत्र बनाए जाते हैं। फूलों से कई प्रकार के प्राकृतिक रंग बनाए जाते हैं और इनका एक व्यापक उपयोग भी होता है। आज फूलों की एक व्यावसायिक खेती हमारे आसपास देखने को सहज मिल सकती है। आप भरे बाजार में फूलों से सजी दुकानों को देख सकते हैं, इसके व्यावसायिकता को आप आंक सकते हैं। किसी शायर ने अपनी लेखनी को फूलों के रंगों में डुबोकर तभी तो ऐसा लिखा है।

0: इस कार्यक्रम में आपने जिस फिल्मों के गीत सुने वे फिल्में थीं सूरज, अनाड़ी, सरस्वती चंद्र एवं प्रेम पुजारी। मिलीजुली आवाजें मोहम्मद रफी, उदित नारायण, मुकेश, लता एवं किशोर कुमार की थी। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार, पहले हिंदी में, फिर 11:05 पर अंग्रेजी में। इसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं। आइए शामिल होते हैं दिल्ली केंद्र के प्रसारण में।
1: समाचार के साथ में रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया और विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने और लागू करने के महत्व को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ हुआ।
2: The topic for the Governing Council meeting.
3: गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं: बचपन, युवा अवस्था, कामकाजी जीवन और बुढ़ापा।
2: To youth, to working life, to old age.
1: केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया। ये समझौता नई दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की उपस्थिति में हुआ। गृहमंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है।
4: आज हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। से ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
1: भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी सेटेबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमेरिका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज कराया। नाविक कल्याण कोष समिति को प्रत्येक मृतक नाविक के परिवार को 10,00,000 रूपये की अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया गया है। भारतीय नौसेना ने यूएई के फुजैरा से निकले एक वाणिज्यिक तेल टैंकर से बिना फटे मिसाइल वॉरहेड को सुरक्षित निकालने का अभियान सफलतापूर्वक पूरा किया। ये मार्शल आइसलैंड के झंडे वाला टैंकर एमटी ओलंपिक लाइफ ओमान के पास 26 मई को हुए विस्फोट के बाद कोच्चि जा रहा था। बाद में इसमें विस्फोटक पाए जाने की जानकारी मिली। भारत की अध्यक्षता में 13वें ब्रिक्स शहरीकरण फोरम का आज नई दिल्ली में शुभारंभ हुआ। इस 2 दिवसीय फोरम में ब्राजील, रूस, इंडोनेशिया, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और शहरी विकास विशेषज्ञ शहरी विकास से संबंधित प्रमुख प्राथमिकताओं पर विस्तृत विचार विमर्श करने के लिए एकत्रित हुए हैं। फोरम का उद्घाटन करते हुए आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि ये मंच शहरी मुद्दों को वैश्विक विकास चर्चा में और अधिक मजबूती से शामिल करने का एक अवसर है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है

0: कि भारत ने वर्ष 2025-26 में अनाज उत्पादन का नया रिकॉर्ड बनाया है। इस दौरान चावल और गेहूं का उत्पादन अब तक के सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गया है। श्री जोशी ने कहा कि ये उपलब्धि देश की खाद्य सुरक्षा को और सुदृढ़ करेगी, किसानों को सशक्त बनाएगी और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाएगी। पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने ईशा रानी बरुआ को और तन्वी ने मालविका बंसोड़ को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आरएस रघु। Prime Minister Narendra Modi has said when many major economies are facing uncertainty and economic challenges, India's growth story continues to inspire the world. Chairing the 11th Governing Council meeting of Niti Aayog at Rashtrapati Bhavan in New Delhi, he emphasized the need to further strengthen the nation's resolve towards self-reliance and highlight

आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलो हर्ट्ज और FM 100.1 मेगा हर्ट्ज पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11:10 हो चुके हैं। अब हमारा आज का यह प्रसारण यहीं संपन्न होता है। कल प्रातः 5:48 पर अपने कल के कार्यक्रमों के साथ हम आपकी सेवा में एक बार फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए

प्रातः 5:48 पर अपने कल के कार्यक्रमों के साथ हम आपकी सेवा में एक बार फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए एक बार फिर उपस्थित होंगे तब तक के लिए अनुमति चाहते हैं।